0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमवीसी रेडियो
0: प्रभात आराधना, हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए ये विशेष कार्यक्रम।

गत कारणम वंदे पन्नगभूषण मृगधरम वंदे पशूनां पतिम वंदे सूर्य शशांकवन्निनयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्तजनाश्रयम च वरदम वंदे शिवम शंकरम। श्रावण प्रभात की इस पुण्य वेला में मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन के तत्वावधान में प्रस्तुत इस विशेष कार्यक्रम में आचार्य सकलानी का सादर अभिवादन। श्रोताओं, हम भगवान सदाशिव की उपासना कर रहे हैं, सभी मंदिरों में निरंतर और भगवान शिव की पूजा हो रही है। भगवान शिव तो और महाकाल के भी काल हैं। उनके विषय में कहा कि सृष्टारूपी प्रजानां प्रबल भव भयात् यम नमस्यन्ति देवा यश्चित्ते संप्रविष्टोऽस्य विहित मनसां

रेखा महिवलयुतम व्यक्तलिंगम कपालम। ऐसे भगवान शिव जो प्रजा की सृष्टि करने वाले प्रजापति देव के भी प्रबल संसार भय से मुक्त होने के लिए जिन्हें और निरंतर नमस्कार करते रहते हैं, जो सावधान चित्त वाले ध्यान परायण महात्माओं के हृदय मंदिर में सुखपूर्वक विराजमान होते हैं, और चंद्रमा की कला, सर्पों के कंगन तथा व्यक्त और चिन्ह वाले कपाल को धारण करते हैं, संपूर्ण लोकों के आदि देव उन भगवान महाकाल की जय हो, जय हो। बालार्कायुत तेजसः धृतजटा जूटेन्दुखंडो ज्वलम नागेन्द्रः कृतभूषणम जपवटीम शूलम कपालम करैः खड्गांगम ददतम त्रिनेत्र विलसत पंचाननम सुंदरम व्याघ्रान्यक्तवरे प्रधान बलज निलयम श्री नीलकंठम भजे। भगवान श्री नीलकंठ 10,000 बाल सूर्य के समान तेजस्वी हैं। सिर पर जटाजूट, ललाट पर अर्धचंद्रमा और मस्तक पर सांपों का मुकुट।

0: धारण किए हुए हैं, चारों हाथों में जपमाला, शूल और खड़वांग मुद्रा है, तीन नेत्र हैं, पांच मुख हैं, अति सुंदर विग्रह है और बागंभर पहने हुए हैं और सुंदर पद्म पर विराजमान हैं, कमल पर विराजमान हैं। भगवान श्री नीलकंठ देवता की जय हो। हम निरंतर नीलकंठ भगवान का और ध्यान करते हैं। ऐसे भगवान सदाशिव हम सबका कल्याण करें। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष

नमस्कार, श्री सनातन धर्म मंदिर परिषद की ओर से इस श्रावण प्रभात कार्यक्रम में आचार्य सुरेश सुपाल मिश्र का अभिवादन। करेहूं सो जतन विवेक विचारी, परंतु सती ने परीक्षा लेने के लिए श्री सीता जी का ही वेश धारण किया, जिसमें शिव जी ने अपनी स्वाभिमानी और माता की दृढ़ निष्ठा पर रखी थी। अतः सीय बेहूं सती जो कहीं ते ही अपराध संकर पर नहीं, क्योंकि उनकी यह निश्चित भावना थी कि जो अब करहूं सती सन प्रीति मिटे ही भगति पृथु होई अनीति। बल्कि शिवजी सती को सदा के लिए त्याग देने का चिंतन कर रहे थे, इससे उनके हृदय में अत्यंत संताप हो उठा। परम पुनीति न जाई ते ही किए प्रेम बढ़ पाऊं, प्रगट न तहत महू कुछ हृदय अधिक संता हूं। परंतु भागवत भक्त को भगवान की शरण की प्रतीक सुख दुख की अवस्था में आधार रहती है, और उन्हीं योग क्षेमम वाहाभ्यहम रूप विशर्त फलाने वाला प्रभु से प्रदान की हुई बुद्धि के द्वारा सदैव शरणागतों की रक्षा हुआ करती है। क्योंकि ददामि बुद्धि योगम तमः भी प्रभु की ही प्रतिज्ञा है। अतएव जब भगवान शंकर ने ऐसे समय में प्रतिपतित ली जैसे तब शंकर प्रभु पद फिरहू नावा, सुमिरत राम हृदय अस आवा, एहे तन सित ही भेट मोहि नाही, तब भगवान भक्त वत्सल ने उनकी बुद्धि में प्रेरणा की कि सदा के लिए त्याग की जरूरत नहीं है, केवल इस जन्म में सती का त्याग करना ठीक है, जिसमें उन्होंने सती का वेश धारण किया थे। अतः एवं ऐसा ही संकल्प भगवान शिव ने किया, जिससे दोनों काम हो जाए, न तो सदा के लिए सती का त्याग करना पड़ा और न उसे शरीर से प्रति ही रखी गई। समस्त भक्तजनों को वैष्णव नाम तथा शंभु नाम भक्ति शिरो

0: मणि भगवान शिव के इस रहस्य के यह उपदेश मिलता है कि जब कोई धर्म संकट आ पड़े तो सचैव हृदय से हरि स्मरण करने से ही उनके निर्वाहन की राह निकल आएगी। ओम शांति शांति इति शुभम।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष

0: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए ये विशेष कार्यक्रम।
1: हरि ओम तत्सत् वर्णानामर्थसंघान

न पश्यन्ति सिद्धस्वान्तः स्थमीश्वरम्। श्री श्री सीतारामचन्द्राय नमः, श्रीरामदूताय नमः, श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः, भगवते श्रीसाम्ब सदा शिवाय नमः। ओम नमो भगवते सियाराम कृष्ण हरि नारायण। आज सैटरडे 15 अगस्त 2026 के श्रावण प्रभात वाणी कार्यक्रम में हिंदू महासभा की ओर से मैं बाबा जी गिरीश शर्मा आप सभी का स्वागत करते हैं। कल बालकांड दोहा 55 दोहा संख्या 55 की एक चौपाई पर हम लोगों ने विराम लिया था, जहां पर तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि सब जगह वही श्री रघुनाथ, वही श्री लक्ष्मण और वही सीता जी, सती माता ऐसा देखकर बहुत ही डर गई, उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी सुध बुध जाती रही। वे आंख मूंद कर मार्ग में बैठ गई। अब तुलसीदास जी आगे बढ़ाते हुए कहते हैं,

0: तुलसीदास जी कहते हैं कि आंख मूंद करके मार्ग में सती माता तो बैठ गई, लेकिन कुछ समय पश्चात फिर आंख खोल कर देखा तो वहाँ दक्ष कुमारी सती को कुछ भी न दिख पड़ा। तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वहाँ चले जहाँ भगवान शिव थे। गई समीप महेश तब हसी पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कवन विधि कहे हु सत्य सब बात। शिव जी के पास जब पहुंची तब भगवान शंकर ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने राम जी की किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच सच बताओ। गोस्वामी तुलसीदास जी के इस वर्णन में यदि आप पाठ कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि दोहा 55 के नीचे लिखा गया है, मास परायण दूसरा विश्राम। यह संकेत है कि जो भक्त रामचरितमानस का मास परायण कर रहे हैं आज इनका दूसरा विश्राम यहाँ तक है। चलिए इसी के साथ आज हम इसको विराम देते हैं, कल इसको आगे बढ़ाएंगे। आपकी ध्यान के लिए बहुत धन्यवाद। ओम सत्यम शिवम सुंदरम, ओम शांति ही शांति ही शांति ओम। श्री सीताराम चंद्रार्पणमस्तु। साधुवाद, जय श्री हरि।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम।

0: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए यह विशेष कार्यक्रम।
1: ओम श्रद्धया निसमिद्यते श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धा भगश मूर्धनि वचसा विदयामसि। ओम आर्य सभा मॉरिशस की ओर से पंडित रामसुंदर शोभन का सादस्य प्रेम नमस्ते और सुप्रभातम। श्रावण मास के वेद चर्चा विषय में आज मैं श्रद्धा के महत्व पर कुछ विचार करने जा रहा हूँ। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 191 सूक्त के प्रथम मंत्र में श्रद्धा के गुण इस प्रकार गाया गया है। प्रिय श्रोतागण, विश्वास से ही सत्य को, वेद को, ईश्वर को जानना श्रद्धा है। श्रद्धा का होना ही ईश्वर की बनाई चीजों पर विश्वास करना है। भक्त की ईश्वर का विश्वास ही रक्षा करता है। गहरी भक्ति ही मुख्य रूप से विश्वास पर टिकी है। इसको करने वाला अधिकतर उपासना में लग जाता है। श्रद्धा ही भक्ति भावना को जगाती है। जैसे वेद में कही गई श्रद्धा को माननी है, तैतरीय उपनिषद भी श्रद्धा को अधिक मान्यता देती है। श्रद्धा के द्वारा ही भक्त अपने अंदर भक्ति की अग्नि को जगाता है। श्रद्धा ही से भक्त ईश्वर पर पूर्ण रूप से अपने आप को छोड़ देता है, अर्थात सब प्रकार के सुख, कर्म, मान, धन, समझदारी और त्याग के मिलने पर भी श्रद्धा ही सबसे पहले है। श्रद्धा जानने का विषय है। तपस्वी अपनी वाणी में कहता है, श्रद्धा का धारण करने से अच्छा है। ऋग्वेद का वचन है, विद्वान यजमान प्राणायाम द्वारा श्रद्धा को अपनाता है और सभी भक्तगण अपने मन में उत्पन्न होने वाले इच्छा भाव को प्रेम और श्रद्धा से पान करते हैं। विश्वास करने वाला विशेष सुख पाता है। कश्यपः पश्यको भवति यत् सर्वं पश्यतीति। तैतरीय आरण्यक के ऋषि कहते हैं, जब भक्त श्रद्धा, सत्य नियम, त्याग और भक्ति का पालन करता है, तब उसे परम शांति मिलती है। उसका मन बलवान हो जाता है, वह सच्चा भक्त कहलाता है। जब भक्त अपनी भक्ति में लीन हो जाता है, तब परमात्मा उसके माता, पिता और गुरु बनकर उस पर कोई आँच आने नहीं देता है। श्रद्धा इते मघवन पारिये देवी दिवी वाजी वाजी शाशति। सत्य को धारण करने से मन की ज्योति बढ़ती है। सामवेद के ऋषि का वचन है कि ज्ञान की ज्योति ही साधक को बलवान बनाता है, क्योंकि परमात्मा ही सबसे अधिक बलवान है। आप लोगों ने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।

0: तुम्हारा।
1: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए यह विशेष कार्यक्रम।
2: गहलोत राजपूत महासभा की ओर से प्रस्तुत इस विशेष कार्यक्रम में पंडिता सुनीति देवी प्रसाद मोगोल का सादर सप्रेम नमस्ते और इस वेद मास के संदर्भ में प्रस्तुत है मंत्र व्याख्या। ओम अन्ति संतम न चाहत्यन्ति संतम न पश्यति देवस्य पश्य काव्यम न ममार न जीर्यति। अथर्ववेद मंडल 10 सूक्त 8 मंत्र 32। अर्थात ईश्वर मनुष्य से इस प्रकार संबद्ध है कि वह मनुष्य से अलग नहीं हो सकता। मनुष्य के साथ परमात्मा का बंधन अटूट है। समीप्य के कारण वह मनुष्य को दृश्यमान नहीं हो सकता है। जीवात्मा और परमात्मा के बीच अटूट समीपता है। अतः मनुष्य को भान रहना चाहिए कि वह अकेला नहीं है। उसको परमात्मा का संरक्षण सदैव और सर्वत्र प्राप्त है। संकट के समय मनुष्य को सर्वशक्तिमान परमात्मा की वाणी चतुर वेदों से मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए। पवित्र वेदों के दिव्य ज्ञान का प्रकाश अग्नि वायु आदित्य और अंगिरा नामक चार ऋषियों को सिंधु नदी के तट पर प्राप्त हुआ था। पवित्र वेदों के रूप में ईश्वरीय दिव्य काव्य मनुष्य जाति की मौलिक अनंत और अमर धरोहर है। सत्य और असत्य का परीक्षण करने के लिए वेद ही एकमात्र विश्वसनीय प्राधिकरण और अचूक कसौटी है। ईश्वर संपूर्ण विश्व का शरण स्थान है। वह सभी मनुष्यों पशु पक्षियों का आश्रय है। ईश्वर संपूर्ण संसार का घोंसला समान शरण स्थान है। समस्त विश्व प्रलय के समय उसी में सूक्ष्म रूप में विलीन हो जाता है। पुनः सृजन के समय संपूर्ण विश्व विभिन्न स्थूल रूप में उसी ईश्वर से उद्भूत होता है और सभी प्राणियों के हृदयों में विद्यमान रहता है। उसकी उपस्थिति का वे ही अनुभव कर सकते हैं जिन्होंने इंद्रिय सुख को त्याग दिया है। केवल

मेधावी विद्वान ही उसकी सर्वव्यापकता का अनुभव कर सकते हैं। हमारा विश्वास है कि वेद आगामी कई शताब्दियों तक विद्वत जनों को आकर्षित करते रहेंगे, तथा हम सर्वदा स्वीकार करते हैं कि मानव मात्र के ग्रंथालय में इसका स्थान सर्वाधिक पुरातन है। ओम शांति शांति शांति।

0: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए यह विशेष कार्यक्रम।
1: ओम अद्भ्यः संवृतः पृथिवीरसा च विश्वकर्मणः समवर्तताग्रे तस्य त्वष्टा विदद्धद्रूपमेति तन्मर्त्यस्य देवत्वमाजानमग्रे।
2: हे मनुष्यो, जो ईश्वर संपूर्ण संसार का निर्माण करता है, वही उपादान कारण व सूक्ष्म तत्वों से इस दृश्यमान कार्य जगत को बनाता है, वही इस ब्रह्मांड के समस्त जीवों और पदार्थों के सुंदर रूपों का निर्माण करता है। उस परमेश्वर के गुण कर्म और ज्ञान को समझना और उसकी आज्ञाओं का पालन करना ही मानव का परम धर्म है। ऐसा करने से मनुष्य का जीवन धन्य बनता है। श्रेष्ठ कर्तव्यों को पूरा करने से ही मानव के जीवन में देवत्व का आगमन होता है।

0: जो लोग परमेश्वर को छोड़कर सत्व रज तमो गुणमयी मूल प्रकृति या जड़ वस्तुओं की उपासना करते हैं वे घोर अज्ञान रूपी अंधकार में प्रवेश करते हैं। जो लोग कार्य रूप संसार के भोग में ही रमे रहते हैं वे मानो उससे भी घोर अज्ञान के अंधकार को प्राप्त होते हैं। जो लोग उस मूल प्रकृति से उत्पन्न हुए इस अनित्य नाशवान स्थूल एवं सूक्ष्म संसार को ही अपना इष्ट मान बैठते हैं या केवल भौतिक सुखों एवं भौतिक सिद्धियों में रमे रहते हैं वे और भी घने अंधकार एवं क्लेशों में डूब जाते हैं। अतः मनुष्यों को केवल परमात्मा की ही शरण लेनी चाहिए।
1: ओम।

परमात्मा सूर्य आदि लोकों में व्याप्त हैं, वही हर जीव के भीतर भी विद्यमान है। आकाश की भांति ईश्वर सर्वत्र परिपूर्ण है। ईश्वर से भिन्न या बड़ा कोई दूसरा नहीं है, वह सर्वोपरि और सबसे महान है। भगवान का निज नाम ओम है, जो प्राणों से भी प्यारा है। जो मनुष्य प्रेम और सत्य मार्ग से ईश्वर की शरण लेता है, परमात्मा उसके अज्ञान दूर कर देते हैं। वे हमारी आत्मा को प्रकाशित करके, दुखों से हमें मुक्त करके परम सुख व मोक्ष प्रदान करते हैं।

0: बजे है। समाचार आपसे अभी नमस्कार।
1: नमस्कार अनिलमणि, श्रोताओं को भी नमस्कार और आदाब। संक्षिप्त समाचारों में स्वागत है। ईंधन के दामों में एक बार फिर बढ़ोतरी हुई है। आधी रात से पेट्रोल की कीमत 64.25 रुपए से बढ़कर 70.65 रुपए प्रति लीटर हो गई है, यानी कि इसमें 6.40 रुपए की वृद्धि हुई है। वही डीजल की कीमत 71.25 रुपए प्रति लीटर पर ही बरकरार है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। ये फैसला कल रात शुक्रवार 14 अगस्त हुई पेट्रोलियम प्राइसिंग कमेटी की बैठक के बाद लिया गया है। मुख्य रूप से ईंधन की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में बदलाव और प्राइस स्टेबिलाइजेशन अकाउंट में दर्ज 3.5 बिलियन रुपए के घाटे को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया गया। इसी कड़ी में पेट्रोलियम पैदावारों की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित करने के वास्ते स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ एक बिक्री और खरीद समझौते पर हस्ताक्षर करेगा। इस फैसले को कल कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी है। कल दोपहर को प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने फोर्ट अल्बर्ट मिनी सॉकर पिच का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने इलाके के एक नए पुलिस स्टेशन का उद्घाटन भी किया। अपने भाषण में डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने ड्रग्स तस्करी के खिलाफ संघर्ष में सरकार की कटिबद्धता दोहराई। असम्पशन ऑफ द वर्जिन मेरी ईसाइयों विशेषकर कैथोलिक समुदाय का एक पवित्र और प्रमुख त्यौहार है जो हर साल 15 अगस्त को मनाया जाता है। आज 15 अगस्त को भारत अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस पूरे गर्व और उत्साह के साथ मना रहा है। ये एक ऐतिहासिक अवसर उन अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों के निस्वार्थ बलिदान को नमन करने का दिन है। और विदेश स्तर पर पश्चिम एशिया में युद्ध के बीच दुनिया की सबसे अहम समुद्री ऊर्जा गलियों में शामिल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जलमार्ग पर संकट और गहरा गया है। और अंत में मौसम का हाल। आम हालत, हमारे इलाके पर सामान्य हवा की लहर बह रही है जबकि पूर्व की ओर से बादलों का एक झुंड हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित करेगा। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज सुबह मौसम सुहाना रहेगा जबकि दिन के दौरान पूर्वीय ढलानों उत्तर तथा सेंट्रल प्लाटो पर थोड़े से बादल घिराएंगे और बारिश होगी। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाह रेखा के उस पार लगभग 2 मीटर वाली लहरें उठेंगी, अतः दूर समंदर में न जाने की मांग की जाती है, खासकर दक्षिणी पश्चिमी लगुनों के उस पार। तापमान सेंट्रल प्लाटो पर न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और अधिकतम तापमान 21 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच। तटवर्ती इलाके पर न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच। आज सूर्योदय 6:31 पर जबकि सूर्यास्त शाम के 5:57 पर।
2: Your weather forecast on RM2. Radio.

0: मस्ती।
1: तो देश विदेश की इन्हीं खबरों एवं मौसम संबंधी जानकारियों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आप लोगों ने ध्यान दिया, इसके लिए धन्यवाद। 6:30 बजे विस्तार के साथ आप प्रातःकालीन समाचार बुलेटिन सुन पाएंगे। तब तक अभी को दीजिए इजाजत, नमस्कार और आदाब।
2: ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
3: किसी का भला करके देखो, किसी का भला करके देखो, हमेशा लाभ में रहोगे। किसी पर दया करके देखो, हमेशा याद में रहोगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, गाइज एंड गर्ल्स, देवी और सज्जनों, आप सभी को अपने होस्ट और दोस्त अजय प्रताप सिंह का प्यार भरा नमन स्वीकार हो। सुबह के 6:04 हो रहे हैं, आप हमें सुन रहे हैं वीडियो में बात सवन किलोहर्ट्ज़ पर। ये है AM2 MBC रेडियो मॉरिशस। सभी लोगों का हम स्वागत करते हैं और आपको बता दें कि आज है शनिवार का दिन, 15 अगस्त साल 2026, और आज आम छुट्टी का दिन है। इट्स पब्लिक हॉलीडे, जी हाँ, असम्पशन डे। और बेशक जिससे ये पब्लिक डे आप को मुबारक हो, और आज बहुत से लोग जैसे कि पब्लिक डे है सो घर पे रहेंगे, सो ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस डे। पर कुछ लोग हमारी तरह समय काम कर रहे हैं, आप लोगों को हम कहेंगे बकवास। और बेशक मौसम तो बड़ा ही प्यारा और सुहाना है इधर MBC मौका में, आशा करते हैं कि दिन भर मौसम इतना ही प्यारा और सुहाना होगा। और जो बीत चुका उससे सपना समझकर भूल जाइए, और जो है वो आपका वर्तमान है और आपका आने वाला कल है। सो अपने वर्तमान में जिए, हर पल को जिए, और अपने भविष्य के बारे में भी सोचा करें। चलिए इन्हीं विचारों के साथ बढ़ते हैं हमारे पहले प्रोग्राम की ओर। गहलोत राजपूत महासभा की ओर से प्रोग्राम है वैदिक नाथ।
4: सुनिए गहलोत राजपूत महासभा की ओर से वेदों और शास्त्रों पर आधारित कार्यक्रम वैदिक नाद।

पशु अशु आशु वाहि आधार राष्ट्र की हो नारी सुबग सदाही बलवान।

शम। आदरणीय श्रोताओं को गहलोत राजपूत महासभा की ओर से इस अमृत बेला में वैदिक नाथ कार्यक्रम में मैं पंडिता सरोज प्रोसन इतवगिया का विनम्र अभिवादन। श्रोताओं, जैसे कि सब जानते ही हैं कि गुरुवार 30 जुलाई 2026 से श्रावण मास का शुभ आरंभ हो चुका

चुका है। श्रवण नक्षत्र के दौरान श्रावणी पर्व मनाते हैं। यह संकल्प का पर्व है, मलिनता को दूर करने का पर्व है, जिसके अंतर्गत विधिवत यज्ञ, वेद पाठ, यजोपवीत, परिवर्तन, आत्मनिरीक्षण तथा वेद स्वाध्याय पर बल दिया जाता है। इस एक माह की अवधि में देश के कोने कोने में यज्ञ हवन से सुगंधित वायु संचरित होती है। वेद मंत्र उच्चारण तथा भजन कीर्तन से वातावरण गूंज उठता है। 28 अगस्त 2026 को पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन पर्व मना रहे हैं। इस दिन से श्रावणी उपाकर्म का आरंभ होता है और गंगा स्नान पर्व नवंबर तक चलता है। श्रावण मास में श्रावणी पर्व मनाते हुए वेद मंत्रों का श्रवण करते हैं, अर्थात मंत्रों को सुनते सुनाते समझते और समझाते हैं। महर्षि दयानंद जी ने आर्य समाज के 10 नियमों के 4थे नियम में लिखते हैं, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है, वेद हमारा धार्मिक ग्रंथ है। श्रोताओ, वेद शब्द विद धातु से बना है, जिसका तात्पर्य है जानना, अर्थात ज्ञान। वस्तुतः वेद का अर्थ है ज्ञान, नॉलेज। वेद की श्रुति करते हैं, श्रु का मतलब है सुनना। कहा जाता है कि ऋषियों ने वेद सुने और परमात्मा ने कहे। कुल वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद की ऋचाओं में देवताओं की प्रार्थना और स्तुतियों, यजुर्वेद में विभिन्न प्रकार के यज्ञों की चर्चा है, सामवेद में ऋग्वेद की अधिकांश ऋचाएँ हैं जो कि गेय अर्थात संगीतमय है, और अथर्ववेद में ज्ञान विज्ञान और सांसारिक एवं आध्यात्मिक ज्ञान का भंडार है। परमेश्वर ने अग्नि ऋषि के मन में ऋग्वेद का ज्ञान दिया, जिसमें 10,552 मंत्र है। ज्ञान से ही विचारों में पवित्रता आती है। वायु ऋषि के मन में यजुर्वेद का ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसमें कर्मकांड का विषय है। यजुर्वेद में 1,975 मंत्र है। आदित्य ऋषि ने सामवेद की रचना की, जो कि उपासना कांड है। इसमें 1,828 मंत्र पाए जाते हैं। चौथा वेद है अथर्ववेद, जिसमें 5,077 मंत्र है, जो विज्ञान कांड है, जो अंगिरा ऋषि को प्राप्त हुआ। कुल चारों वेदों में 20,300 मंत्र हैं। वेद के संदेश मानव जीवन को ऊंचा उठाने वाले हैं। अपनी दिव्य वाणी से मानव मात्र का कल्याण करता है, जिससे हम जीवन में जीने की कला और मूल्यों की पहचान करते हैं। वेद हमें इस जगत में निडर निर्भय होकर जीना सिखाता है। प्रस्तुत मंत्र कहता है, अभयम मित्रादभयम ममित्रादभयम ज्ञातादभयम पुरुयः अभयम नक्तम अभयम दिवानः सर्व आशा मम मित्रं भवन्तु। भावार्थ, हे जगदीश्वर, इस तेरे जगत में, इस तेरे न्यायपूर्ण सच्चे शासन में रहते हुए मुझे कोई भी भय क्यों होना चाहिए? तू तो सब जगत में सदा कल्याण ही कल्याण कर रहा है, तो फिर मुझे कभी डर क्यों हो? भय करना नास्तिक होना है, तुझ पर अविश्वास करना है, तुझे भूलना है, तेरा द्रोही होना है। अतः हे मेरे परम प्यारे कल्याण स्वरूप स्वामी, आज से मैं मन की दुर्बलता छोड़कर अभय रहने का व्रत लेती हूँ। मैं अपनी शक्ति भर किसी भी भय के अधीन न होऊंगी।

0: हे मेरे जगदीश्वर, इसमें मेरी सहायता करो। भाई न छोड़कर तो मैं संसार में कुछ नहीं कर सकती, सत्य पथ पर नहीं चल सकती, कभी भी तेरे दर्शन नहीं पा सकती। अतः हे प्रभु, मुझे ऐसा बल दो कि संसार में किसी भी मनुष्य से मुझे भय न हो, न मित्र से भय हो और न अमित्र से। सत्य पथ पर चलते हुए मुझे न मित्रों की नाराज़गी आदि का भय हो और न अमित्रों द्वारा क्लेश पाने का। तेरे सामने मित्र अमित्र सब एक है। तेरे सामने मित्रों के अमित हो जाने से क्या डरना, और अमित्रों द्वारा जो मुझ पर कष्ट विपत्त आता है उसे क्या घबराना। अनिष्ट हो मित्र और अमित्र दोनों द्वारा लाए जा सकते हैं और लाते हैं। अतः इन दोनों ही द्वारा मुझे इस भय से बचा। जो कुछ है और जो कुछ होगा वह सब निसंदेह शुभ ही होगा। मेरा निर्बल मन बहुत सी घटित जान परिचित बातों की अनिष्ट कर है। माना मानकर उसने तो भय शस्त्र होता ही है, पर वह आगे आने वाली बातों में सदा अनिष्ट की आशंका करके भी यूं ही भय पीड़ित बना रहा है। आगे न जाने क्या होगा, मेरे इस कर्म की सिद्धि होगी कि नहीं, कहीं इसका फल परिणाम बुरा न निकले, इस पर इस प्रकार का जो मुझ में भय रहता है वह तो बड़ी ही आत्मघातक है। अतः हे मेरे अंतर्यामी, मुझ में अब ऐसा ज्ञान प्रदीप्त कर दो कि मेरे सब मोह हट जाए और मैं तेरे कल्याण स्वरूप को सदा दीप्त यान देखता हुआ दिन और या रात में सदा सब कालों में सब अवस्थाओं में अभय रहूं। ऐसा बल दो कि अंधकार हो या प्रकाश, विपत हो या संपत, अनुकूलता हो या प्रतिकूलता, मैं इन सब दिशाओं में सदा निर्भर रह सकूं। जान जब निखरता है तो उपदेश बन जाता है, भावना जब निखरती है तो प्रीत बन जाती है। प्रभु मेरे प्रेम में सब सहज जीवन पालता है तो जीवन सर्वोच्च बन जाता है। ध्यान के लिए धन्यवाद। इति ओम शांति शांति शांति।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वैदिक नाद।

प्रिय श्रोताओं, याद है ठीक 6:20 पर आप सुनेंगे एक विशेष कार्यक्रम श्रावण मास के संदर्भ में, और वो वार्ता में लिखा जाएगा सुबह के ठीक 6:30 बजे। ठीक 6:30 बजे आप सुनेंगे पूरा समाचार बुलेटिन, शोक समाचार, सूचना, मौसम का, स्पोर्ट्स रिव्यू। उसके बाद हमारी आपकी मुलाकात होगी 7 बजे न्यू मस्त मॉर्निंग शो सुबह का नजाना। सुनते रहिए प्रेम से MBC रेडियो। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड।

0: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए यह विशेष कार्यक्रम।
1: ओम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। सभी श्रोताओं को सादर सप्रेम नमस्ते। श्रावणी पर्व के संदर्भ में मॉरिशस आर्य रवि वेद प्रचारिणी सभा के तत्वावधान में प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम। आज का विषय है सुनने सुनाने का महत्व। श्रावणी श्रवण शब्द से बना है और श्रवण श्रु श्रवणे धातु से बना है जिसका अर्थ है सुनना। क्या सुनना और क्या सुनाना? उत्तर है वेद, वैदिक मूल्यों, धर्म संबंधी बातों एवं वैदिक उपदेशों को सुनना सुनाना। सुनने सुनाने का प्रयोजन, लाभ एवं महत्व क्या है? सुनने सुनाने से वैचारिक शक्ति प्रबल होती है, बुद्धि सक्रिय हो जाती है, ज्ञान की वृद्धि होती है, धर्म की सही पहचान होने लगती है और मोक्ष की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा मिलती है। सुनने की महिमा अत्यंत कल्याणकारी है। श्रुत्वा धर्म विजानाति, श्रुत्वा त्यजति दुर्मतिम, श्रुत्वा ज्ञानम अवाप्नोति, श्रुत्वा मोक्षम अवाप्नुयात। श्रुत्वा धर्म विजानाति अर्थात सुनकर ही धर्म को जाना जाता है। क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, ये सुनकर ही सही बोध प्राप्त होता है। श्रुत्वा त्यजति दुर्मतिम, सुनकर बुरी संगत या बुरे विचार छोड़े जाते हैं, उसे त्यागे जाते हैं। श्रुत्वा ज्ञानम अवाप्नोति, सुनकर ही ज्ञान प्राप्त किया जाता है। श्रुत्वा मोक्षम अवाप्नुयात, सुनकर ही मोक्ष की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा प्राप्त होती है। संसार के दुख रूपी बंधनों से मुक्त होने का मार्ग प्रशस्त होता है। सुनने सुनाने की परंपरा कहाँ और कैसे आरंभ हुई? वेद अपौरुषेय है, यानी वेद ईश्वर की वाणी और ईश्वर का ज्ञान है। सृष्टि के आरंभ में परमात्मा ने वेदों का ज्ञान ऋषियों के हृदय में प्रकाशित किया। अग्नि आदि ब्रह्म ऋषियों ने अपने तप के द्वारा वेद ज्ञान को श्रवण किया, श्रवण करके आत्मसात किया। अग्नि ऋषि को ऋग्वेद, वायु ऋषि को यजुर्वेद, आदित्य ऋषि को सामवेद और अंगिरा ऋषि को अथर्ववेद प्राप्त हुआ। इन चार ब्रह्म ऋषियों ने वेद को आत्मसात किया और अन्य पवित्र आत्माओं को सुनाया। इस प्रकार सुनने सुनाने की परंपरा चलती रही और वेद को श्रुति नाम से अभिहित किया गया। यदि सुनने सुनाने की परंपरा समाप्त हो जाती तो वेदों की रक्षा नहीं हो पाती। इसलिए प्राचीन काल से लेकर आज भी हम अपने पूर्व ऋषियों के प्रति आभार प्रकट करते आ रहे हैं, क्योंकि वे ज्ञान के वाहक थे। मनुष्य वेद आदि शास्त्रों को सुनकर धर्म के रहस्यों को जान लेता है। विद्वानों की बात सुनकर मानव की बुद्धि ज्ञान से भर जाती है। जब मनुष्य वेद आदि शास्त्र और धर्म का आश्रय लेता है तो वह बुरे ढंग से सोचने की बात छोड़ देता है, अन्यों की निंदा व बुराई करना छोड़ देता है। गुरु से ज्ञान की बात सुनकर मनुष्य संसार के दुख बंधनों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है। हमारे ऋषियों का विश्वास था कि व्यक्ति वेद शास्त्रों के अध्ययन के अतिरिक्त उन्हें सुनकर भी उनसे लाभ उठा सकता है, उन्हें सुनकर भी

0: उनसे लाभ उठा सकता है, साथ ही साथ धर्म के रहस्यों को समझने लगता है। धर्मात्मा विद्वानों की सत्य बातों एवं उपदेशों को अपनाने लगता है, अच्छी बातों को सुनकर बुरे विचारों को त्याग देता है। शास्त्र सम्मत बातों के सुनने से मनुष्य संसार के दुख बंधनों से व माया जाल से छूटकर मोक्ष मार्ग को अपना लेता है। संसार में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिन्होंने धर्मात्मा विद्वान लोगों की बातें एवं उपदेश सुनकर श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया और धर्म मार्ग में चलने लगे। नारद ऋषि के प्रश्न एवं उपदेशों को सुनकर रत्नाकर दस्यु कर्म त्याग कर अर्थात डाकू से महात्मा बन गए। महर्षि दयानंद के उपदेशों को सुनकर गुरुदत्त विद्यार्थी और मुंशीराम नास्तिक से आस्तिक बन गए। सुनने और समझाने का प्रभाव व्यक्ति के जीवन को बदल देता है। महाभारत के कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में उपस्थित वीर अर्जुन अपने परिजनों को देखकर हताश हो गया था, गांडीव धनुष उठाने के लिए तैयार नहीं था। श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी थे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि तुम्हारे सामने खड़े सभी विपक्ष योद्धा इस समय तुम्हारे शत्रु हैं, तुम्हारे परिजन नहीं। तुम एक क्षत्रिय हो, धर्म की रक्षा हेतु युद्ध करना तुम्हारा धर्म है, अन्यथा तुम कायर कहलाओगे और युगों युगों तक तुम्हारी निंदा होगी। श्री कृष्ण के संपूर्ण उपदेश को सुनने और समझने के बाद ही अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। श्री कृष्ण ने सुनाया स्वधर्म त्यागना पाप है। अर्जुन ने जान लिया, उन्होंने मोह कायरता विषाद को छोड़ दिया, कुमति त्याग कर सुमति को अपना लिया, उनको गीता का ज्ञान मिल गया, कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग समझ में आ गया। कृष्ण ने अर्जुन को जो विद्या दी, अर्जुन ने अपने ऋण युद्ध जीत कर उतारा और धर्म की रक्षा की। जब कोई मनुष्य धर्म संबंधी बातों या उपदेश सुनता है तो उसके मन में अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं। अच्छे विचार के परिणाम स्वरूप मन में धर्म परोपकार और पुण्य कर्म करने की प्रवृत्ति जागती है। परोपकार और पुण्य कर्म के द्वारा ही संसार का कल्याण होता है और धर्म की रक्षा होती है। श्रावणी पर्व यज्ञ के साथ साथ सुनने सुनाने का मार्ग प्रशस्त करता है, इसलिए आज भी वेद पाठ एवं वेद प्रवचन की परंपरा है। सुनने सुनाने से वैचारिक शक्ति, तर्क शक्ति, सूझबूझ और समझने समझाने की शक्ति प्रबल हो जाती है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज के तीसरे नियम में लिखा है, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। सुनना सुनाना भी परम धर्म माना गया है। सुनने सुनाने में शब्दों का प्रयोग होता है। हमारे वेद शास्त्रों एवं ऋषियों का मानना है कि शब्द अथवा विचार हमारे मन और वायुमंडल में उसी प्रकार गति उत्पन्न करता है जिस प्रकार तालाब में पत्थर फेंकने से तरंगें उत्पन्न होती हैं। हमारे शुद्ध विचार पवित्र शब्दों द्वारा दूर तक फैलकर सुख शांति प्रेम पवित्रता और सद्भावना का संचार करते हैं। इसके विपरीत असत्य अपशब्द और बुरे विचार देश समाज एवं परिवार में दुख दरिद्रता अशांति फूट ईर्ष्या द्वेष और शत्रुता को जन्म देते हैं। श्रावणी पर्व हमें शिक्षा देता है कि प्रत्येक क्षण अपने विचारों के प्रति जागरूक रहें। आज का वक्तव्य यहाँ विराम लेता है। अब आचार्य सुनील को अनुमति दीजिए। ओम शांति शांति शांति।
1: कर पावन वेद प्रकाश दूर करता रहता अंधियारा, यह श्रावणी पर्व हमारा।
2: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आपने सुना

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: अपनी घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 6:30 बजे हैं। शनिवार 15 अगस्त 2026 के प्रातःकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। ईंधन के दामों में एक बार फिर हुई बढ़ोतरी, आधे रात से पेट्रोल की कीमत 64.25 रुपये से बढ़कर 70.65 रुपये प्रति लीटर हो गई है, यानी इसमें 6.40 रुपये की वृद्धि हुई है। वही डीजल की कीमत 71.25 रुपये प्रति लीटर पर ही है बरकरार। पेट्रोलियम पैदावारों की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित करने के वास्ते स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ एक बिक्री और खरीद समझौते पर हस्ताक्षर करेगा। इस फैसले को कल कैबिनेट की बैठक में दे दी है मंजूरी। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने फोर्ट अल्बर्ट मिनी सॉकर पिच का उद्घाटन किया, जो 3.5 मिलियन रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है। उसी इलाके में एक नए पुलिस स्टेशन के उद्घाटन भी किया गया। प्रधानमंत्री ने ड्रग्स तस्करी के खिलाफ संघर्ष में सरकार की दोहराई कटिबद्धता। असम्पशन ऑफ द वर्जिन मैरी, ईसाइयों खासकर कैथोलिक समुदाय का एक पवित्र और प्रमुख त्यौहार है जो हर साल 15 अगस्त को मनाया जाता है। और आज 15 अगस्त को भारत अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस पूरे गर्व और उत्साह के साथ मना रहा है। ये ऐतिहासिक अवसर उन अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों के निस्वार्थ बलिदान को नमन करने का दिन है जिनकी बदौलत आज भारतीय जन आजाद हवा में सांस ले रही है। और विदेश में पश्चिम एशिया में युद्ध के बीच दुनिया की सबसे अहम समुद्री ऊर्जा गलियों में शामिल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज जलमार्ग पर संकट और गहराया जा रहा है। नमस्कार और आदाब। प्रातःकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। शुरुआत करते हैं स्थानीय खबरों के साथ, समाचारों को देते हैं विस्तार। जिस तरह से हमने सुर्खियों में इस बात का उल्लेख किया है कि ईंधन के दामों में एक बार फिर बढ़ोतरी हुई है, आधी रात से पेट्रोल की कीमत 64.25 रुपये से बढ़कर 70.65 रुपये प्रति लीटर हो गई है, यानी इसमें 6.40 रुपये की वृद्धि हुई है। वही डीजल की कीमत 71.25 रुपये प्रति लीटर पर ही बरकरार है और इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। ये फैसला कल रात शुक्रवार 14 अगस्त हुई पेट्रोलियम प्राइसिंग कमेटी की बैठक के बाद लिया गया है। मुख्य रूप से ईंधन की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में बदलाव और प्राइस स्टेबिलाइजेशन अकाउंट में दर्ज 3.5 बिलियन रुपए के घाटे को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया गया है। व्यापार मंत्री मैक्वेल सिक्वेन को सुनते हैं।
2: Donc au niveau prix mondial, le prix finit bien augmenté. On est capable de dire qu'au niveau de l'essence, PPCB recommande une augmentation de 10% seulement. Ça veut dire l'essence à partir de minuit passe de 64,25 € à 70,65 €. Il faut bien dire qu'une augmentation qui finit gagner, c'est 14,75%. En ce qui concerne le diesel, le prix reste inchangé. Pour bien aussi attirer l'attention, en une semaine, le gouvernement finit accumule un déficit de 250 millions roupies. Donc, à ce jour, le déficit, il arrive à 3,5 milliards roupies. On vient aussi comparer le prix avec les autres pays de la région. Tandis qu'à Maurice, l'essence coûte 70,65 € toujours moins cher que les autres pays. Et au niveau diesel, 71,25 € et il est toujours moins cher que les autres pays.
1: इसी कड़ी में पेट्रोलियम पैदावारों की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित करने के वास्ते स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ एक बिक्री और खरीद समझौते पर हस्ताक्षर करेगा। इस फैसले को कल कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी है। ये समझौता मॉरिशस और भारत की सरकारों की

0: बीच सहयोग के तहत किया जा रहा है। मंत्री माइकल सिक्वेन को सुनते हैं।
1: On vient aussi informer le public que le Conseil des ministres fin donne ce go ahead pour qui le gouvernement mauricien signe un DTD avec le gouvernement indien en ce qui concerne l'approvisionnement des produits pétroliers. Donc Indian Oil sera le fournisseur de Maurice et pour garantir une sécurité d'approvisionnement. Nous fin aussi témoin dans un pays qui a une rupture de stock de produits pétroliers et avec Salarco, Indian Oil, gouvernement indien et gouvernement mauricien nous sert qui nous sécurité d'approvisionnement pour garantir dans les années à venir.
0: पेट्रोलियम प्राइसिंग कमेटी यानी कि पीपीसी ईंधन की कीमतों की समीक्षा के लिए कल शुक्रवार को एक बैठक लगाई गई थी। कल तक पेट्रोल 64.25 रुपये प्रति लीटर और डीजल 71.25 रुपये प्रति लीटर के भाव से बिक रहा था, लेकिन आज से कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। अतः पीपीसी के नियमों के अनुसार इसे 10% तक सीमित रखा जाना चाहिए। ज्यादा विस्तार आस्था गुबिन के साथ।
2: अप्रैल महीने में बढ़ोतरी के बाद से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पेट्रोल की कीमत 64.25 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 71.25 रुपये प्रति लीटर है। अप्रैल में दामों में बढ़ोतरी 10% तक सीमित रखी गई थी, जबकि पेट्रोलियम प्राइसिंग कमेटी के अनुसार पेट्रोल के दाम में 20.29% और डीजल में 34.44% की बढ़ोतरी हो सकती थी। उस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल का दाम काफी ऊंचा था। अप्रैल में ब्रेंट तेल की कीमत 100 से $117 प्रति बैरल के बीच थी। इसकी बड़ी वजह दुनिया में तनाव और तेल की सप्लाई में रुकावट थी। आज 4 महीने बाद ब्रेंट तेल की कीमत करीब $88 प्रति बैरल है। ये अप्रैल के मुकाबले काफी कम है। हालांकि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के आसपास तनाव के कारण दामों में अब भी उतार चढ़ाव बना हुआ है। मॉरिशस में पेट्रोल और डीजल की कीमत ब्रेंट तेल की रोज की कीमत के हिसाब से अपने आप नहीं बदलती। कीमत तय करते समय आयात किए जाने वाले पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार के भाव दर और प्राइस स्टेबिलाइजेशन अकाउंट की स्थिति को भी देखा जाता है। अप्रैल में इस खाते में करीब 3,200,000,000 रुपए की कमी थी।
0: जिस तरह से सुर्खियों में हमने इस बात की चर्चा की है कि प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने कल दोपहर को बिजटोंबू में कई कार्यक्रमों का दौरा किया। सबसे पहले उन्होंने फोर्ट अल्बर्ट मिनी सॉकर पिच का उद्घाटन किया, जो 3.5 मिलियन रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है। इसका निर्माण कार्य पिछले मार्च और जून के बीच पूरा किया गया था। इसके बाद प्रधानमंत्री इलाके के नए पुलिस स्टेशन के उद्घाटन समारोह में पहुंचे। अपने भाषण में डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम ने ड्रग्स तस्करी के खिलाफ संघर्ष में सरकार की कटिबद्धता दोहराई और कहा कि इस मुद्दे पर कोई ढील नहीं दी जाएगी। उन्होंने पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम को सुनते हैं।
3: Combien de morts sans la drogue, les bouts bizarres sans pitié. Mais là, aucun du monde qui bizarre croit qu'il est protégé comme c'était avant. Nous bizarres intransigeants contre la drogue. N'importe qui s'en a où était, n'importe qui statue où était, n'importe qui peut se préoccuper si on fané ou bizarre paye les conséquences.
0: बिजटोंबू पुलिस स्टेशन के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री ने पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए, जो वर्तमान घटनाओं के विभिन्न पहलुओं से जुड़े हुए थे। विशेष रूप से नए विपक्ष के नेता की नियुक्ति और सिडनी पिया को उनके जूनियर मंत्री के पद से हटाए जाने के विषय पर प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम को फिर से सुनते हैं।
4: Parce que bah, vous l'avez le aussi, hein, très bien.
5: Un junior ministère, il peut être serment. S'il y a l'endé ou la ligne gouvernement, il automatiquement besoin de beaucoup. Donc c'est ça qui est arrivé. Il n'y a pas qu'il passe ça ici.
0: इसके अलावा प्रधानमंत्री इस रविवार को दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना होंगे। वे आगामी सोमवार को जोहानिसबर्ग में आयोजित होने वाले सादेक के राष्ट्र अध्यक्षों और शासन अध्यक्षों के 46वें शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इस दौरान चर्चाएं मुख्य रूप से क्षेत्रीय एकीकरण

0: करण, बुनियादी ढांचे के विकास, कृषि परिवर्तन और महत्वपूर्ण खनिजों के मूल्य संवर्धन पर केंद्रित रहेंगी। समाचारों को आगे बढ़ाते हैं। 84,000 छोटे किसान, पशुपालक और उनके परिवार के सदस्य इससे सीधे रूप से प्रभावित हो सकते हैं। स्मॉल प्लांटर्स वेलफेयर फंड और फागे का आपस में विलय करने के खिलाफ यही मुख्य तर्क दिया जा रहा है। ये दोनों संस्थाएं कृषि क्षेत्र में ही काम करती हैं, परंतु दोनों के उद्देश्य और कार्य अलग अलग हैं, यानी कि किसानों को सामाजिक और वित्तीय सहायता प्रदान करता है, मुख्य रूप से शोध, ट्रेनिंग और तकनीकी सहायता पर ध्यान केंद्रित करता है। किसान प्रतिनिधियों का मानना है कि इस विलय से किसान परिवार को मिलने वाली सामाजिक मदद कमजोर हो सकती है और साथ ही अनुसंधान का काम भी धीमा पड़ सकता है। इसीलिए वे प्रस्ताव रखते हैं कि दोनों संस्थाओं को अलग अलग ही बनाए रखा जाए, उनके कार्यों को स्पष्ट रूप से बांटा जाए और काम के दोहराव से बचा जाए। वे सरकार से ये भी मांग करते हैं कि कोई भी अंतिम फैसला लेने से पहले खेतिहरों से सलाह मशवरे जरूर किया जाए। तफसील के साथ सुमेहरा अकबर अली।
1: Et Small Farmers Welfare Fund, avec ça, des mandats totalement différents, les boucles créent beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. Actuellement,
2: अगर फागे और स्मॉल फार्मर्स वेलफेयर फंड को मिलाया जाए तो बहुत से मसले पैदा होंगे, क्योंकि दोनों की अलग अलग कार्यावधि है। फिलहाल खेतिहर बड़ी दुविधा में हैं। गुजरे सालों में करीब 50 मिलियन रुपए निवेश किए जा चुके हैं। ये पैसे स्मॉल फार्मर्स वेलफेयर फंड में जमा हैं। बहुत से सवाल उठ रहे हैं, इन पैसों का क्या किया जाएगा। बजट में प्रधानमंत्री ने इस बारे में कोई बात नहीं की, फाइनेंस बिल में कुछ नहीं है। मंत्री अरविंद बुलेल ने अपने वक्तव्य में कहा था कि स्मॉल फार्मर्स वेलफेयर फंड फागे के तहत कार्यरत होगा। सरकार से मांग करते हैं कि वो इस फैसले पर दोबारा गौर करे। हम चाहते हैं कि ये दो संस्थाएं अलग रहें, क्योंकि अगर कोई बात है तो हम जानेंगे कि हमें कहां पर जाना चाहिए।
1: Deux mandats différents et nous sommes contents laisser des entités là pareil comme je disais pour qui nous connaît quand nous gagne souci quand nous parler.
0: कैबिनेट ने इस बात पर ध्यान केंद्रित किया है कि 30 जुलाई 2026 को कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स की सीमाओं पर बने आयोग ने रोड्रिग्स टापू के क्षेत्र में विस्तृत कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स के संबंध में मॉरिशस गणराज्य द्वारा 6 मई 2009 को प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने इस बात पर ध्यान दिया है कि प्रधानमंत्री रविवार 16 अगस्त 2026 को दक्षिण अफ्रीका की यात्रा करेंगे। वे वहां सैडेक के 46वें शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, जिसकी मेजबानी और अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका के गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम मातामेला सिरिल रामाफोसा करेंगे। कैबिनेट ने स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन द्वारा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ पेट्रोलियम पैदावारों की दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए एक बिक्री और खरीद समझौते पर हस्ताक्षर करने की सहमति दे दी है। ये समझौता मॉरिशस सरकार और भारत सरकार के बीच तेल और गैस क्षेत्र में सहयोग के लिए हस्ताक्षर किए जाने वाले समझौता ज्ञापन के तहत सरकार से सरकार सहयोग ढांचे के अंतर्गत पूरा किया जाएगा। जादू टोने से जुड़ी कथित धोखाधड़ी के एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 1 मिलियन रुपए जब्त किए गए हैं। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन को सुप्रीम कोर्ट से इस राशि को जब्त करने का आदेश मिल गया है। ये रकम सीते गारीबू वाले दो प्रेत में एक कार के भीतर छिपाकर रखी गई थी। ये मामला जहीरा बीबी इसप आदिया और मोहम्मद नजीब खान अकोहिया से जुड़ा है। मोहम्मद नजीब खान खुद को एक झाड़फूंक करने वाला बताता था। उसने पीड़ितों को ये विश्वास दिलाया था कि वह कुछ अनुष्ठानों और पशु बलि के जरिए उनकी व्यक्तिगत और स्वास्थ्य समस्याओं को हल कर सकता है। दोनों आरोपियों ने साल 2024 में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप का अपराध स्वीकार कर लिया था। चूंकि दोनों आरोपी कोर्ट के इस 10 लाख की वैध कमाई का कोई सबूत नहीं दे सके, इसीलिए

0: सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार इस पूरी रकम को जब्त करने का अंतिम आदेश जारी किया है। जिस तरह से हमने सुर्खियों में इस बात का उल्लेख किया है कि असम्पशन ऑफ द वर्जिन मैरी ईसाइयों खासकर कैथोलिक समुदाय का एक पवित्र और प्रमुख त्यौहार है जो हर साल 15 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिन माता मरियम के स्वर्गारोहण का जश्न मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अपना सांसारिक जीवन पूरा करने के बाद माता मरियम को शरीर और आत्मा सहित शरीर स्वर्ग में ले जाया गया था। मॉरिशस जैसे देशों में इस दिन सरकारी छुट्टी होती है जहां लोग प्रार्थनाओं के साथ नीले और सफेद रंग का पारंपरिक मैरी केक काटकर इसे बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं। सुमेहरा अकबर अली, ज्यादा विस्तार।
1: पंद्रह अगस्त को वर्जिन मेरी को याद किया जाता है और उनकी जिंदगी से प्रेरणा ली जाती है। मदर मेरी एक पवित्र और विनम्र माँ थी जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ईश्वर की इच्छा पर भरोसा करके बिताई। उन्होंने ईसा मसीह को जन्म दिया और हर मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया। उनका जीवन हमें प्यार, विश्वास, सब्र, दया और नम्रता का पाठ सिखाता है। इस पवित्र दिन पर माँ मेरी से प्रार्थना की जाती है कि वो सब पर अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखे। वो परिवारों में शांति, खुशी और एकता लाएं और सभी भक्तों को सही रास्ते पर चलने की हिम्मत दें। असम्पशन डे यही याद दिलाता है कि जिंदगी का अंतिम लक्ष्य सिर्फ दुनिया की सफलता नहीं बल्कि ईश्वर के करीब जाना है। मदर मेरी ने अपनी पूरी जिंदगी प्रेम, सेवा, प्रार्थना और विश्वास में गुजारी। इसी वजह से सबके लिए वो एक प्रेरणा है।
0: और इस शनिवार को ईसाई समुदाय के लोग असम्पशन ऑफ द वर्जिन मेरी यानी कि माता मरियम का स्वर्गारोहण का त्यौहार मना रहे हैं। ये मॉरिशस के धार्मिक कैलेंडर का एक प्रमुख त्यौहार है और इस दिन जैसे कि हमने इस बात का उल्लेख किया है कि सरकारी छुट्टी होती है। ईसाई मान्यताओं के अनुसार माता मरियम ने अपने सांसारिक जीवन को पूरा करने के बाद शरीर और आत्मा के साथ स्वर्ग की महिमा को प्राप्त किया। फादर जिरो सुलिवान के अनुसार इस परंपरा की वजह ईसाइयों का माता मरियम के साथ वह खास रिश्ता भी है जिन्हें वे अपने विश्वास की माँ मानते हैं। फादर जिरो सुलिवान से शैली नियबन की बातचीत तफसील के साथ सुमेहरा अकबर अली।
2: L'Assomption veut dire que la Vierge n'a pas connu, puisqu'elle était la mère, son corps a porté Dieu, elle n'a pas connu comme tous les êtres humains.
1: Assomption Day का अर्थ है कि मदर मेरी ने मौत प्राप्त नहीं की थी, बल्कि ईश्वर ने उनके शरीर और आत्मा को उठाया था। वो दूसरे इंसानों से अलग हैं। उन्हें अपने बेटे के साथ आसमान पर ले जाया गया। परंपरा अनुसार गातुमाकी का सेवन करके इस दिन को मनाते हैं क्योंकि ईश्वर ने अपनी बारगाह में मदर मेरी और उनके पुत्र को पूरे सम्मान के साथ बुलाया था।
0: और मॉरिशस में वर्जिन मेरी के केक यानी गातुमारी के बिना असम्पशन का त्यौहार अधूरा सा लगता है। बेकरियों में यह समय पारंपरिक नीले और सफेद रंगों वाले इन केक के ऑर्डर से भरा है, लेकिन समय के साथ ये परंपरा भी बदल रही है। इस साल पेस्ट्री शेफ क्रिस्टाबेल ने देखा कि पारंपरिक जिनुआंस और बादाम के पेस्ट वाले केक के अलावा चॉकलेट की मांग में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। क्रिस्टाबेल को सुनते हैं विवरण सुमेहरा अकबर अली।
3: Alors, ben, comme d'habitude, tous les Mauriciens contents, c'est des vrais assomptions avec un petit gâteau de la table, même si c'est pas grand chose, c'est pas un gros gâteau.
1: हमेशा की तरह सभी मुर्शनों को असम्पशन डे के अवसर पर गातुमारी खाना पसंद है। ये एक महंगा केक नहीं है, बल्कि इसके पीछे खुशी बांटने का विचार अहम है। हर साल असम्पशन दिवस के लिए बहुत से ऑर्डर्स मिलते हैं। अलग अलग स्वादों की मिठाइयों की मांगे मिल रही है जो सफेद और नीले रंग में होनी चाहिए।
3: D'habitude, mon plus bien génoise et pas d'amande, mais cette année-ci, j'ai eu aussi beaucoup de commandes de chocolat, mais seulement décoration extérieure, toujours blanc et bleu comme d'habitude.
0: और जिस तरह से सुर्खियों में हमने इस बात का उल्लेख किया है कि आज 15 अगस्त को भारत अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस पूरे गर्व और हर्षोल्लास के साथ मना रहा

0: है। यह ऐतिहासिक अवसर उन अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों के निस्वार्थ बलिदान को नमन करने का दिन है जिनकी बदौलत आज भारतीय जन आजाद हवा में सांस ले रही है। आज भारत वैश्विक मंच पर एक उभरती हुई महाशक्ति के रूप में खड़ा है। अंतरिक्ष अनुसंधान से लेकर डिजिटल तकनीक और आर्थिक विकास तक भारत ने पूरी दुनिया भर में अपनी अमित छाप छोड़ी है। इसी गौरवशाली यात्रा के बीच भारत और मॉरिशस के रिश्ते बहुत ही खास और आत्मीय हैं। साझा इतिहास, सांस्कृतिक विरासतों और अटूट कूटनीतिक संबंधों में बंधे ये दोनों देश सच्चे मित्र हैं। आज लहराता तिरंगा न केवल भारत की प्रगति का प्रतीक है अपितु हिंद महासागर को पार बसे भारत और मॉरिशस की इस अटूट दोस्ती और नए भारत के उज्जवल भविष्य का उत्सव भी है। ज्यादा विस्तार सुमेहरा अकबर अली के साथ।
1: 15 अगस्त सभी भारतीयों के लिए और भारतीय मूल के सभी लोगों के वास्ते गर्व और खुशी का दिन है। 80 साल बीत गए लेकिन आज भी वो तड़प, वो चाहत, वो देशभक्ति, वो निडर संघर्ष और बलिदान ताजा है। ये स्वतंत्रता दिवस एक प्रतीक है एक कामयाब राष्ट्र के पक्के इरादे का। 15 अगस्त 1947 वो दिन जब भारत ने पहली बार आजादी की सांस ली थी।

वो तारीख जब पहली बार सूरज की किरणों से एक नई रोशनी हर दिल तक पहुंची थी। बरतानी शासन की ज्यादतियों और अपनी ही जन्मभूमि पर गैरों के हाथों गुलाम बनकर जीने का जमाना हमेशा के लिए खत्म हो गया था। एक नए भारत ने जन्म लिया था, एक स्वतंत्र राष्ट्र वजूद में आया था।

0: ये आज़ादी आसानी से नहीं मिली। स्वतंत्रता के बहुत से संघर्षकर्ताओं ने अपनी जिंदगी, अपना सुख और अपना सब कुछ देश के लिए समर्पित कर दिया था। महात्मा गांधी, नेताजी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल और अनेक वीर देशभक्तों ने भारत की आज़ादी के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था।
1: नहीं एक जश्न है भारत, रग रग में है जीत की आदत, ऐसा हुनर दुश्मन भी सलामी दे।
0: इनके अलावा ऐसे हजारों अनगिनत नाम हैं जिन्होंने वतन की मोहब्बत के लिए चुपचाप जुल्म बर्दाश्त किए और हिंसा के शिकार बने। पंद्रह अगस्त हमें उन सभी वीरों की कुर्बानियों को याद करने का मौका देता है जिन्होंने एक आज़ाद भारत का सपना देखा था। तिरंगा सिर्फ एक झंडा नहीं बल्कि भारत की एकता, सम्मान और बलिदान का प्रतीक है। जय

आज भारत की आज़ादी को 80 साल हुए हैं, लेकिन आज ये देश हर क्षेत्र में दुनिया के लिए मिसाल कायम कर रहा है। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की कगार पर भारत अपनी आबादी को साथ लेकर आगे बढ़ने पर जोर दे रहा है। 80 साल पहले जिस भारत को जंजीरों में बांधा गया था, आज वो हर रोज अपनी काबिलियत से विकास के नए नए आसमान छूता

विदेशी स्तर पर हम देखते हैं कि पश्चिम एशिया में युद्ध के बीच दुनिया की सबसे अहम समुद्री ऊर्जा गलियों में शामिल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जलमार्ग पर संकट और गहरा गया है। संयुक्त अरब अमीरात ने शुक्रवार को आरोप लगाया है कि हॉर्मुज से गुजर रहे उसके सरकार

रिटेल समूह ADNOC से जुड़े दो टंकरों को ईंधन ने निशाना बनाया है। दोनों जहाजों पर ड्रोन हमले की बात सामने आई है। हमले में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। UAE ने इसे समुद्री डकैती बताते हुए ईरान की कड़ी निंदा की। हालांकि ईरान की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। उधर इंडोनेशिया के टटरा के पास शनिवार तड़के 7.7 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। इस भूकंप के बाद सुनामी की आशंका जताते हुए चेतावनी जारी कर दी गई और कई झटके भी महसूस किए गए। और अंत में मौसम का हाल। आम हालत, हमारे इलाके पर सामान्य हवा की लहर बह रही है, जबकि पूर्व की ओर से बादलों का एक झुंड हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित करने लगेगा। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज सुबह मौसम सुहाना रहेगा, जबकि दिन के दौरान पूर्वीय ढलानों, उत्तर तथा सेंट्रल प्लेटों पर थोड़े से बादल घिराएंगे और बारिश होगी। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाल रेखा के उस पार लगभग 2 मीटर वाली लहरें उठेंगी, अतः दूर समंदर में न जाने की मांग की जाती है, खासकर दक्षिणी पश्चिमी लगूनों के उस पार। तापमान, सेंट्रल प्लेटो पर न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और अधिकतम तापमान 21 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच। तटवर्ती इलाके पर न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच। आज सूर्योदय 6:31 पर, जबकि सूर्यास्त शाम के 5:57 पर।

0: तो देश विदेश की इन्हीं खबरों व मौसम संबंधी जानकारियों के साथ ही यह प्रातःकालीन समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला। आप लोगों ने ध्यान दिया, इसके लिए धन्यवाद। तकनीकी मदद के लिए हम कादर को धन्यवाद देना चाहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
0: आइए शोक समाचार सुनते हैं जागृति रोज शिक्षा मिल थ्रियोले में। जागृति रोज शिक्षा मिल थ्रियोले में 71 साल के 71 इयर्स ओल्ड के जनाब इसाक मिर्जान जिन्हें सब लोग इस्लाम के नाम से भी जानते थे, वो इंतकाल कर गया है। उनका जनाजा कल रात के 9 बजे उन्हीं के मकान जागृति रोज शिक्षा मिल थ्रियोली से निकाल कर प्लेंडू पप्पाए का कब्रस्तान में दफना दिया गया है। फ्यूनरल यस्टरडे एट 9 PM मोसेलमो वीआरएस हाईलैंड्स फिनिक्स में 72 साल की 72 years old की श्रीमती पुष्पावदी चिन्नापिया पैदाशी नाम पुनेन और जिन्हें सब लोग कमला के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 10 बजे उनके बेटे श्री गंगासामी चिन्नापिया के घर मोसेलमो वीआरएस हाईलैंड्स फिनिक्स से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ये सैकुंसों सैंपिया की शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM। एमिलियन स्ट्रीट पुद्रदो विलेज में 74 साल के 74 years old के श्री रामचंद्र बुलाकी जिन्हें सब लोग मिलात के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 10:30 PM उनकी पत्नी श्रीमती सल्दा बुलाकी के घर एमिलियन स्ट्रीट पुद्रदो विलेज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमो की शमशान भूमि ले जाएगी। फ्यूनरल टुडे एट 10:30 AM। तमिल टेम्पल रोड शामुनी में 65 साल की श्रीमती लक्ष्मी

Mutu, Srimati Lakshmi Marimutu, पैदाइशी नाम सोमिना देन और जिन्हें सब लोग रूबा के नाम से भी जानते थे उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 10:30 बजे उनके पति श्री सगादेन मारिमुतु के घर तमिल टेंपल रोड शामुनी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कोंगोपाल शामुनी की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10:30 AM एवेन्यू डे कोलंब मेडिना कों दे मास्क में Avenue de Colombe, Medine Comte de Masque, 74 साल की 76 years old की श्रीमती इंद्राबाई तुकुबा, श्रीमती इंद्राबाई तुकुबा, पैदाइशी नाम अब्बा और जिन्हें सब लोग अत सुनीबाई के नाम से भी जानते थे उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 11:15 बजे उनके बेटे श्री बेटन तुकुबा के घर एवेन्यू डे कोलंब मेडिन कों दे मास्क से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेडिन कों दे मास्क के श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11:15 AM एवेन्यू बेटो कैथ्रो बोन में 66 साल के 66 years old के श्री सामलाल बिसुंदियाल जिन्हें सब लोग कलिप्सो के नाम से भी जानते थे उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 1:00 बजे उन्हीं के घर एवेन्यू बेटो कैथ्रो बोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM रॉ रोड शुमे ग्रीमे 79 साल की 79 years old की श्रीमती पद्मा देवी बाबूराम पैदाइशी नाम कैलास उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दोपहर की 2 बजे उन्हीं के घर रॉ रोड शुमे ग्रीमे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कोंगोपाल शामुनी की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन Today at 2 p.m. Prince of Wales Street, 7000 Triolemet. Tirasi Salke, 83 years old ke, Shri Hemraj Raghunandan, jinhe sab log पावसाद रघुनंदन के नाम से भी जानते थे उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दोपहर के 2 बजे उनके बेटे श्री राजीव रघुनंदन के घर प्रिंस ऑफ वेल्स स्ट्रीट सिट्सियामिल थ्रियोले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए एसएसएस लेन थ्रियोले की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM नंबर बी 85 रेजिडेंस सेंट जॉन क्वार्टर बोन में उनासी साल की 79 years old की श्रीमती कुपामा सुबेन पैदाइशी नाम राम सामी और जिन्हें सब लोग ईवी के नाम से भी जानते थे उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दोपहर के 2 बजे उन्हीं के घर नंबर बी 85 रेजिडेंस सेंट जॉन क्वार्टर बोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सेंट जॉन की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। फ्यूनरल टुडे एट 2 PM रॉ रोड कैथ्रो कोकोमे 73 साल के 73 years old के श्री सत्यदेव मितु जिन्हें सब लोग चंद्रदेव टैक्सी ड्राइवर के नाम से भी जानते थे उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दोपहर के 2 बजे उनकी पत्नी श्रीमती प्रतिमा मितु के घर रॉ रोड कैथ्रो कोको से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावोंचुआ की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 2 PM इन सभी शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: सुबह के 7:04 हुए हैं। स्पोर्ट्स न्यूज़, सुनने वाले को विकास रामधनी का प्यार भरा नमस्कार और आदाब। खेल समाचारों में आपका स्वागत है। स्थानीय फुटबॉल की यात्रा कुसाफा अंडर 20

AFCON 2027 प्रतियोगिताओं से आरंभ होगी सितंबर महीने से। ऐसे में हमारी अंडर 20 क्लब एम यानी 20 साल से कम उम्र वाले हमारे युवा खिलाड़ी 18 सितंबर को ओपनिंग मैच में शुरुआती मैच में नमीबिया का सामना करेगी। उल्लेखनीय है कि मॉरिशस के ग्रुप ए में नमीबिया के साथ सेशल्स और मोजाम्बिक भी है, जबकि ग्रुप बी में दक्षिण अफ्रीका, लेसोथो, अंगोला और इस्वातिनी है, और ग्रुप सी में जाम्बिया के साथ मलावी, कुमोरो और बोत्सवाना। सो 18 सितंबर की शाम मॉरिशस क्लब एम अंडर 20 वर्सेस नमीबिया। भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज से क्रिकेट में टीम इंडिया का मुकाबला श्रीलंका से है, तो मॉरिशस में आइलैंड क्रिकेट एक्स्ट्रावेगेंजा सीजन 4 के अंतर्गत आज दिन के 1 बजे मापू क्रिकेट ग्राउंड में एपीपी लेपर्ड्स का मुकाबला थॉमस कुक टाइगर्स से है, और क्षेत्रीय फुटबॉल में दुदला बीमा सुवेनिया कप रोशनुआ में कल रविवार की शाम 3:30 बजे पॉइंट डेलास्का एफसी बार्सिलोना का मुकाबला वेल लायन से है, और एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इंटर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल पेटोंग टूर्नामेंट कल सुबह 9 बजे से आरंभ हो रही है गोकायू में, जिसमें हर परिषद हर काउंसिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की चैंपियन टीमें और रनर अप्स भाग लेंगी। इसमें मेल ट्रिपलेट्स और डुबलेट प्रतियोगिताएँ भी शामिल की गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंग्लिश फुटबॉल का दरवाज़ा खुल चुका है चैंपियनशिप के साथ, जो कल रात एक पहला मैच आरंभ हुआ, लेकिन द एफए कमिटी शील्ड पर सारा ध्यान केंद्रित है जो कल शाम 6 बजे के लिए निर्धारित है। कल शाम 6 बजे मैनचेस्टर सिटी का मुकाबला आर्सेनल से, सिटी प्रीमियर लीग विजेता है और सिटी एफए कप जीत चुका था, और आर्सेनल प्रीमियर लीग, इन दोनों के बीच कल घमासान मुकाबला होगा एज ए कर्टेन रेजर, यानी कि ये ऐलान करेगा ये शील्ड कि प्रीमियर लीग सीजन आरंभ होने जा रहा है, और ये सीजन अगले शुक्रवार 21 अगस्त से प्रीमियर लीग का पहला मैच खेला जाएगा। सो कल शाम 6 बजे मैनचेस्टर सिटी वर्सेस आर्सेनल, और कल शुक्रवार की रात इंग्लैंड की लीग चैंपियनशिप आरंभ हुई, जिसमें जो पहला मैच खेला गया वो ड्रॉ पर संपन्न हुआ, यानी वुल्वरहैम्पटन वांडरर्स 2 ब्लैकबर्न रोवर्स 2। ब्लैकबर्न 2-0 से आगे थी, लेकिन एन मौके पे इंजरी टाइम में जाकर राउल हिमेनेज़ ने पेनाल्टी पर वुल्वरहैम्पटन वांडरर्स के लिए इक्वलाइज किया। बाकी सभी मैच आज और कल खेले जाएंगे। इस बीच यूईएफए यूरोपा लीग के तीसरे क्वालिफाइंग राउंड में कल जो मात्र मैच खेला गया उसमें लेक ने एवे जाकर के आई टीम को 5-0 से पछाड़ा। स्कॉटिश लीग कप के दूसरे राउंड में कल किलमानुक ने एयर यूनाइटेड को 3-2 से परास्त किया, जबकि क्लब फ्रेंडलीज में ओलंपिक दे मार्सेई की हार हुई, मार्सेई 1 एथलेटिको 2, और फ्रेंडलीज में ही कोवेंट्री सिटी ने कल मोनाको को 2-0 से परास्त किया। अटलांटा 1 एथलेटिक 0। ऐसे में आज भी कई महत्वपूर्ण मैच खेले जाएंगे, खासतौर पे इंग्लैंड के लीग चैंपियनशिप में सभी के सभी मैच आज और कल खेले जाएंगे। स्कॉटिश लीग कप में भी आज 3 मैच रखे गए हैं, लीग 1, लीग 2 और नेशनल लीग के सभी मैच आज से ही आरंभ किए जा रहे हैं, जबकि फ्रेंडलीज में आज और कल ज़बरदस्त मुकाबले रखे गए हैं। आज शाम 5 बजे से ही चेल्सी का मुकाबला रियल सोसिएदाद से है, जबकि बायर्न म्यूनिख खेलेगी अपने होम मैदान पे आरबी लाइप्ज़िग के विरुद्ध। टोटनहम हॉटस्पर का मुकाबला होफेनहाइम से। मैनचेस्टर यूनाइटेड आज शाम लगभग 7:15 बजे ये उसका मुकाबला है, यूनाइटेड का मुकाबला एसी मिलान से। बोरुशिया डॉर्टमुंड वर्सेस एएस रोमा, तो इंटर मिलान खेलेगी रियल बेटिस के विरुद्ध। लीड्स यूनाइटेड वर्सेस ऑक्सबर्ग, एस्टन विला एवे जाएगी बोरुशिया मोंचेनग्लादबाख के मैदान पे। तो ब्राइटन का मुकाबला बोलोनिया से, और एवर्टन खेलेगी लिल के विरुद्ध। न्यूकासल यूनाइटेड वर्सेस बायर लेवरकुसन 0-4। सन्डरलैंड रेन, फुलहम टक्कर लेगी स्टुटगार्ट से, और कल लिवरपूल फुटबॉल क्लब 2-2 मैच खेलेगा कुमो के विरुद्ध। एक पहला मैच लगभग 12 बजे, फिर रात 9 बजे एक और मैच इसी कुमो के विरुद्ध, जिसमें टीम के सभी खिलाड़ियों को खेलने का मौका दिया जाएगा कल शाम और कल रात।

0: तो कल सबसे पहले 2:30 बजे 2:30 PM लिवरपूल वर्सेस कुमु, और रात 9 बजे एक बार फिर उसके साथ मुकाबला कल ही टोटेनम हॉटस्पर वर्सेस होफाइनहाइम, FC बाजल बार्सिलोना, शाल्के 04 रियल मैड्रिड, लिवरपूल कुमु। लिवरपूल की बात हुई तो बता दें कि उसका टेक ओवर 30% का हिस्सा लगभग तय हो गया है, सौदा तय हो गया है। बेजोस बैक द कंसोर्शियम ने एक तिहाई भाग लिवरपूल का खरीद लिया है। खबरों के मुताबिक बड़ी रकम के साथ बिलियनेयर अमेज़न का फाउंडर जेफ बेजोस, साथ में उसके साथ ब्रिटिश इंडियन मिलियनेयर करोड़पति अमित भाटिया के साथ फेसबुक का जो को फाउंडर है एडुआर्डो सेवरिन ने लिवरपूल में 30% का हिस्सा प्राप्त कर लिया है। एक स्ट्रैटेजिक माइनॉरिटी इन्वेस्टमेंट इसे कहा जा रहा है। सो लिवरपूल के पास पैसे हैं, अब खिलाड़ी आएंगे नहीं आएंगे इस बारे में सुनते रहिए। इस बीच अभी तक ब्रैडली बाकुला को लेकर बातचीत जारी है, और जो दूसरा खिलाड़ी है पाकिस्तान जर्मन से वो भी आने की कगार पे है, लेकिन अब 1 सितंबर जो है बहुत दूर नहीं है, इस कारण जल्दबाजी नहीं लेकिन जल्दी करना चाहिए, नहीं तो चिड़िया उड़ जाएगी। और चेल्सी ने एंजो फर्नांडेज के लिए ना कहा है, क्योंकि जो डेडलाइन रखा गया था मैनचेस्टर सिटी की ओर से वो पूरा हो गया, लेकिन फुटबॉल में कभी भी ना नहीं कहते, कुछ भी संभव है, इट्स नॉट ओवर कहते हैं अनटिल इट्स ओवर। सो चेल्सी और एंजो फर्नांडेज 120 मिलियन पाउंड की बात हो रही थी, लेकिन ऐसा संभव अब तक नहीं हुआ है और डेडलाइन पूरा भी हो गया है। आर्सेनल जरेल क्वेंसा को हासिल करना चाहता है। साथ में खबर ये भी है कि लिवरपूल का कोडी गैक्पो भी आर्सेनल में जा सकता है, पर खबर कहां तक सत्य है इस बारे में सुनते रहिए। और इस बीच आर्सेनल अपने सब कुछ एक्टिवेट कर चुका है नए खिलाड़ियों को टीम में लाने के लिए। बात करें अब टेनिस की, जिसमें इगा स्वियातेक ने रायबाकीना को हराकर सीजन का पहला टाइटल हासिल किया साल 2022 के बाद। कैनेडियन ओपन के फाइनल में कल इगा स्वियातेक ने फाइनल में एलेना रायबाकीना को 6-2 और 6-3 से परास्त कर ये टाइटल हासिल कर लिया। सो उनको हार्दिक बधाई। बता दें कि आज शनिवार को सिंसिनाटी ओपन के अंतर्गत कई मैच खेले जा रहे हैं, लेकिन कल शुक्रवार को शेल्टन ने नाकाशिमा को हराया। मेन सिंगल के कनाडियन ओपन में शेल्टन की जीत हुई 6-3 और 7-6 से। और सिंसिनाटी ओपन भी आरंभ हो चुका है, जिसमें सित्सिपास, अरांगो, गोलुबिच, बाउल्टर, बेलुची, बेचेक आदि की जीत हुई। ये प्रतियोगिता आज भी जारी रखी जा रही है। क्रिकेट में हमने बताया कि भारत और श्रीलंका के बीच आज से गल्ले इंटरनेशनल स्टेडियम में पहला वन डे इंटरनेशनल सीरीज का पहला मैच खेला जाएगा। तो ये थी खेलकूद संबंधी चंद जानकारियां। सुबह के 7:13 और 10 सेकंड हुए, आज्ञा दीजिए, नमस्कार और शुभ दिन।
1: आइए सुनते हैं आज की सूचनाएं।
2: सेंट्रल वाटर अथॉरिटी की ओर से विज्ञप्ति। आम जनता को सूचित किया जाता है कि हमारे जलाशयों में पानी का स्तर कम होता जा रहा है, इसके चलते सोमवार 10 अगस्त से खेतों में सब्जियों की सिंचाई, कार वॉश द्वारा पानी का प्रयोग, वाटर प्रेशर से घर, आंगन, गाड़ी की सफाई के लिए पानी का प्रयोग, पूल को नल के पानी से भरना वर्जित है। पुलिस इन सभी नियमों के पालन के लिए नजदीकी से नजर रख रहे हैं। CWA सभी से सहयोग की मांग कर रहे हैं और आपके समझ के लिए धन्यवाद देता है। आर्य सभा मॉरिशस के तत्वावधान में एवं मोका आर्य जिला परिषद के सहयोग मॉरिशस आर्य युवक संघ अपना 34वां आर्य युवक दिवस एवं भारत की स्वतंत्रता की 71वें वर्षगांठ का आयोजन कर रहा है। शनिवार 15 अगस्त को शाम 4 से 5:30 बजे तक लावण्या के आर्य मंदिर में। श्रावण मास

0: के संदर्भ में आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा के तत्वावधान में कैथ कोको आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा शाखा नंबर 27 शनिवार 15 अगस्त को रॉयल रोड कैथ कोको में शाम 3 बजे यज और प्रवचन का आयोजन कर रहा है। श्रावण मास के संदर्भ में मौडालबेया आर्य समाज रविवार 16 अगस्त को मौडालबेया आर्य समाज मंदिर में शाम 3 से 5:15 बजे तक श्रवानी यज का आयोजन कर रहा है। आचार्य होंगे भारत से आए डॉक्टर वेदपाल जी। श्रवण मास के संदर्भ में आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा के तत्वावधान में शनिवार 15 अगस्त को बुआशेरी आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा सुबह 9 बजे से दिन के 12 बजे तक सुर रिपाई वैदिक मंदिर शाम 3 बजे यज और प्रवचन का आयोजन कर रहा है। प्रवचन आचार्य मोहन आचार्य श्रुत बंधु द्वारा किया जाएगा। श्रावण मास के संदर्भ में आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा के तत्वावधान में रविवार 16 अगस्त को महर्षि दयानंद वैदिक मंदिर थ्रोबिश सुबह 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक यज होगा। सरस्वती वेद मंदिर अपदागुचिया शाखा नंबर 13 सुबह 10 बजे प्रवचन आचार्य मोहन आर्य श्रुत बंधु द्वारा किया जाएगा। नाडेस रोड हाइलैंड्स के बाल शिक्षा मंदिर द्वारा श्रावण मास के संदर्भ में 3 दिवसीय यज का आयोजन किया गया है। शुक्रवार 14 से रविवार 16 अगस्त तक, शनिवार 15 अगस्त को शाम के 4:30 बजे और रविवार 16 अगस्त को सुबह के 8:30 बजे।
1: Nous travaillons, nous l'avons dit, dans le Ministry of Labour and Industrial Relations, साथ में MBC के मिलजुलल सहयोग से पेश करल जातबा। सेक्सटा टेक्सटाइल सन एंड वीर कंपनी लिमिटेड जन रॉयल रोड गुडलैंड्स में हक हो जाता मशीन ऑपरेटर जिनका 6 महीना के एक्सपीरियंस बा अपनी काशों खातिर फोन करिया 9 2 9 2 पर अर्जी भेजे की आखिरी तारीख 31 अगस्त 2026। सेक्टर कंस्ट्रक्शन स्वराज कंस्ट्रक्शन लिमिटेड जो लक्ष्मी रोड एक्सपीरियंस त्रिबुशे में हक हो जतवंजा मेसन जनरल यानी कि मासू जेकर 5 बरिस के एक्सपीरियंस बा अपनी काशों खातिर कभी भी आप लोग सक बजाय स्वराज कंस्ट्रक्शन लिमिटेड लक्ष्मी रोड एक्सपीरियंस त्रिबुशे अर्जी भेजे की आखिरी तारीख 15 अगस्त 2026। सेक्टर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सेलेस्ट टेलीकॉम मॉरिशस लिमिटेड जिन एमिताज रोड सैंकाउपा को दो में है खोजता नेटवर्क स्पेशलिस्ट और आईटी मैनेजर जे बीएससी कर लेबा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में और 3 बरिस के लिए एक्सपीरियंस बा। साथ में एक्सपेयर पॉकू डिजिटल क्लियो जे बीएससी कर लेबा मार्केटिंग में और 5 बरिस के लिए एक्सपीरियंस बा। और साथ में चाहला शॉस डू मार्केटिंग ए प्रोजी B2C जे BSc कर लेबा मार्केटिंग में और 3 बरिस के लिए एक्सपीरियंस बा। अकाउंट रिसीवेबल असिस्टेंट जे डिप्लोमा कर लेबा और 2 बरिस के लिए एक्सपीरियंस बा। टेक्नीशियन सपोर्ट क्लाइंट जे डिप्लोमा कर लेबा और 1 बरिस के लिए एक्सपीरियंस बा। और शॉर्ट दू क्लियंटेल जे HSC कर लेबा और 1 बरिस के लिए एक्सपीरियंस बा। एप्लीकेशन के लिए अपन CV विदा करिया बाय मेल recruitment.maurice@celeste.fr। अर्जी भेजे की आखिरी तारीख 28 अगस्त 2026। सेक्टर सर्विसेज वाले अंडरटेकर जोन साइडिंग रोड न्यू ग्रोव में है खोजतवंजा ड्राइवर हेल्पर और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एप्लीकेशन खातिर फोन करिए सकन से जिजनेफ वैश्वित जिजवित पर। अर्जी भेजे की आखिरी तारीख 31 अगस्त 2026। सेक्टर जॉब कॉन्ट्रैक्टर एक्सा कंपनी लिमिटेड जिन कैंस कोता वाकवा में है खोजता इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर एप्लीकेशन खातिर अपन CV विदा करिया बाई मेल axarecruitment@gmail.com पर। अर्जी भेजे की आखिरी तारीख 14 अगस्त 2026। सेक्टर ऑटोमोबाइल न्यूट्रॉन ऑटोकेयर लिमिटेड जोन रॉयल रोड रिविया जोपा में है खोजता मैकेनिक ऑटोमोबाइल जेकर 5 बरिस के एक्सपीरियंस है एप्लीकेशन खातिर जय न्यूट्रॉन ऑटोकेयर लिमिटेड रॉयल रोड रिविया जोपा। अर्जी भेजे की आखिरी तारीख 15 अगस्त 2026। सेक्टर कंस्ट्रक्शन VRS कंस्ट्रक्ट कंपनी लिमिटेड जन श्वाजी रोड पुजदे प्लाक में है खोजाता एक्सकावेटर ऑपरेटर हेल्प एंड ड्राइवर वेल्डर और मैकेनिक फॉर हैवी इक्विपमेंट एप्लीकेशन खातिर फोन करिए 9 2 9 4 9 0 9 पर या कभी भी सक बजाय VRS कंस्ट्रक्ट कंपनी लिमिटेड श्वाजी रोड पुजदे प्लाक। अर्जी भेजी गई आखिरी तारीख 31 अगस्त 2026। सेक्टर ऑटोमोबाइल गाराज चंदन कंपनी लिमिटेड जुनला फोश रोड बिलिया रिवे सेश में है। खोजता पैनल बीटर ग्रेड टू जिकर 5 बड़ी स्किल एक्सपीरियंस है। पेंट

Motor Motor Vehicle जिकर 5 बरिस के लिक्स पे यहाँ सा Secretary Grade 2 JHSC ले पहर लेबा Application खातिन फोन करिया 57-51-56-88 पर या कभी भी आप लोग सकबत जाए गाराज चंदन जो उनकी लाफोज रोड बिले रिवियर सेश में हर जी भेजे की आखिरी तारीख 31

0: प्लम्बर जे डिप्लोमा कर लेबा एक या तीन बरिस स्किल एक्सपीरियंस बा। साथ में जाना एच वी ए सी टेक्नीशियन जे डिप्लोमा कर लेबा एक या तीन बरिस के एक्सपीरियंस बा। अप्लीकेशन खातिर आप लोग सक बजा जाए ऑनलाइन विया मर्शस जॉब्स। अर्जी भेजे की आखिरी तारीख 17 अगस्त 2026। सेक्टर ट्रांसपोर्ट सभी टूर्स कंपनी लिमिटेड जो विजया लक्ष्मी स्ट्रीट पुतोदो आमलेत में है खुजत वंचा ड्राइवर वैन जेकर 6 महीना के एक्सपीरियंस बा। अप्लीकेशन खातिर कॉल करिए 7 जिसबीत 2 सेकंड 6 सेकंड पर और नहीं तो आप लोग सक बजा अपन अर्जी विदा करें। अर्जी भेजे की आखिरी तारीख है 30 अगस्त 2026। सेक्टर रिटेल ट्रेड स्टैनवुड एंटरप्राइज लिमिटेड जो कदाहू लेन संजुनिया विलाज में है खुजता प्राइवेट का खातिर ड्राइवर जिनकर कम से कम 2 बरिस के एक्सपीरियंस बा और सेल्स पर्सन जिकर कम से कम 4 बरिस के एक्सपीरियंस बा। अप्लीकेशन खातिर फोन करिए 7 9 9 9 7 9 7 पर या कभी भी आप लोग सक बजाए स्टैनवुड एंटरप्राइज लिमिटेड कदाहू लेन सेंट जूलियन विलाज। अर्जी भेजे के आखिरी तारीख 16 अगस्त 2026। सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग तुलसी फर्नीचर लिमिटेड जिन पेची शुमेबिलिया रिवियर शेस में है खुजत वंजा अपहोल्स्टर जेकर 3 बरिस के एक्सपीरियंस बा। अप्लीकेशन खातिर फोन करिए 419 01 47 52 55 23 03 या 57 73 84 54 पर या कभी भी आप सक बजाए तुलसी फर्नीचर लिमिटेड पेची शुमें बेलिया रिवियर सेश। अर्जी भेजे की आखिरी तारीख 16 अगस्त 2026। सेक्टर बेकरी वीर एस जी एंटरप्राइज लिमिटेड जन रॉयल रोड बुनाके में है खुजाता केश 1 बरिस के जिकर एक्सपीरियंस बा और ड्राइवर जिकर कम से कम 5 बरिस के एक्सपीरियंस बा। अप्लीकेशन खातिर फोन करिए 418 05 74 पर या 57 75 2501 पर। अर्जी भेजे की आखिरी तारीख है 30 अगस्त 2026। प्राइवेट हाउस होल्ड में देखेला जा वैकेंसी बा यहाँ पर हाउस होल्ड वर्कर के और अगर आप लोग लामोरी और रिविया जगहों पर के आसपास में रहला तो बस यहाँ पर अप्लीकेशन खातिर आप लोग सकबा जा रिविया जगहों पर के EIC फ़ोन करें 402 69 25 पर और रिजों पीतों भी खातिन भी चाहला हाउस होल्ड वर्कर अप्लीकेशन खातिन फ़ोन करिए गुडलैंड के EIC D82 59 17 पर या D82 59 18 पर। तो ई रहल नू थवाई नू लावेनीय जोन तौर खातिर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस साथ में MBC के मिलल जुलल सहयोग से पेश करल कल।
1: वेदिता को धन्यवाद देते हैं नू थवाई नू लावेनीय के लिए। और सुबह के 7:22 हो रहे लीजिए सुनिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से कुछ जरूरी विज्ञप्तियां। क्योपेप दनपत लेन मिसिसिपी स्ट्रीट रिविया सेश स्ट्रीट जूरी लेन और आसपास में जो छोटी छोटी गलियां हैं वहां के लोगों को सूचित किया जाता है कि आगामी सोमवार 17 अगस्त को सुबह के 8:30 बजे से दिन के 1 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। फिर साथ में क्योपेप रेजिडेंस किंग जॉर्ज स्पा शालोम एपिसरी एम एफ डी क्योपेप रेजिडेंस किंग जॉर्ज स्पा शालोम एपिसरी MFDP फूड क्लिनिक के आसपास में रहने वाले लोगों को सूचित किया जाता है कि आगामी सोमवार 17 अगस्त को दिन के 2 बजे से शाम के 5 बजे के बीच बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। जैसे ही सभी मरम्मत कार्य पूरे हो जाएंगे बिन पूर्व सूचना के बिजली की सप्लाई को जारी कर दी जाएगी। इसी बीच सभी असुविधाओं के लिए अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है। तो प्रिय श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से कुछ जरूरी विज्ञप्तियाँ।
2: 819 kHz
3: सुबह का नजराना लाए खुशियां हजार रेडियो मॉरिशस पर।
1: बीते कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता दोनों ऐसे चोर है जो हमारी आज की खूबसूरती चुरा लेती है। जी हाँ, बीते कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता दोनों ऐसे चोर है जो हमारी आज की खूबसूरती चुरा लेते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, गाइज एंड गर्ल्स, प्यारे प्यारे श्रोताओं, देवी

0: सज्जनों, आप सभी को अपने हो सर दोस्त अजय प्रताप सिंह का प्यार भरा नमन स्वीकार हो। नई सुबह नए दिन का आगाज कीजिए एमबीसी रेडियो मॉरिशस के साथ। आज है शनिवार 15 अगस्त साल 2026। आज हम आज आम छुट्टी का दिन है, असम्पशन डे, और साथ में दुनिया भर में भारत अपना स्वतंत्र दिवस मना रहा है। सो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू इंडिया। और असम्पशन डे भी बहुत बहुत अभिनंदन से लोग असम्पशन डे मना रहे हैं। आज आप लोग खाएंगे गा तो मागी, क्या बात है। सुबह के 7:25 वेरी गुड मॉर्निंग वंस अगेन आप सबों को। और आशा करते हैं कि मीठी मीठी नींद से जाग गए हैं। मौसम तो बड़ा ही प्यारा है, वीकेंड भी लगता है कि ऐसे ही प्यारा मौसम होगा। वह आज शाम से काफ़ी ठंड पड़ने वाली है क्योंकि ज़बरदस्त सांटी साइक्लोन मॉरिशस के पास आने वाला है। सो आज दिन के लिए मौसम ठीक है, बट इन द इवनिंग इट विल बी क्वाइट कोल्ड और टेम्परेचर में 2 से 3 डिग्री गिरावट भी आ सकती है। सर्दी का मौसम ऐसा ही होता है भैया। यस, एंड मंडे से स्कूल वापस, यस वापस स्कूल जाना है मंडे 17 अगस्त से। पढ़ाई लिखाई शुरू, और पढ़ाई शुरू होगी फॉर द थर्ड टर्म 2026। एक महीने के छुट्टी के बाद वापस बच्चे स्कूल जाएंगे। पेरेंट्स बहुत खुश हैं कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, क्या बात है, क्या बात है। एक महीने तक अध्यापक और स्टूडेंट्स ने खूब मस्ती की। नाउ इट्स बैक टू वर्क आज फ्रॉम मंडे 17 अगस्त 2026। और मौसम तो बड़ा ही प्यारा है यहाँ, आशा करते हैं आपके यहाँ मौसम भी इतना प्यारा है। और बेशक इस समय आप हमें रेडियो मॉरिशस पर सुन रहे हैं और हमारे टिकटॉक पेज पर भी हमें देख रहे हैं। और फिर आशा करते हैं कि आज अब दिन भर यूँ ही मुस्कुराते गाते रहेंगे और 9 बजे तक हमें टिकटॉक पर देखते रहेंगे और रेडियो मॉरिशस पर सुनते रहेंगे। अगर ये बात है तो सुबह का नज़ा प्रोग्राम लेकर आए हैं अभी से 9 बजे तक। बहुत कुछ बातें, बहुत सारी बातें करनी है आप लोगों से। चलिए अभी के लिए सुनते हैं आज का चिंतन डॉक्टर शांति महावीर जी द्वारा।
1: सदाचार और आत्मिक संतुलन का संगम चिंतन, जहां विचारों में मिठास और मन में शांति। आइए सुनते हैं आज का चिंतन।
2: अकेले चलना सीखिए, क्योंकि हर सहारा हमेशा साथ नहीं रहता है। अपनी ताकत पर भरोसा रखिए, वही आपको हर लक्ष्य तक पहुंचाती है। सबसे मजबूत साथी आपका अपना आत्मविश्वास होता है।

जिंदगी ऐसे ही होती है, थोड़ी सी खुशी, थोड़ा सा गम, थोड़ा हंसना, थोड़ा रोना। जिंदगी का दूसरा नाम है कि नहीं? और बस हंसते रोते हुए आगे बढ़ना है, और बस मंजिल को पाना है। अगर मंजिल को पाना है तो बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, तब जाकर आपको मंजिल मिलेगी। मंजिल यूँ ही नहीं मिल जाती, मंजिल उन्हें मिलती है जो परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, और जिन्हें जिनमें स्ट्रॉन्ग विल पावर है कुछ करने के लिए, तो उन्हें मंजिल ज़रूर मिलती है। तो चलिए सुनते हैं एक भावगी, थोड़ी सी खुशी है थोड़ा सा है गम, आगे क्या होता है सुनते हैं शबीर कुमार आशा भोसले और साथियों की आवाज़ों में ये भावगीत आप सभी के नाम।

0: जदों सो अज 15 अगस्त को भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, यस हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू इंडिया। 15 अगस्त भारत का राष्ट्रीय पर्व है। इस दिन भारत ने 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। इसी हर वर्ष 15 अगस्त को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस बड़े उत्साह और शान से मनाया जाता है। भारत पर ब्रिटिश स्टेट इंडिया कंपनी का प्रभाव 18वीं शताब्दी में तेज़ी से बढ़ा और बाद में भारत सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया। भारतीयों ने स्वतंत्रता के लिए लंबे समय तक संघर्ष किया। स्वतंत्रता आंदोलन में उनके महान नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों ने योगदान दिया, जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। इनके अलावा लाखों ज्ञात अज्ञात भारतीयों ने स्वतंत्रता संघर्ष में योगदान दिया। और 14 अगस्त 1947 की मध्य यात्रा के बाद भारत स्वतंत्र राष्ट्र बना। जवाहरलाल नेहरू ने अपना प्रसिद्ध ट्रस्ट वॉज डेस्टिनी भाषण किया। 15 अगस्त 1947 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इसके बाद हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले से ध्वजारोहण की परंपरा जारी रही है। और स्वतंत्रता दिवस जो है बहुत खुशी की बात है कि काफ़ी सालों के संघर्ष के बाद भारत को आज़ादी मिली। और भारत का जो झंडा है वो तिरंगा है, जहाँ तीन रंगों का है, और केसरिया यानी कि साहस और त्याग का प्रतीक, सफ़ेद शांति और सत्य का प्रतीक, और हरा समृद्धि और विकास का प्रतीक। सो तीन रंग का झंडा है, तिरंगा झंडा है भारत का। और बेशक स्वतंत्रता दिवस भारत में हम मनाते थे, दुनिया भर में हम इस पर्व को मनाते हैं, क्योंकि भारत, हमारे पूर्वज भी भारत से आए हुए थे, हमारे दादा परदादा, हमारे पूर्वज जो आए थे वहाँ से, सो हम उन्हीं के वंशज हैं। सो स्वतंत्रता दिवस हम सभी को, क्योंकि हमारे पूर्वज वहाँ से आए हैं। और मॉरिशस में बहुत से भारतीय लोग हैं, हाई कमीशन ऑफ इंडिया, और बहुत से लोग आए हैं यहाँ पर काम करने के लिए। जो जितने भी लोग भारत से हैं और भारत में जन्मे हैं और वो मॉरिशस में काम करने आए हैं या मॉरिशस में रहते हैं, सो आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएँ, ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। भारत का स्वतंत्रता दिवस सभी को बहुत बहुत अभिनंदन हो।
1: तुम तो ऐसे न थे, तुम्हारा दिल तो हिंदुस्तानी था, प्यार था तुम्हें हिंदुस्तान से।
2: गिला मुझे हिंदुस्तान से नहीं, हिंदुस्तानियों से है। आज भी ये दिल चीर के देखो, मेरे मुल्क, मेरे देश का नक्शा अब भी छपा मिलेगा इस पर।

सुबह का नजराना का पहला हिस्सा यहीं पर समाप्त होता है। कुछ मिनटों में पौने आठ बजने वाले हैं, पौने आठ बजे आप सुनेंगे हिंदी स्पीकिंग यूनियन की ओर से ज्ञान सर्वर कार्यक्रम, और ये कार्यक्रम हमें लेकर जाएगा सुबह के आठ बजे के भोजपुरी समाचारों की ओर। आठ बजे का भोजपुरी में समाचार और शोक समाचार भी। समाचारों के बाद हमारी आपकी मुलाकात फिर से होगी इसी चैनल पर। सुनते रहिए प्रेम से MBC रेडियो मॉरिशस।

0: ज्ञान सरोवर हिंदी संगठन अर्थात हिंदी स्पीकिंग यूनियन द्वारा प्रस्तुत इस साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सभी प्रिय श्रोताओं को हमारा हार्दिक अभिवादन एवं स्वागत है। आप श्रोताओं को विदित ही है कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम हिंदी भाषा एवं साहित्य पर बात करने के साथ साथ हम समसामयिक विषयों पर भी चर्चा करते आ रहे हैं। आज 15 अगस्त है, 80 वर्ष पूर्व भारत स्वतंत्र हुआ। आज हमारी चर्चा इसी विषय पर आधारित है और इस पर चर्चा करने हेतु हमने अपने विशेष अतिथि प्रोफेसर राजशेखर जी को आमंत्रित किया है। प्रोफेसर जी, स्टूडियो में स्वागत है आपका। पहले मैं एक संक्षिप्त परिचय आपका मैं देना चाहूँगा। वर्तमान में प्रोफेसर जी महात्मा गांधी संस्थान के ICCR हिंदी चेयर पर आसीन हैं। आप वहाँ अध्यापन, पाठ्यक्रम निर्माण, शोध एवं अन्य विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। आप यहाँ की हिंदी प्रचार प्रसार में लगी अन्य संस्थाओं की गतिविधियों से भी जुड़े हैं। हाल ही में हिंदी स्पीकिंग यूनियन द्वारा आयोजित भाषण प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल में आप सदस्य रहे हैं। MBC के लोकप्रिय कार्यक्रम अनकही एक कहानी में आप 50 से अधिक स्वरचित कहानियां प्रस्तुत कर चुके हैं। आपकी प्रमुख रचनाओं में हरिवंश राय बच्चन जीवन और सृजन के सोपान, डोडो और अन्य कहानियाँ, सोलिटेयर और अन्य कहानियाँ, कैस्ट्रेल और अन्य कहानियाँ हैं। इसके अतिरिक्त बाल भारती तथा अन्य बाल पत्रिकाओं में आपकी कहानियाँ प्रकाशित होती रही है। प्रोफेसर जी, सबसे पहले हम आपको स्टूडियो में स्वागत कर रहे हैं और भारतीय राष्ट्रीय दिवस के मौके पर शुभकामनाएं हैं हमारे सभी श्रोताओं को भी। तो पहला प्रश्न हमारा यह है प्रोफेसर जी, सभी भारतीय मूल के लोगों विशेष रूप से भारतवासियों के लिए 15 अगस्त एक विशेष महत्व रखता है। यह दिवस भावनाओं और गौरव का दिवस है, इस पर अपना विचार दीजिए।
1: जी सर्वप्रथम आपका हार्दिक आभार गुरुजी।
0: धन्यवाद।
1: और मैं अपने प्रिय श्रोतागण को भी हृदय से अभिनंदन करता हूँ।
0: जी हाँ,
1: जैसा कि आपने पूछा कि यह जो गौरवशाली दिन है उसका क्या महत्व है।
0: जी हाँ,
1: देखिए 15 अगस्त हर भारतवासी के लिए केवल कैलेंडर की एक तारीख या राष्ट्रीय पर्व नहीं है।
0: जी हाँ।
1: बल्कि हमारी चेतना, अस्मिता और अखंड स्वाभिमान का प्रतीक है।
0: जी हाँ।
1: यह दिन उन अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, तपस्या और बलिदान की याद दिलाता है जिन्होंने अपनी जवानी और प्राण देकर इस देश की वेदी के लिए अपने प्राण निछावर किए और उसे अक्षुण रखा।
0: जी हाँ।
1: यह पर्व भावनाओं का संगम इसलिए है क्योंकि इसके साथ हर भारतीय का दिल धड़कता है।
0: बिल्कुल।
1: जब लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा फहराता है और राष्ट्रगान की धुन गूंजती है तो हर आंख में गर्व के आंसू और सीने में देशभक्ति का ज्वार उठ खड़ा होता है। यह दिन सीमा पर डटे वीरों, खेतों में पसीना बहाते किसानों और वैज्ञानिकों की उपलब्धियों का सम्मान करने का अवसर है। 15 अगस्त केवल बीते हुए कल का उत्सव नहीं है बल्कि आने वाले कल को और अधिक समृद्ध, सुरक्षित और सशक्त बनाने का सामूहिक संकल्प भी है।
0: जी हाँ। अच्छा प्रोफेसर जी, यदि हम स्वतंत्रता आंदोलन को केवल इतिहास

0: की एक घटना न माने तो आज के भारत के लिए उस संघर्ष से हमें सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है?
1: स्वतंत्रता आंदोलन केवल इतिहास के पन्नों में दर्ज एक घटना नहीं है
0: जी
1: हाँ। बल्कि संपूर्ण मानव सभ्यता के लिए एक शाश्वत मार्गदर्शिका है। उस संघर्ष से आज के भारत और पूरे विश्व को सबसे बड़ी सीख यह मिलती है कि सत्य, अहिंसा, विविधता और समावेशिता के बल पर विशाल से विशाल साम्राज्य को भी झुकाया जा सकता है।
0: बिल्कुल।
1: भारत ने बिना किसी आक्रामक युद्ध के शांति और नागरिक सत्याग्रह के माध्यम से जो स्वतंत्रता प्राप्त की, वही आज हमारे विशाल लोकतंत्र की आत्मा है।
0: जी
1: 140 करोड़ से अधिक की विविधतापूर्ण आबादी वाला भारत जब लोकतंत्र को सफलतापूर्वक जीता है तो पूरी दुनिया की विविधतापूर्ण जो एक सोच है
0: जी हाँ,
1: वहाँ यह साबित करता है कि विविधता मतभेद का नहीं बल्कि एकता का आधार है। जैसा कि गुरुजी आप जानते हैं
0: जी हाँ,
1: कि यही लोकतांत्रिक और अहिंसक मूल्य भारत की प्राचीन सोच वसुधैव कुटुंबकम अर्थात संपूर्ण विश्व एक परिवार है
0: जी
1: को जीवंत करते हैं
0: जी।
1: संघर्ष की यह सीख आज संपूर्ण विश्व को यह संदेश देती है कि वैश्विक चुनौतियों का समाधान युद्ध और विभाजन में नहीं बल्कि संवाद, सह अस्तित्व, भ्रातृत्व और आपसी सद्भाव में निहित है।
0: बिल्कुल, कितनी अच्छी सीख है ये। मॉरिशस में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों के लिए भारत का स्वतंत्रता दिवस किस प्रकार की भावनाएं और स्मृतियां लेकर आता है?
1: बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया गुरुजी।
0: जी हाँ,
1: मॉरिशस में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों के लिए भारत का स्वतंत्रता दिवस केवल एक विदेशी उत्सव नहीं
0: बिल्कुल
1: बल्कि उनके खून के रिश्ते और साझी आत्मा का पर्व है। भारत और मॉरिशस दो दिल एक जान की तरह जुड़े हैं
0: जी हाँ।
1: यह पावन अवसर उस दौर की स्मृतियां संजोता है जब 1901 ईस्वी में महात्मा गांधी का मॉरिशस आगमन हुआ था। उनके मार्गदर्शन और शिक्षा पर जोर देने की सीख ने ही यहाँ के गिरमिटिया समाज को अपने अधिकारों और स्वाभिमान के लिए खड़ा होना सिखाया।
0: बिल्कुल,
1: अद्भुत संजोग है कि भारत में जिस 12 मार्च को गांधी जी ने ऐतिहासिक डांडी यात्रा शुरू की थी वही तारीख आगे चलकर मॉरिशस का स्वतंत्रता दिवस बनी।
0: जी हाँ, 12
1: जो,
0: मार्च
1: जी जो दोनों देशों के अटूट वैचारिक बंधन को दर्शाती है। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो दोनों देश सदैव एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। भारत का स्वतंत्रता दिवस हर मॉरिशस वासी के हृदय में अपनी जड़ों के प्रति अगाध प्रेम, गर्व और पूर्वजों के संघर्ष की जीवंत स्मृतियां लेकर आता
0: है। बहुत ठीक है। अंत में यदि आपको 15 अगस्त के अवसर पर भारत और मॉरिशस की युवा पीढ़ी को केवल एक संदेश आपको देना हो तो क्या संदेश आप उन्हें देंगे?
1: जी देखिए, एक बहुत ही सुंदर पंक्ति है
0: जी,
1: सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है
0: जी हाँ।
1: देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ये आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है
0: जी।
1: तो
0: हाँ।
1: किसी भी युवाओं को संदेश देने से पहले मैं एक पक्ष की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा
0: और जी हाँ।
1: श्रोताओं का भी कि भारत की स्वतंत्रता की लंबी यात्रा अनगिनत भारतीयों के त्याग और बलिदान की अमर महागाथा है
0: जी हाँ।
1: इस संघर्ष में महात्मा गांधी के अहिंसा और सत्याग्रह ने पूरे देश को एक सूत्र में पिरोया और ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी। वहीं चंपारण से लेकर बारदोली तक हमारे खेत खलियानों में पसीना बहाने वाले किसानों और कारखानों के मजदूरों ने आर्थिक शोषण के खिलाफ आवाज उठाकर आजादी के आंदोलन को जन आंदोलन में बदल दिया। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि जन आंदोलन होना चाहिए
0: जी हाँ।
1: इस महासंग्राम में आम नागरिकों की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण थी जिन्होंने हर अत्याचार सहकर भी राष्ट्र प्रेम की ज्वाला को बुझने नहीं दिया।
0: बिल्कुल,
1: क्रांतिकारियों के प्राणोत्सर्ग से लेकर साधारण जनता के अटूट सहयोग तक हर वर्ग का त्याग इस क्रांति का आधार बना। स्वतंत्रता सेनानियों का यह सर्वस्व समर्पण हमें याद दिलाता है कि भारत की आज़ादी किसी एक वर्ग की नहीं

0: बल्कि हर भारतीय के पसीने, रक्त और संकल्प की साझी धरोहर है। गुरुजी, आपको पता होगा कि भारत में एक आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ,
1: जी हाँ,
0: गांधी जी के नेतृत्व में,
1: जी हाँ,
0: भारत छोड़ो आंदोलन, कहते हैं कि
1: इंडिया,
0: हाँ, कहते हैं कि उस समय भारत के अधिकांश जो महत्वपूर्ण महापुरुष थे या जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको जेल में बंद कर दिया गया था या नज़रबंद कर दिया गया था। उसके बावजूद वह आंदोलन बहुत ही सफल रहा, और इतना सफल रहा कि उसको कहते ही हैं कि ये स्फूर्त आंदोलन हो गया, यानी खुद ब खुद
1: स्वस्फूर्त कर हम,
0: यानी जनता ने उस आंदोलन को जो है सफल बनाया।
1: सही।
0: तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो हमारे पूर्वजों ने जो कुर्बानी दी है, उसे हम इस दिवस को याद करते हैं।
1: जी हाँ।
0: जैसा कि आपने पूछा कि भारत और मॉरिशस के युवाओं को क्या संदेश मिलता
1: जी
0: है इस तरह के दिवस से, तो आप देखेंगे कि 15 अगस्त के पावन अवसर पर भारत और मॉरिशस के युवाओं के लिए एक ही संदेश है,
1: हाँ,
0: कि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य केवल एक नौकरी या आजीविका पाना नहीं है, बल्कि चरित्र निर्माण और राष्ट्र सेवा भी है।
1: सही।
0: सच्चा नागरिक वही है जो निस्वार्थ देशभक्ति से परिपूर्ण हो और जिसके भीतर अपने समाज और देश के कल्याण का भाव हो।
1: हाँ, सही। हाँ।
0: हमारे शरीर का कतरा कतरा इस मातृभूमि का ऋणी है, चाहे भारत में महात्मा गांधी की सोच हो या मॉरिशस में सर शिव सागर राम गुलाम का दूरदर्शी नेतृत्व। इन महान विभूतियों ने अपने त्याग से जिस सशक्त और स्वाभिमानी समाज का सपना देखा था, उसे आगे बढ़ाना आज के युवाओं का सर्वोच्च कर्तव्य और एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। युवा शक्ति ही राष्ट्र की असली ताकत है। अपनी जड़ों और मूल्यों से जुड़कर ज्ञान और निस्वार्थ कर्म के बल पर अपने अपने देशों को प्रगति के शिखर पर ले जाएं और उनके सपनों के श्रेष्ठ राष्ट्र का निर्माण करें। जय हिंद, जय मॉरिशस।
1: हाँ, प्रोफेसर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। युवाओं के लिए यह संदेश जो है बहुत मतलब सारगर्भित के साथ साथ मतलब प्रासंगिक भी है। आज हम जो युवा जो मूवमेंट देख रहे हैं, हम अपने कार्यक्रम के अंत तक हम पहुंच गए हैं, और जाते जाते मैं एक निमंत्रण हमारे सभी श्रोताओं को देना चाहूँगा। शनिवार 29 अगस्त को IGCIC फिनिक्स में हम लोग एक इसी संदर्भ में, स्वतंत्रता भारत के स्वतंत्रता दिवस के संदर्भ में एक कार्यक्रम चला रहे हैं, प्रेरणा के सुर। आप सभी श्रोतागण आमंत्रित है, और यह कार्यक्रम भारत के राष्ट्रीय दिवस के संदर्भ में आयोजित किया जा रहा है। इस संबंध में अगले कार्यक्रम में ज़्यादा खुलासा दिया जाएगा। आप सभी श्रोतागण, बहुत बहुत धन्यवाद आपके ध्यान के लिए, और प्रोफेसर जी आपको बहुत विशेष धन्यवाद, और अगले शनिवार तक इसी तरह के कार्यक्रम को लेकर हम आपकी सेवा में प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: सभी को भारतीय स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं
1: मेरी तरफ से भी।
0: जी, जय हिंद, जय मॉरिशस।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: अपन घरी मिला ले जाए इबखत फजर के 8 बजल बा।

0: सबको एक नमस्ते और आदाब। फजर के 8 बजे के भोजपुरी समाचार सुना जा। ईंधन के दाम में फिनों से बढ़ोतरी आगल। आधी रात से पेट्रोल की कीमत 64.25 रुपया से बढ़ के 70.65 रुपया प्रति लीटर के हो गल बाते। माने इमें 6.40 रुपया के वृद्धि हो गल बाते। तो दूसर देने में डीजल के दाम बरकरार वे बा माने 71.25 रुपया प्रति लीटर। ये फैसला कल रात सुख के लगावल गल पेट्रोलियम प्राइसिंग कमिटी के बैठक के बाद लेवल गल। मुख्य रूप से ईंधन के अंतर्राष्ट्रीय दाम में बदलाव और प्राइस स्टेबिलाइजेशन अकाउंट में दर्ज 3.5 बिलियन रुपया के घाटे के ध्यान में रख के ये कदम उठावल गल। ऐसा बखत में पेट्रोलियम पैदावार के दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित करे खातिर स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के संगे को बिक्री और खरीद समझौता पर ही हस्ताक्षर करियन। ये फैसला कल कैबिनेट के बैठक में मंजूरी दे देवल गल। इस समझौता में मॉरिशस और भारत के दोनों सरकार के बीच सहयोग के तहत करल जाता। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम कल सांझ के फोर्ट अल्बर्ट मिनी सॉकर पिच के उद्घाटन करलन जे 3.5 मिलियन रुपया के लागत से बनकर तैयार होल। एकर बाद प्रधानमंत्री हौजुवे के एगो नवा पुलिस स्टेशन के उद्घाटन करलन। अपन भाषण में डॉक्टर नवीन राम गुलाम ड्रग्स तस्करी के खिलाफ संघर्ष करे में सरकार के कटिबद्धता दोहराइलन। पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी प्रकाश डालल गल। असम्पशन ऑफ द वर्जिन मेरी ईसाई खासकर कैथोलिक समुदाय के एगो पवित्र और प्रमुख त्यौहार है जे हर बरिस 15 अगस्त के मनावल जाला। इस दिन माता मरियम के स्वर्गारोहण के जश्न मनावल जाला। मॉरिशस जैसन देश में इस दिन सरकारी छुट्टी होवेला और नीला उजर रंग के पारंपरिक गातोमाही काट के त्योहार हर्षोल्लास के संगे मनावल जाला। आज 15 अगस्त के भारत अपन 80वां स्वतंत्रता दिवस पूरे हर्षोल्लास के संगे मनावता। ई ऐतिहासिक अवसर उ अंगिनत स्वतंत्रता सेनानी लोगन के निस्वार्थ बलिदान के नमन करे के दिन है जेकर बदौलत आज भारतीय जन आजाद हवा में सांस लेवत हवन जा। आज भारत वैश्विक मंच पर एगो उभरे होला महाशक्ति के रूप में थराबाती। अंतरिक्ष अनुसंधान से लेके डिजिटल तकनीक और आर्थिक विकास ले भारत भरती दुनिया में अपन अमित छाप छोड़ दिलाना। तो दूसर देश में पश्चिम एशिया में युद्ध के बीच दुनिया के सबसे अहम समुद्री ऊर्जा गली में शामिल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस जलमार्ग पर संकट आर जस्ती भयंकर होते जाता। संयुक्त अरब अमीरात काल सुख के आरोप लगेलन कि हॉर्मस के से गुजरे ओकर सरकारी तेल समूह ADNOC से जुड़ल दुगो टैंकर के ईरान निशान बनेलन। दुगो जहाज पर ही ड्रोन हमला के बात सामने आल। तेकरवे संगे हमने के भोजपुरी समाचार समा भल। ध्यान खातिर धन्यवाद। नमस्ते और आदाब।
1: News on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: आवाज़ मरने की खबर सुना जा। मूसलमो VRS हाइलैंड्स फिनिक्स में, मूसलमो VRS हाइलैंड्स फिनिक्स में। मूसलमो VRS हाइलैंड्स फिनिक्स में 3 कोरी 12 बरिस के 72 के श्रीमती पुष्पावधि चिन्नापिया, श्रीमती पुष्पावधि चिन्नापिया पैदाश नाम पुनैन और जिनकरा सब लोग कमला के नाम से जस्सी जाना थलन जा उनकर मृत्यु हो गल बाते। उनकर माटी आज सामदी के दिन की 10 बजे उनकर बेटा श्री हैंगा सामी चिन्नापिया के घरे मूसलमो VRS हाइलैंड्स फिनिक्स से उठा के क्रियाक्रम खातिर सैकुंस्तांस सैंपिया किशमशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमिशन टुडे एट 10 AM तमिल टेम्पल रोज शामुनी में, तमिल टेम्पल रोज शामुनी में 3 कोरी 5 बरिस के 65 के श्रीमती लक्ष्मी मारीमुतु पैदाशी नाम सोमी

0: डिन और जिनकरा सब लोग हुबा के नाम से जस्सी जोनाथन जॉनकर मृत्यु हो गल बातें उनकर माटी आज दिन के दस बज के आधा आज दिन के दस बज के आधा उनकर पति श्री सगादेन मारीमुतु के घरे तमिल टेम्पल रोड शामुनी से उठा के क्रियाक्रम खातिर कांगोपाल शामुनी के श्मशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमेशन टुडे एट हाफ पास्ट 10 AM एवेन्यू बेटो कैथो बोन में तीन कोरी छः बरिस के 66 ओं के श्री सामलाल बिसुंदयाल जिनका सब लोग कलिप्सो के नाम से जस्सी जाना थलन जा उनकर मृत्यु हो गल बात है उनकर माटी आज दिन के एक बच्चे आज दिन के एक बच्चे उनके ओकर घरवे से उठा के आवेनी बेतु कैथोबोन से उठा के क्रियाक्रम का तेर गांधी पालमा के श्मशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM रॉयल रोड शुमे ग्रिये में तीन कोरी 19 बरिस के 79 ओं के श्रीमती पद्मा देवी बाबूराम पैदाइशी नाम कैलाश उनकर मृत्यु हो गल बात है उनकर माटी आज दिन आज दोपहर के दो बजे उनकर घरवे से रोदशमे से उठा के क्रियाक्रम खातिर कांगोपाल शामुनी के श्मशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM प्रिंस ऑफ वेल्स सिचेमिल ट्रियोले में चार कोरी तीन बरिस के 83 ओं के श्री हेमराज रघुनंदन जिनकरा सब लोग प्रसाद रघुनंदन के नाम से जस्सी जाना थलन जा उनकर मृत्यु हो गल बाटे उनकर माटी आज दोपहर के दो बजे उनकर बेटे श्री राजीव रघुनंदन के घरे प्रिंस ऑफ वेल्स स्ट्रीट सिच्चे मिल थ्रियोले से उठा के क्रियाक्रम खातिर SSS लेन थ्रियोले की श्मशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM एमिलियन स्ट्रीट पुद्रदो विलेज में तीन कोरी 14 बरिस की 74 ओं के श्री रामचंद्र बुलाकी जिनकर सब लोग मिलाद के नाम से जस्सी जाना थलन जा उनका मृत्यु हो गल बात है उनकर माटी काल दिमास के दस बज के आधा उनकर पत्नी श्रीमती सालदा बुलाकी के घरे एमिलियन स्ट्रीट पुद्रदो विलेज से उठा के क्रियाक्रम खातिर बेलमो की श्मशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमेशन फ्यूनरल टुमोरो एट हाफ पास्ट 10 AM तो जितना जो परिवार दुख में है वन जा दुख के ई बखत में MBC के बगल से सब कोई के हमने सहानुभूति प्रकट करत हैं जा।
1: This is Radio Mauritius.

ज़िंदगी में बहुत से ऐसे सवाल हैं शायद जिनका कोई जवाब नहीं। जवाब ढूंढते ढूंढते वक्त निकल जाता है, उम्र ढल जाती है, पर सवालों का जवाब मिलना मुश्किल हो जाता है। ऐसा क्यों? जी हाँ, ये तो ज़िंदगी है। ज़िंदगी का यही तकाजा है कि इसी कहते हैं कि कुछ सवाल ना ही करे तो अच्छा है, क्योंकि उसका जवाब है ही नहीं। सुबह 11:14, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग मॉरिशस, आप सभी को अजय प्रताप सिंह का प्यार भरा नमस्कार। देवी और सज्जनों, लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं AM2 रेडियो मॉरिशस पर। AM मोड पर चल रहा है हमारा प्रोग्राम और टिकटॉक पेज पर आप हमें देख सकते हैं। यस, योर डेडिकेशन ऑन 4028085 या फिर टिकटॉक पेज पर आप हमें पेशा का SMS कर सकते हैं। You have to go on TikTok and type Radio Mauritius. So, आपको TikTok page मिल जाएगा। So, आप हमें देख सकते हैं अभी से 9 बजे तक। And you want to listen to me on radio, it's 819 kHz, 820 kHz पर रेडियो पर, और ऑनलाइन सुनना चाहते हैं तो जाएँ, क्लिक करें www.mbcradio.tv और क्लिक करें लिसन रेडियो मॉरिशस। ये पहल का गाना लव इन गोवा, जी हाँ, बहुत ही प्यारा गाना, बप्पी लहरी की आवाज़ में ये गीत हम चलाएँगे। अरविंद जी के नाम, हाय अरविंद जी, हेलो, और शर शर

0: Charada Chaturi, Gitap Kinam, Devika Damri, Bina Padu, very good morning. Amrita Bihari, Amara Saad De Rahi Hai. बहुत बहुत धन्यवाद हमारा साथ देने के लिए. और ये जो प्यारा सा गाना है अनिजा जी के नाम भी हम चलाएंगे, इब्राहिम शेख, यह गीत आपके नाम भी जाएगा, यही गाना हम चलाएंगे. इन सब लोगों के नाम जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं. यस अनेश्वरी, हेलो गुड मॉर्निंग. जाहिर भाई, नाफ, फिर सरस जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं. और जी हाँ, यस यही गीत हम चलाएंगे. रविराज बिच्चू के नाम, आप रहते हैं लाल माटी. जी हाँ, आपकी पत्नी स्वयं प्रभा, बेटा प्रत्यक्ष और सब बिच्चू परिवार के नाम. अमृता डुंगूर, वही से उनके बेटे के नाम भी गीत जाएगा. चाचा साइलेंट की ओर से उनके भतीजा माधव के नाम. और माधव जो है अपने चाचू साइलेंट से बहुत प्यार करते हैं और हमेशा कहते हैं चाचू तुम कब आओगे. सो बेटा चाचू आएंगे आपको देखने के लिए जब उनको समय मिलेगा. ऑलराइट, बी पेशेंट. टीना की ओर से गीत जाएगा कवि. माला, रीना, सब बैठो परिवार के नाम. और सभी स्टूडेंट्स और अध्यापक दोस्त जो स्कूल की छुट्टियों में हैं, हैप्पी स्कूल हॉलीडेज, मंडे से वापस स्कूल. ऑलराइट, सत्यव एसएसएस कॉलेज के सब स्टूडेंट्स अध्यापक दोस्तों के नाम, विदाउट फोकसिंग प्रतिमा, केत, सजू, विरापन, रोसाई, अपाया एंड टीना दीना. संजय बिहारी गीत जाएगा आपकी ओर से आपकी पत्नी सुलेखा और सब बिहारी परिवार के नाम. ईश्वर सुबन गीत आपके नाम, आपकी पत्नी, बेटे, बहू, बेटी, दामाद और सब सुबन परिवार के नाम. युधिश शिवदारी गीत आपके नाम भी. अंधेरा लौतन यह गीत आपके नाम भी जाएगा. अनिता लाल जी मौदाल से सब इतु परिवार के नाम, सब लाल जी परिवार के नाम. अनिता फ्री कॉम्फ्लाक से है. रिक्ता की ओर से गीत जाएगा उनकी बहन रेणुका के नाम. रफिक मोहित है तायाक से. बायाबू वाकवा से. रेहाना हसनारी है फेनिक्स से. हाय रेहाना, ये गीत जिया, जलीला, बैन, कोवैसा और सब हसनारी परिवार के लिए. देविका रामगतिया और उसके पूरे परिवार के नाम. और इस समय हमारा साथ दे जेम्स. हाय जेम्स, ये गीत आपके नाम भी. हाय रिद्वेश, रिद्वेश दत्तू जो हमें देख रहे हैं टिकटॉक पेज पर, यह गीत आपके नाम, आपके मम्मी पापा, आपके पूरे परिवार के लिए. विक्की बोईरागी, ये गीत आपके नाम भी. दिलवंती सुनत और रिद्वेश बहुत खुश हैं क्योंकि उसका नाम रेडियो पर आ रहा है. और यहाँ पर एक दोस्त हैं, हम उनसे मिलने की कोशिश करेंगे. यस हेलो गुड मॉर्निंग, नमस्ते, हेलो हेलो. लगता है आपके फ़ोन में प्रॉब्लम है. प्लीज हेलो हेलो
1: हेलो. नमस्ते.
0: नमस्ते जी, आपका नाम?
1: लीलो ग्रैंडवासे.
0: हाय लीलो, कैसे हैं आप?
1: हम तो ठीक है, तू कैसे पता?
0: एकदम एकदम ठीक ठाक.
1: हमने के सीजो सिटीजन के प्रेसिडेंट के जन्मदिन बयाद.
0: क्या नाम है?
1: श्याम जैनू.
0: ओके, सो हैप्पी बर्थडे कहते हैं संजय नू को.
1: हाँ, उनके दो बेटी, दो दामाद, पांच नाती नाती.
0: हाँ,
1: सब मेंबर्स के साथ सीनियर सिटीजन के एक सुंदर सा गाना जन्मदिन के डाल देना.
0: जरूर हम चलेंगे, प्यारा सा गीत सुनते
1: हमारे को चाचा बा प्लान माइबू रहेला. ओके, 86 बनाने हो भैया.
0: चलिए हम दुआ करते हैं वो 100 साल तक जिए.
1: हम मून कटवाऊ.
0: उन्हें ढेर सारा प्यार. ओके जी, जरूर चलाएंगे. ठीक है, सो धीरे रखिए क्योंकि प्रोग्राम में अभी 45 मिनट्स का प्रोग्राम है. सो मैक्सिमम 7 या 8 गाने चला पाएंगे. राइट, यही गीत हम चलाएंगे. इंदिरा लौटन के नाम, राजा राम का बर्थडे. हैप्पी बर्थडे राजा राम. इंदिरा जी, भूमिषा जीव जी, ये गीत आपके नाम भी जाएगा. अनिता लाल जी भी हमें फॉलो कर रही है, थैंक यू. रिद्वेश दत्तू वो बहुत खुश है क्योंकि स्कूल शुरू हो रहा है मंडे से, वो वापस अपने दोस्तों से मिलेंगे, है ना रिद्वेश दत्तू. सो बी ए गुड बॉय एंड ये गीत आपके नाम खासम खास. और जितने भी लोग इस समय में सुन रहे हैं रेडियो मॉरिशस पर, यह गीत आपके नाम. और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं टिकटॉक पेज पर, यह गीत आपके नाम भी. ये गाना है फिल्म लव इन गोवा से, टाइटल ट्रैक बप्पीदा की आवाज में. ये गीत प्रताप की ओर से उनके बेस्ट फ्रेंड हिरीश नारायण के नाम भी. हिरीश नारायण है मिडलैंड से. हाय नीर हिरीश.

कहते हैं दोस्तों कि हर काम अपने सही समय पर होता है, ना समय से पहले ना समय के बाद। जब आपका समय आएगा तभी वह काम होगा, उससे पहले बिल्कुल नहीं होगा। सो यू हैव टू वेट फॉर द राइट मोमेंट। राइट मोमेंट में राइट काम होता है, सही काम सही समय पर। थोड़ा सा धैर्य धारण करना सीखिए। आजकल लोगों के पास धैर्य धारण करने की शक्ति लगता है जैसे चली जा रही है। सो यू हैव टू बी पेशेंट। सही समय पर सही काम होता है, समझदार को इशारा काफ़ी है। हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। आई डोंट नो व्हाट यू से, आई नो व्हाट यू से। अगला गाना लकी वुमन के नाम हेलो, जहां आप इंग्लैंड में हैं और हमें सुन रही है। सो लकी वुमन दिस गाना फॉर यू। प्रीति सिबाल, यह गीत आपके नाम मुकेश कुमार। फिर तारीसा से जी, हाई मार्को और रिजवेश दत्तू हमारे साथ दे रहे। केविन गोबिन, यस दिस गाना विल बी फॉर यू। और यही गीत हम चलाएंगे फिल्म एक दूजे के लिए। सत्यम सोनू के नाम हाई सत्यम, सूरज गंगा, मुकेश गंगा, यह गीत आपके नाम भी। चित्र और ज्ञान विश्राम और अलवे से है, फातमा न्यू ग्रोव से, आफेज हेलाविनियस सैम्पियर से, रोजिदा है हाईलैंड से, मैं जमीन फ्रॉम ब्लैंडवेयर कलकतिया जिराखन और हरकू परिवार खजोले से, चाची ललिता कुशल, फिर चाचा आत्मा राम, यह गीत आपके नाम भी। लाफलोवा की शालिनी हीरू की ओर से, लाफलोवा की शालिनी हीरू की ओर से, उनके पति विशाल, उनकी दो बेटियाँ, उनके भाई ये कृष्णा और सब हीरू परिवार के नाम। खुशी वायती पर चित्र व्यसे है, यह गीत आपके नाम भी। राजमन्ना लोंग चिबू।

राजा नानो से प्रवीण भैरव संजीव श्याम मंगल के नाम भी यह गीत जाएगा। रावेश बंधु यह गीत आपके नाम और सब बंधु परिवार के नाम, आशा जानू फ्रॉम कॉटेज, कुणाल हिरीलाल उनकी पत्नी और बच्चों के नाम, संजय हरिचंद पिताओं से उनकी पत्नी और बेटी हविष्का के लिए यह गीत जाएगा। आंटी शंकुश और जयराज रानी सब दुलार परिवार के नाम जो रहते लाल माती, फिर नाइला नाइजा ब्लॉग यह गीत आपके नाम भी हम चलाएंगे। लकी वुमन भी हमारा साथ दे रही है, मुस्कुरा रही है, क्या बात है। प्रतिमा दुखित, हेलो प्रतिमा, वेरी गुड मॉर्निंग आपको, और गर्मा गर्म चाय और कॉफ़ी के साथ साथ हो जाए ये प्यारा सा गाना। और ये गीत सभी रेडियो मर्सेस के सुनने वालों के नाम, और जितने लोग मुझे टिकटॉक पर देख रहे हैं, एसएमएस कर रहे हैं, और यहाँ पर एक कॉल है, हम इस कॉल को अटेंड करेंगे। हेलो हेलो, यस माता जी, लगता है आपके फ़ोन में प्रॉब्लम है, आई एम सॉरी, माफ़ी चाहते हैं अगर आपका फ़ोन में प्रॉब्लम, तो हम आपसे बात नहीं कर पाएंगे, इसीलिए अपना फ़ोन वेरीफाई कीजिए फ़ोन करने से पहले। एक ही नंबर है 4028085 का महेश परिवार इस काली से है, और यही गाना हम चलाएंगे। चिकोरी परिवार के नाम, हेलो चिकोरी परिवार, गुडलैंड से जानकी परिवार है गुडलैंड से, फिर रंभा है स्विट्जरलैंड से उनके पति उनकी बेटियां और सब परिवार के लिए। रुखसाना शनिक ये गीत आपके नाम, वीना नागा, हेलो वीना, और बेशक लकी वुमन भी हमारा साथ दे रही है, थैंक यू। चलिए एक साथ सुनते हैं प्यारा सा गाना, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए।

एक परम सत्ता है, एक शक्ति है, उस शक्ति के बिना दुनिया में कुछ भी नहीं होता। हम उसे भगवान कहते, खुदा कहते, अल्लाह कहते, विधाता कहते, और अगर भगवान की मर्जी के आगे कुछ भी नहीं हो सकता है, जो वो चाहते हैं वही होता है। इंसान बहुत सारी योजनाएं बनाता है कि वो ये करेगा वो करेगा, पर वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अगर हर इंसान इस बात को मान ले तो ज़िंदगी कितनी खूबसूरत बन जाए, है कि नहीं। अगला गाना जो है फिल्म हनीमून से लिया गया, आधा तेरा दिल आधा मेरा दिल मिल के हुआ एक दिल। ये गीत ललिता चरण जी के नाम, उनके पति धनराज, और अब वो गर्मा गर्म चाय एंजॉय करें और हमें सुन रहे हैं। प्रिंसेस साना गीत आपके नाम भी, दुगुद ये गीत आपके नाम, रजनी जी हाँ आपका जन्मदिन है, सो बहुत बहुत बधाई आपको, ढेर सारा प्यार आशीर्वाद। लकी वुमन हमारा साथ दे रही है, थैंक यू जी। रजनी की ओर से गीत जाएगा डेजीमान पूजा अविनाश कृष्णा मेहोज वीना फकीर, फिर प्रतिमा दुखित राम, ये गीत जाएगा आपके पति कृष्ण, मोम बसंती दुखित राम और रामसरन परिवार के लिए, और दुमेश जयपोल जी हमारा साथ है, हाय अमिका, हाय स्वीट एंड लवली अमिका, और आपने ये नहीं बताया आप कहाँ से हैं। स्वामी का अगला गीत आपके नाम भी, अनुषा भी हमारा साथ दे रही है ये गीत, रीता की ओर से अनुष्का, फिर शैलेश स्वस्ती और पूरे परिवार के लिए। सम्राट वेरी गुड मॉर्निंग, नेपाल से बहुत से लोग हमें देख रहे हैं टिकटॉक पेज पर, हेलो नेपाल वालों हम हैं आपके साथ, यस। और यही प्यारा सा गीत उन लोगों के नाम जो बीमार है, अस्पताल में है, क्लिनिक में है, अनाथ आश्रम में, या उन लोगों के नाम जो काफ़ी परेशान हैं किसी बात को लेकर, आप शायद डिप्रेशन में हैं या आपका दिमाग नहीं काम कर रहा, तो बस हम कहेंगे अगर दिमाग काम नहीं कर रहे उस बात को लेकर, तो उस बात को आप प्रभु के चरणों में डाल दीजिए, भगवान कोई ना कोई रास्ता आपके लिए ज़रूर खोलेगा। जब इंसान के बस में कुछ नहीं होता है तो बस उस प्रॉब्लम को आप भगवान को सौंपिए और आप देखेंगे कि वो प्रॉब्लम उसका समाधान हो ही जाएगा। यह थोड़ा सा पेशेंट आपको रहना है। और अभी एक फ़ोन है, चलिए हम

0: फोन लेते हैं, नानी जी है। हेलो नानी जी।
1: हेलो जी, प्रणाम जी।
0: शुभ नमस्कार, कैसी हैं आप?
1: मैं तो बिल्कुल ठीक ठीक ठीक हूँ।
0: हाँ, और हमारे हमारे प्रोग्राम को एंजॉय कर रही है।
1: हाँ, आपने अच्छा कहा कि ऊपर वाले की मर्जी के आगे एक पत्ते भी हिल।
0: हाँ, ये तो है, ये तो है, ये तो
1: जो कुछ भी हिल रहा है, डोल रहा है, उसकी मर्जी इसमें शामिल।
0: हाँ, ये तो है।
1: हमें तो ये मान लेना चाहिए,
0: अगर इस बात को हम स्वीकार कर लें कि जो भगवान चाहता है वो होता है, तो इंसान संतुष्ट रहेगा, खुश रहेगा, क्योंकि इंसान को कभी कुछ बस ही नहीं होता, उसे और चाहिए और चाहिए, जब चाहता रहता है फिर भगवान कहते हैं चलो मेरे साथ। ये तो है।
1: आज तो वातावरण एकदम शुद्ध है, मौसम सुहाना है।
0: हाँ, और आजकल यज्ञ हवन चल रहा है, घर घर में यज्ञ हवन हो रहा है, वेदों का पाठ हो रहा है, बहुत अच्छी बात है।
1: आज हमारे पास हमारे बहन के घर में बच्चन बल की स्थापन हो रही है।
0: ये तो बहुत अच्छी।
1: जय
0: हनुमान।
1: शाम को और आज एक गाठ भी काटेंगे लाभ मांगी के, कि हर हर बार हम काटते
0: वो वेजिटेरियन वेजिटेरियन केक होगा।
1: और पूजा में जाएंगे और आपको सुन रहे हैं, इसलिए आपकी आवाज में एकदम शुद्धता है।
0: एता सो स्वीट ऑफ यू। आप लोगों का प्यार
1: जो एमबीसी के जितनी भी काम कर रहे हैं सब की, हम छोटे से हम एनबीसी को सुनते हैं, मामा भी सुनते हैं, पापा भी, मामा के पीछे सुनते हैं।
0: पिछले बार एक श्रोता ने कहा, प्रताप जी जब से मेरा जन्म हुआ है, अभी मैं 20 साल की हूँ, मैं बचपन से लेकर आज तक आपकी आवाज सुनकर बड़ी हुई हूँ। क्या बात है। सो नाना को मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद। ओके,
1: नाना कह रहे हैं आप से बात करने
0: हेलो नाना जी, कैसे हैं? शुभ नमस्कार। क्या बात है, शनिवार का मौसम कैसा है वहाँ पर? जुड़ी लेता हूँ। हाँ कि नहीं, वहाँ मौसम कैसा है वहाँ पर आपके यहाँ? कहाँ
2: ठीक है ना?
0: ठीक है, सब ठीक ठाक। हाँ जी, हाँ, अगला गीत आपके नाम करेंगे। ऑलराइट, और एक दूसरे लाइन पर से मिलेंगे। हेलो हेलो, हाँ
3: हेलो, प्रणाम।
0: आपने पुकारा, हम चिराए। प्रेमिला जी कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक। हम ठीक हैं। और अगला गीत है आधा तेरा दिल आधा मेरा दिल, बोलिए। हाँ
3: बढ़िया है।
0: हाँ किसके लिए?
3: लवर कुश, ये छोटा छोटा छोटा लवर कुश, उसके माता पिता।
0: हाँ, मंडे से बच्चे स्कूल जा रहे हैं वापस।
3: वो लोग एक साल का,
0: हाँ भी छोटे है। ओके ओके।
3: और रामनाथ परिवार।
0: हाँ
3: यस,
0: हाँ
3: हाँ रस, यस रिया और उसके मामा पापा।
0: लव कुश आपके नाती है, लवर कुश आपके नाती है।
3: हाँ
0: ओके,
3: ये भी है, ये रिया और यस।
0: हाँ, अभी आप मोहताबा घूमने नेहू परिवार क्या नहीं आ रही है? आ रही है अभी? नहीं
3: आ रही है, कैसे बोलूं, रविवार को आया था लेकिन नहीं समय मिला।
0: वो कैसी है, ठीक है? थोड़ा सा ठीक है,
3: थोड़ा सा ठीक है वो, और एक बीमार, ये एक भांजा बीमार है तो उसको देखने गए।
0: वो बोल पाती है, चल पाती है या कैसी है अभी?
3: नहीं नहीं, नहीं चल पाती
0: पर
3: नहीं,
0: बोलती नहीं, है देखती है तो
3: नहीं, बोल भी नहीं रहा
0: है। ये तो उम्र का तकाजा है ना। हाँ हाँ हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमें फोन किया प्रेमिला, हैव अ नाइस डे। और एक दूसरे लाइन पे उनसे मिलेंगे। हेलो
4: हेलो
0: हेलो,
4: नमस्ते।
0: नमस्ते जी,
4: आपका नमस्ते। जय हिंद भारत, जय हिंद।
0: हाँ, आज वंदे मातरम है, भारत का स्वतंत्रता दिवस।
4: आपको भी हम गिदलन से केसवंती बोला था।
0: हाँ,
4: हम 10 तारीख से कॉल कर रहा था, आप देखा कई दिन हो गल बा।
0: देखिए मैं सप्ताह, मैंने सप्ताह में काम नहीं किया, मैं वैकेशन में था, अभी मैं आया हूँ।
4: हाँ, हम जाने ना तू आज आवेला, हवे से कर लिया तू उठा ले हम व्हाट्सएप करे नहीं जानी ला,
0: प्रॉब्लम
4: करे नहीं जानी ला,
0: कोई बात नहीं।
4: हमारे बेटी के जन्मदिन रहल, और हमर बेटी के एगो के ओकर शादी के साल, एगो हमर नातिन के शादी के साल है, 10 तारीख से देखा आज हमके एगो कॉल नहीं मिले का, आज तोहर भाग से
0: एगो
4: कॉल मिलल बा हमके, बुझाला लेनो मन के कॉल नहीं मिले
0: ला। नहीं हो काई से बोलतो,
4: नहीं नहीं, हम सगरो के सुनीला, पिता कौर बतियाला, रोशन बतियाला, सब भाई बतियाला, बहन बतियाला, फिर हमर कॉल 10 तारीख से नहीं मिलल। हम बोली तू भेंट होई बा आज तोहरा ही बोला,
0: चला तोहर बेटा तोहर कोले लकाज।
4: अच्छा हाँ, बहुत

0: धन्यवाद तोहरा, बहुत लंबा आयु मिली हमनी
1: के साथ, बहुत आशीर्वाद
0: आपको भी, बहुत हमनी है सब भाई थी नहीं जानी लसन,
1: हम जानी ला, हम जानी ला,
0: आले हां तो है देखा है तीन को गीत दिन जना खातिर एको गीत डाल दिया ओकर जन्मदिन के शादी के साल के,
1: ओके
0: उसको बहुत धन्यवाद से उनके लंबा आयु के हमर लड़का लोग के,
1: हां
0: एको जोली सा गीत डाल दिया तोहरो बहुत तोहर सब केती के बोली आशीर्वाद दे के,
1: बहुत धन्यवाद जी हां। और फिर यही गाना हम चला रहे हनीमून का गाना, ये गीत चलेगा फातिमा न्यूग्रोव से, वेडिंग एनिवर्सरी है जाहिर और शर्मीन चेदी थोड़ेडूस और सब चेदी परिवार को। और आज सुचिता पूर्णिमा कृष्ण मोहन भी हमारा साथ दे रहे हैं, कृष्ण मोहन परिवार के व्यजीपोस से, हेलो जी नमस्ते। यस नेक मैसेज है विदिश का जन्मदिन है, सो बधाई और प्यार मामा दीपा, पापा सचिन, भाई कृष्ण, रियंश, मामू रवीश, कौशल, मामी कृष्णा, नाना प्रकाश, नानी शकुंतला, अनिता, दादी चंपा, सब लीलकंत सुरनाम और परबोतिया परिवार। और यही गीत हम चलाएंगे गीता गजाधर के नाम, बहुत बहुत प्यार के साथ। और जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं रेडियो मॉरिशस पर और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं रेडियो मॉरिशस के टिकटॉक पेज पर, यह गीत आपके नाम छाया लक्ष्मण जी, यह गीत चलाएंगे रिविया जोपा के आपके पूरे परिवार के लिए। आज किसी का जन्मदिन है, आपने नाम नहीं बताया, और हैप्पी बर्थडे टू द पर्सन, निर्मला बंधन, यह गीत आपके नाम। और आज जितने भी लोगों का जन्मदिन है सो हैप्पी बर्थडे दीपक देवीदया, सुप्रभात भाई जी, यह गीत आपके नाम भी जाएगा, हेलो मित्तू नमस्ते, यह गीत आपके नाम भी। अमिका भी हमारा साथ दे रही है, हाय अमिका। तो जितने भी लोग हमें देख रहे हैं टिकटॉक पेज पर और सुन रहे हैं रेडियो मॉरिशस पर, यह गीत आपके नाम फ्रॉम द मूवी हनीमून।

भाई लोगों का काम है कहना, उन्हें कहने दीजिए, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। आप जानते हैं कि आप सही, आप जैसे भी है जो भी है एकदम अच्छे है। सो नो नीड टू चेंज योरसेल्फ टू प्लीज एनीवन, वी कैन नॉट प्लीज एवरीबॉडी, हम सभी को प्लीज तो नहीं कर सकते। आप जैसे भी है अच्छे है, ऑलराइट। सो लोगों को कहने दीजिए, लोग तो कहते रहते हैं और अगर लोगों की बातें सुनेंगे तो जी नहीं पाएंगे। ये आजकल लोगों का फितरत ही ऐसी है। और अगला गाना जी हाँ, बहुत प्यार सके 10 कहानियाँ गीत चला रहे हैं छाया लक्ष्मण जी के नाम, आज उनका जन्मदिन है। सो छाया लक्ष्मण हैप्पी बर्थडे, आपको हमारी ओर से ढेर सारा प्यार आशीर्वाद है और आपकी मामा की ओर से। और मिलन लामा ये गीत आपके नाम, बबीता सोब्रन ये गीत आपके नाम भी, माया रामदोस, दीपक देवी दयाल, दीपक देवी दयाल ये गीत आपकी पोती मिलियाना के जन्मदिन के शुभ अवसर पर। और छाया लक्ष्मण जी ये गीत आपके नाम भी बहुत बहुत प्यार के साथ हम चलाएंगे। और विनेश साहब है, हेलो विनेश कैसे है दोस्त, आप कह रहे हैं कि सुबह से हमें सुन रहे हैं, थैंक यू विनेश हमारा साथ देने के लिए। और कहते हैं कि सैटरडे को हम आते हैं तो आपका रेडियो जो है 6 बजे से ऑन होता है, जब तक हमारी आवाज़ यहाँ पर होती है आप बैठकर हमें सुनते हैं, क्या बात है। उमिला जोधा नमस्ते, ये गीत सब जोधा परिवार के नाम, गुदुरी परिवार मौदालबे से हमारा साथ दे रहे हैं, थैंक यू जी। और सरजू जी है न्यू ग्रोव से, उनके बेटी पत्नी और सब सरजू परिवार के नाम यह गीत जाएगा। और ये गीत हम चाहेंगे जितने भी लोग पार्टी करना पसंद करते हैं, तो सैटरडे है सो बहुत से लोगों घर में पार्टी सब होगी। सो बेशक माया रामदोस आज आपका भी जन्मदिन है, सो हैप्पी बर्थडे। और ये गाना आपके नाम उन सभी लोगों ने जो पार्टी करना पसंद करते हैं। थोड़ा सा नाचे गए, ये फिल्म का नाम है 10 कहानियाँ, अंशल और केके की आवाज़ों में।

दिव्यो सज्जनों, प्यारे प्यारे श्रोताओं, लेडीज एंड जेंटलमैन, गाइज एंड गर्ल्स, दो घूट मुझे भी पिला दे शराबी गीत का टाइटल है। इसी गीत के साथ ही हम आपसे इजाजत चाहेंगे। सुबह के 6 बजे से अभी तक आपने हमारा साथ दिया, टिकटॉक पर आपने हमें देखा, आपके मैसेजेस, आपके फ़ोन कॉल्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बेशक 9 बजे होगा फ्लैश न्यूज़, के बाद आज की चर्चा प्रोग्राम। हमारी आपकी मुलाकात होगी कल रविवार की शाम को 3 से 4 बजे रेडियो मनोरंजन पर, प्रोग्राम होगा ऐसा भी होता है। बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों का साथ देने के लिए सुबह के इस वक्त में। सो, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें सुना, हमें चुना और हमारी आवाज़ को अपने घरों में स्वागत किया। प्रताप सिंह और जी प्रताप सिंह की ओर से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस, नमस्ते, बाय बाय।

0: किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: सुबह के ठीक 9 बजे हैं और समय हुआ है संक्षिप्त समाचारों का। संक्षिप्त समाचारों के साथ स्टूडियो में उपस्थित हो चुके हैं अभी। नमस्कार अभी।
2: नमस्कार किरण, श्रोताओं को भी और दर्शकों

0: दर्शकों को भी नमस्कार और आदाब। संक्षिप्त समाचारों में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। ईंधन के दामों में एक बार फिर बढ़ोतरी हुई है। आधी रात से पेट्रोल की कीमत 64 रुपये या 25 सेंट से बढ़कर 70 रुपये या 65 सेंट प्रति लीटर हो गई है, यानी कि इसमें 6 रुपये या 40 सेंट की वृद्धि हुई है। वही डीजल की कीमत 71 रुपये या 25 सेंट प्रति लीटर पर रही बरकरार है और इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। ये फैसला कल रात शुक्रवार 14 अगस्त हुई पेट्रोलियम प्राइसिंग कमेटी की बैठक के बाद लिया गया है। मुख्य रूप से ईंधन की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में बदलाव और प्राइस स्टेबिलाइजेशन अकाउंट में दर्ज 3.5 बिलियन रुपये के घाटे को ध्यान में रख के ये कदम उठाया गया है। इसी कड़ी में पेट्रोलियम उत्पादों की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित करने के वास्ते स्ट्रेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ एक बिक्री और खरीद समझौते पर हस्ताक्षर करेगा। इस फैसले को कल कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी है। ये समझौता मॉरिशस और भारत की सरकारों के बीच सहयोग के तहत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम ने कल दोपहर को बिजटोंबू में कई कार्यक्रमों का दौरा किया। सबसे पहले उन्होंने फोर्ट अल्बर्ट मिनी सॉकर पिच का उद्घाटन किया, जो 3.5 मिलियन रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है। इसका निर्माण कार्य पिछले मार्च और जून के बीच पूरा किया गया था। इसके बाद प्रधानमंत्री इलाके के नए पुलिस स्टेशन के उद्घाटन समारोह में पहुंचे। अपने भाषण में डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम ने ड्रग्स तस्करी के खिलाफ संघर्ष में सरकार की कटिबद्धता दोहराई। Assumption of the Virgin Mary ईसाइयों खासकर कैथोलिक समुदाय का एक पवित्र और प्रमुख त्यौहार है, जो हर साल 15 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिन माता मरियम के स्वर्गारोहण का जश्न मनाया जाता है। आज 15 अगस्त को भारत अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस पूरे गर्व और उत्साह के साथ मना रहा है। ये ऐतिहासिक अवसर उन अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों के निस्वार्थ बलिदान को नमन करने का दिन है, जिनकी बदौलत आज भारतीय जन आज़ाद हवा में सांस ले रही है। आज भारत वैश्विक मंच पर एक उभरती हुई महाशक्ति के रूप में खड़ा है। अंतरिक्ष अनुसंधान से लेकर डिजिटल तकनीक और आर्थिक विकास तक भारत ने दुनिया भर में अपनी अमित छाप छोड़ी है। और आज की चर्चा कार्यक्रम में आज जिस विषय पर चर्चा होने वाली है, गोपियो मॉरिशस द्वारा आयोजित 16वां गोपियो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2026, जो 11 से 13 सितंबर 2026 को चलेगा। और हमारी सहयोगी किरण जानकी के मेहमान होंगे गोपियों के अध्यक्ष श्री विनय दसोई जी। और विदेश स्तर पर हम देखते हैं कि अमेरिका के मिशिगन में शुक्रवार को एक संदिग्ध ने 5 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। मिशिगन स्टेट पुलिस के अनुसार उत्तरी मिशिगन में 5 लोगों की गोली मारकर हत्या करने वाला संदिग्ध व्यक्ति तलाशी अभियान के बाद मृत पाया गया। इस गोलीबारी की घटना में घायल एक पीड़ित अस्पताल में भर्ती है। तो ये थी अब तक की खबरें, आप लोगों ने ध्यान दिया इसके लिए धन्यवाद। अभी को दीजिए अनुमति, नमस्कार और आदाब।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
2: Radio Mauritius.
3: 819 kHz पर ये है Radio Mauritius.
2: Radio Mauritius.
3: Radio Mauritius.

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस आज की चर्चा।
1: नमस्कार, आज की चर्चा कार्यक्रम में मैं किरण आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं वह है गोपियो मॉरिशस द्वारा आयोजित जो 16वां कन्वेंशन चलने वाला है इस वर्ष सितंबर महीने के 11 से 13 तारीख को। उस पर और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ इस संस्था गोपियो मॉरिशस के अध्यक्ष श्री विनय दसोई जी स्टूडियो में उपस्थित हैं। विनय जी नमस्ते।
2: नमस्कार। नमस्कार।
1: आज इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है और हम चाहते हैं कि गोपियो मॉरिशस जो इंटरनेशनल कन्वेंशन का आयोजन कर रहा है, 16वां कन्वेंशन चल रहा है इस वर्ष, तो आप हमें बताइए कि गोपियो का जो उद्देश्य है किस, मतलब कितने समय से यह स्थापित है और किस उद्देश्य से यह कार्य करता है?
2: ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, नाम ही से पता चलता है कि एक ऐसी संस्था है जो दुनिया में जहाँ जहाँ PIO बसे हैं,
1: पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन,
2: जैसे मॉरिशस में ऐसे कई देश हैं, उन सब को एक मंच पर लाना।
1: जी हाँ।
2: और मंच पर लाकर बातचीत करके कैसे एक दूसरे का सहयोग कर सके और आगे बढ़ सके, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि किस तरह से हम अपना योगदान दें ताकि ये दुनिया जो है और अच्छी जगह बने रहने के लिए, सुख शांति से सब लोग रहे, ये गोपियों का उद्देश्य है।
1: जी।
2: और इसकी शुरुआत तो मैं नहीं बोलूँगा कि अभी फ़िलहाल हुआ है, क्योंकि भारत से बाहर जब गए सब लोग और जहाज़ में साथ में जा रहे थे, कोई यहाँ उतरा कोई वहाँ उतरा,
1: 200 साल
2: हो गए और जहाज़ में दोस्ती हो गई, परिवार जैसा रहने लगे, तो उसके बाद जब बिछड़ रहे होंगे तो सबकी तो यही इच्छा होगी ना, बिछड़ने में हम क्या बोलते हैं, फिर मिलेंगे।
1: ज़रूर।
2: तो ये फिर मिलेंगे का जो सपना है, इतने साल लगा हमें गोपियों के माध्यम से वह मंच फिर से बनाना ताकि हम फिर से मिले, विश्व में जितने लोग हैं फिर से मिले और आपस में भाईचारे को दुनिया में बढ़ाएं।
1: और सबसे सुंदर बात तो ये है कि ये सभी लोग जो बिछड़े, जहाँ से

0: पहली जगह से जहाँ पे बिछड़े वो भारत माता, भारत भूमि थी। और आज 15 अगस्त है, आज भारत की स्वतंत्रता दिवस है, और इसी दिन पर आज हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। मुझे लगता है इस दिन के साथ हम आज पूरा न्याय कर रहे हैं, जहां हम इस विषय पर बात कर रहे हैं कि किस तरह से भारत से निकलकर जो शर्तबंद मजदूरी के हैसियत से लोग अलग अलग देशों में गए, मॉरिशस वो पहला देश था जहाँ पर टेस्ट केस किया गया इस सिस्टम का, इस इंडेंचर सिस्टम का, शर्तबंद प्रणाली का। और मॉरिशस से ही ये जो बाकी देशों में गए, मॉरिशस से ही गुजर कर गए। जब कहते हैं कि 500,000 लोग मॉरिशस में उतरे थे शर्तबंद मजदूर के हैसियत से, तो वो सभी लोग यहाँ पर बसे नहीं थे, इनमें से बहुत लोग यहाँ पर स्टॉप ओवर की हैसियत से उतरे, फिर यहाँ से वो लोग कैरिबियन में गए, सूरीनाम गए, अलग अलग देशों में गए। और ऐसी एक संस्था है जो आज 16वीं कन्वेंशन की तैयारी कर रही है, गोपियों। और 16वीं कन्वेंशन का अर्थ है 15 कन्वेंशन इस तरह से हो चुके हैं, तो क्या आप इस दिन पूरे 15 कन्वेंशन में उपस्थित रहे हैं?
1: हाँ, 15 कन्वेंशन हुआ है पूरे देश में। सबसे पहले किरण जी, हम गोपियों मॉरिशस की ओर से भारत को नमन करते हैं
0: अवश्य
1: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। सबको हमारी बधाई और शुभकामनाएं।
0: धन्यवाद।
1: हम शुरू से जुड़े हैं इसमें। जब ये गोपियों मूवमेंट शुरू हुआ
0: जी हाँ।
1: और मॉरिशस में, विशेषकर मॉरिशस में हमारे स्वर्गीय भाई धनदेव बहादुर के नेतृत्व में ये सब शुरू हुआ था, तो हम साथ में थे, फाउंडर मेंबर हम भी हैं साथ में, लेकिन उनके साथ हम धीरे धीरे इतना बड़ा बन गया कि अब केवल मॉरिशस नहीं, मॉरिशस के एक जगह से शुरू हुआ था, फिर मॉरिशस में पूरा हुआ, फिर उसके बाद हम
0: अंतर्राष्ट्रीय
1: बियॉन्ड बॉर्डर्स जिसको बोलते
0: जी
1: हैं,
0: हाँ, सरहद पार,
1: सरहद पार हम वहाँ गए। और आज एक मंथ जो हमारा सपना था बनाना वो है, और बहुत कम से कम अभी फिलहाल जो एक्टिव मेंबर है देश, 25 से 30 देश हमारे साथ है उस
0: अच्छा।
1: प्लेटफॉर्म में हम काम कर रहे हैं साथ में। और अब तक हमने कन्वेंशन, इंटरनेशनल कन्वेंशन का मकसद ये था, हर 2 साल में एक बार करते हैं, सभी को मिलाना एक जगह पर।
0: मतलब जब आप कह रहे हैं कि हर 2 साल में एक कन्वेंशन हाँ। होता है, तो अगर अभी 16वां कन्वेंशन चल रहा है तो 30 साल से ज़्यादा समय हो चुका है इसके गठन को, और आप 30 साल से इससे जुड़े हुए हैं, और ये कैसा रहा ये सफ़र, 30 साल का ये सफ़र?
1: सफ़र अगर कहें, यात्रा मान लीजिए, वो मैं नहीं करता तो सफ़र मेरा तो चलता, लेकिन उसके साथ जुड़ कर काम करने में
0: जी।
1: वो जो जीने का अंदाज़ हमारा बदला, काम करने का अंदाज़ बदला, लगा कि अरे एक जगह से निकले हैं, अब हमारे लिए पूरी दुनिया हमारा घर हो गया है। तो ये जो जिन्होंने ये सपना दिखाया था या कहा था कि वसुधैव कुटुंबकम,
0: जी हाँ, मैं वही कहने जा रही
1: हूँ, उन्होंने बहुत सोच समझ कर किया था, और आज धीरे धीरे हर क्षेत्र में देखेंगे वसुधैव कुटुंबकम का जो सपना है वो साकार होता दिख रहा
0: जी
1: है।
0: हाँ।
1: तो वो देखने का नजरिया बदलना चाहिए
0: जरूर। और हर जैसा कि आपने कहा, हर एक क्षेत्र में, हर एक एंगल से देखेंगे तो यह एक वास्तविकता है। एक तो गोपियों जिस मकसद से काम कर रहा है, सभी डायस्पोरा देश को इकट्ठा करने में, और आपने कहा लगभग 25 देश हैं, 25 देशों का इस संगठन में होना, मतलब कि पूरे विश्व से लोगों का अलग अलग कोने से जो देश हैं वो इसमें शामिल हैं। और फिर आजकल तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप विश्व के एक कोने से दूसरे कोने तक लोगों तक संपर्क रख सकते हैं, बातचीत जो यहाँ पर घट रही है आपको ही नहीं पता लेकिन दूसरे देशों को पता चल जाता है। आज ऐसी दुनिया में हम जीते हैं जहाँ पर हमको दूसरे देशों में फ़ोन करके लोगों को बताना पड़ रहा है कि आप कैसे हैं, क्योंकि अभी कुछ हुआ है और उनको पता भी नहीं। तो ऐसे देश में इस ऐसे उद्देश्य के साथ चलना जहाँ पर इस विश्व को एक बेहतर जगह बना सके, आपसी मेल मिलाप कर सके, जो बिछड़े हुए हैं उनके साथ मिल सके, और हमारा जो इतिहास है जिसको हम शेयर्ड हिस्ट्री कहते हैं, हमारा जो विरासत है जिसको शेयर्ड हेरिटेज हम कहते हैं, उसको एक ही मंच पर लाकर उस पर बातचीत करना, विचारों का आदान प्रदान करना, और फिर एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे के देश की जो प्रथा है, जो इतिहास है, जो संस्कृति है,

0: उसके बारे में जानना, उस पर शोध करना, इससे बड़ी बात आज की दुनिया में क्या हो सकती है, जबकि हम एक ऐसे दुनिया में जी रहे हैं जहाँ बहुत तेज़ी से हम टेक्नोलॉजी के साथ साथ विज्ञान और फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर बढ़ रहे हैं, सब कुछ कृत्रिम होता जा रहा है। वहाँ संबंधों का जुड़ना, इतिहास और विरासत पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो आप हमें ये बताइए कि अभी जो कॉन्फ्रेंस, जो कन्वेंशन होने वाला है, उस पर हमें थोड़ा जानकारी देते हुए हमें ये बताइए कि इससे पहले जो कन्वेंशन हुए हैं वो कैसे रहे हैं, उनके जो रिजोल्यूशंस रहे हैं वो कैसे रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हैं लगता है कि ये काफ़ी सफल हुआ है।
1: बहुत सफलतापूर्वक जो पिछले कन्वेंशन किए हैं हुआ है। कई कन्वेंशन में निर्णय लिए जाते हैं और सुझाव दिए जाते हैं, निर्णय की जगह सुझाव दिए जाते हैं कि आगे का क्या होगा। और उसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है कि हमने अब तक जो किया है, जो सोच कर किया था, कहाँ तक सफल हुए हैं, एक मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन को आधार बनाकर आगे की योजना बनाते हैं। तो मेरे हिसाब से बहुत सफल हुआ, क्योंकि धीरे धीरे, शुरू में 25 देश नहीं था, धीरे धीरे देश जुड़ते गए। अभी जो सबसे नया देश हमारे साथ जुड़ा है, नया गोपियों चैप्टर खुला है, वो म्यांमार देश है। अच्छा। जो कभी सोच नहीं सकते कि म्यांमार में गोपियों का चैप्टर होगा।
0: म्यांमार जो किसी ज़माने में बर्मा नाम से जाना जाता था,
1: तो म्यांमार में नया खुला है। और बहुत जल्द इसको मैं ही इस पर काम कर रहा हूँ, सेशेल में हमारा नया गोपियों चैप्टर खुलने वाला है। तो इस तरह से देखिए कि पूरी दुनिया में, अफ्रीका हो, एशिया हो, चारों तरफ हम वहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं और पहुँच रहे हैं, जहाँ भारतीय मूल के लोग बसे हैं। दो प्रकार के लोग गए थे, एक तो इंडेंचर लेबर के रूप में और कुछ बिजनेस के रूप में वहाँ बसने गए थे, लेकिन सब पीआईओ है। तो वो सब लोग धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। शुरू में तो हम अगर मोइसेस को ध्यान में रख कर सोचेंगे तो इन नेचर लेबर के बारे में सोचेंगे।
0: जी हाँ।
1: अब ये हम इन नेचर लेबर से ऊपर उड़ गए हैं।
0: जी हाँ।
1: जितने लोग भारत के बाहर रह रहे हैं और भारतीय मूल के लोग हैं, वो सब जुड़ते जा रहे हैं। और इससे हमें भी, गोपियों इंटरनेशनल को भी और गोपियों को भी, हर देश में वो एक तरह से ऊर्जा प्राप्त होता है कि आगे और क्या करना है। और इसमें जैसे हम 1989 में शुरू हुआ था गोपियों मूवमेंट, पहला कन्वेंशन हुआ था वो उस समय, और अभी के समय में इतने साल बीत गए हैं, तब कोई और था साथ में, हम साथ में थे, कोई और अगुवाई कर रहा था। धीरे धीरे आज मैं हूँ और आगे जो नई पीढ़ी है उनको लाना है, ये हमारा उद्देश्य है। और धीरे धीरे हम इसमें सफल होते जा रहे हैं, नए लोग जुड़ते जा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं।
0: जी, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, मुझे यूनेस्को का एक लोगो याद आ रहा है, कहते हैं कि अगर आपको जल्दी जाना हो तो आप अकेले चलिए, लेकिन अगर आपको दूर जाना हो तो साथ चलिए। और गोपियों इसी मार्ग पर चल रहा है, लोगों को आत्मसात एकत्र करके एक साथ दूर जा रहा है। काफ़ी लंबा सफ़र इसका रहा है और यह और भी आगे बढ़ रहा है, और देशों को साथ लेकर। इस विषय पर हम चर्चा अभी जारी रखेंगे, फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।

0: आज की चर्चा।
1: आज की चर्चा कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। और जैसा कि आप सुन रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आज का हमारा जो विषय है वह है गोपियों का जो 16वां सम्मेलन चलने वाला है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन मॉरिशस में। उस विषय पर हम बात कर रहे हैं जिस पर चर्चा करने के लिए गोपियों के अध्यक्ष, उसके प्रेसिडेंट खुद श्री विनय दसोई जी आज सुबह सुबह स्टूडियो में उपस्थित हैं। एक बार फिर आपका स्वागत है विनय दसोई जी। और गोपियों का अर्थ है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन। और आज भारत की स्वतंत्रता दिवस है। भारत के स्वतंत्रता दिवस के साथ साथ आज हमने वर्जिन मैरी असम्पशन भी मनावा था जा। और इस दृष्टि से मॉरिशस में एक बहुत सुंदर माहौल आज छैले बा, जहाँ पर मेल मिलाप के दिन है, खुशी मनावे के दिन है। अपन जड़ी तक जो सफ़र हमने के तय होल बा, जड़ी से लेके आज तक, कहे कि भारत के स्वतंत्रता हमने के पूर्वज के मातृभूमि के एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक घटना है। और हमने के भी एकर से संबंध है। आज भी हमने जब पढ़ाई करत है जा, जब हिंदी में आप उच्च शिक्षा करत है जा, तो हमने के भारत के जो इतिहास बा पूरा एकर पर जानकारी मिलेगा। साथ में कितने ऐसा हमें मूवी भी देखते है जाए, हमेशा से मदर इंडिया से लेके अभी तक बहुत ऐसा राष्ट्रीयवादी मूवी चलेगा, ऐतिहासिक मूवी चलेगा। और

0: ई सब मूवी ई सब फिल्म में हमने के अपन जो न जड़ी बा भारत माता के ओकर इतिहास पर जानकारी मिलने आवेला। और आज हमें जो विषय पर बात करते हैं जा गोपियो इंटरनेशनल थोड़ा एक अपना भोजपुरी पर बोली राजा कहे कि मॉरिशस में हमने के भारत से जितना कोई मॉरिशस आइलैंड जाता शुरू से लेके अभी तक हमने के जो चलती फिरती भाषा है वो भोजपुरी ही है। तो ई जो सम्मेलन चलता विनय जी ई सम्मेलन 11 से 13 सितंबर तक चली
1: 11 से 13 सितंबर
0: एकर पर हमें की थोड़ा जानकारी दा तैयारी कैसे हुआ था कैसे चली कौन कौन विषय रही कौन कौन मतलब गतिविधि के प्रावधान बा कौन कौन देश एकर में शामिल हुआ था थोड़ा हमने के बताओ।
1: 11 से 13 सितंबर के हुआ था और हमने चुनने है जा हमने के जगह स्थान जहाँ पर हो वो है ह्यूमन सर्विसेस सांस्कृतिक केंद्र जो कालबास में स्थित बा और ये कन्वेंशन के हमने के विषय दल ले जा इस बार हर बार एक विषय
0: रहे। हाँ
1: अभी जैसे बात करते रह जा कनेक्टेड पहला हमने के विषय है कनेक्टेड बियॉन्ड बॉर्डर्स सरहद के बाहर कैसे हम मिले
0: संपर्क।
1: दूसर बा शेयर्ड कॉमन कल्चर जबकि है
0: जी।
1: और अंतिम ओकर में जो विषय रख ले जाए कि स्ट्रेंथन ग्लोबल नेटवर्क यानी सुदृढ़ बनाए के हमने के विश्वव्यापी नेटवर्क चुनबा
0: जी।
1: विश्वव्यापी नेटवर्क के मतलब जितने लोग पीआईओ बाहर वन से सबके साथ और एगो बहुत अच्छी तरह से संयोजित ढंग से काम करके आगे बढ़ेगी और ये एकर चार गो भाग में सेशन करा था जा।
0: अच्छा।
1: एगो अकादेमिक
0: हाँ।
1: अकादेमिक अभी जैसे तू बात कहता है इतिहास
0: जी
1: जाला वो पेड़ के जड़ नहीं रही तो वो तो पेड़ ही नहीं रहे
0: हाँ।
1: थोड़ा सा हल्का सा झोंका आए तो गिर जाए तो हर आदमी के इतिहास ओकर जड़ है और नींव है। और दूसर हमने के विषय बा सोशियो कल्चरल। सोशियो कल्चरल के मतलब वर्तमान में हमने अभी कैसे जी ला जाए कैसे हमने के रीति रिवाज बा ओके कैसे हमने आगे बढ़ाते जाए नया जनरेशन के का दुआते जाए है। फिर एगो यूथ कॉन्फ्रेंस बा नया जनरेशन कहते हैं यूथ कॉन्फ्रेंस कहते जाए अभी ओकर विषय पर हम बात करें। और ये सब चीज़ मैं आगे बढ़े के थोड़ा सा आर्थिक स्थिति भी हमें सुधरे के चाहिए
0: जरूर और महंगाई के समय बाद टिकट भी बढ़ाता
1: हाँ,
0: सब कुछ
1: बड़ा अच्छा वो चीज़ सुनाते है कि एगो कलाकार कितनों बड़ा कलाकार रही जब पेट में भूख के राग दौड़ा था तो वो गाना गा ही नहीं सके
0: जरूर।
1: तो इस तरह से अगर सुदृढ़ बनना है बनाना है संस्था को तो आर्थिक स्थिति भी सुधारनी चाहिए तो उसमें बिजनेस कॉन्फ्रेंस।
0: अच्छा
1: चार पहले जो तीन गो कॉन्फ्रेंस हुई सेशन हुई वो ह्यूमन सर्विसेज के सांस्कृतिक केंद्र में हुई और बिजनेस कॉन्फ्रेंस लेगुले के ओशियन क्रिक होटल में हुई।
0: ओके।
1: और है सब विषयों में कई गो टॉपिक दिले जाए के
0: विस्तार से प्रोग्राम
1: एगो भाग है रिसर्च वर्क जो ओके सामने आई के जो उनके इतिहास बुढ़ जाए इतिहास में भी आज तक कई ऐसी चीज़ें हैं जैसे अभी अनभिज्ञ जैसा उतना पता नहीं बा क्योंकि हम साधारण लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाते
0: जी हाँ।
1: तो क्या होता है कि रिसर्चर जो होते हैं वो लोग पूरा उसी में ध्यान देकर प्रूव के साथ
0: साइंटिफिक बातें हैं वो सामने रखा
1: था यथार्थ को सामने रखते हैं तो उस पर अकादमिक पर कई टॉपिक रख ले जाए। फिर सोशियो कल्चरल पर जो अभी के हमने के आसपास के वर्तमान की चीज़ें बा ओकर पर बात करके क्या होता स्थानीय जो
0: चीज़ और ओकर कौन स्थान बा
1: कौन स्थान और आगे कैसे बढ़ी
0: जरूर समाज और संस्कृति के बिना हमने के जीवन निरस बा।
1: हाँ तो उन मतलब समाज हमने के समाज के अभी वर्तमान समाज के बारे में बात कर रहे हैं ई ओकर और हमने के युवा पीढ़ी के आगे कैसे ओकर में जोड़ जाए हाई नेटवर्क और बिजनेस की बात करिए ई और एक खातिन हमने के कम से कम 20 गो टॉपिक पर बातचीत हुई।
0: ओके।
1: 5 गो सेशन में विभाजित
0: कई बजे से कई बजे ले चली फजीर के
1: फजीर

0: के अच्छा प्रोग्राम इस तरह से इसका औपचारिक उद्घाटन ऑफिशियल ओपनिंग सेरेमनी 11 सितंबर शुक्रवार 11 सितंबर के 3:30 बजे सांस्कृतिक केंद्र ह्यूमन सर्विस ट्रस्ट के कालवास में हो, जहाँ पूरा ऑफिशियल कर इनोग्रेशन हो। और फिर फॉलोड बाय वो प्रथा है वो गला डिनर सबके साथ
1: जी
0: सब मेहमान के साथ होगा। और बाद नेक्स्ट डे 12 को पूरा दिन सेशन चली, जैसे बतेलिए गो ओशियन क्रिक में और बाकी सांस्कृतिक केंद्र ह्यूमन सर्विस ट्रस्ट कालबास में
1: जी हाँ।
0: और ओकर में 3 गो भाग भाई वो तो अकेडमिक सोशियो कल्चरल और यूथ कॉन्फ्रेंस पकालेल हुई
1: जी।
0: अलग अलग हुई और ओकर में हमने ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा शब्द ऐसा विषय दल रह जा जो आदमी के जानकारी के लिए अच्छा रहे और जानकारी के साथ साथ हमने के प्रेरणा दे आगे बढ़े के और हमने के स्कॉलर लोग आके हमने के हाउ विषय के जरिए हमने के मार्गदर्शन करिए अंदर पूरा। ओकर में मॉरिशन यहाँ के हमने के स्थानीय रिसर्चर लोग हों जा स्कॉलर हों जा रिसोर्स पर्सन रह जा और हमने के बाहर के गोप्य चैप्टर के भी कई लोग आके अपन अपन पापीय जुनवा प्रस्तुत करिए जा प्रजाते करिए जा। और विषय कई विषय बजे से कि आज के युग में नई टेक्नोलॉजी के युग में हम कल्चर के कहाँ स्थान बा
1: जी
0: और कैसे जो नया चैलेंज आता है आधुनिकीकरण के उसके ओके फास्ट कैसे करब सर
1: जरूर
0: ताकि वो भी रही ये भी रही साथ चली गए तो है कई ऐसे विषय रख ले
1: और ये बहुत एगो दिलचस्प विषय बा काहे कि जब कोविड आ रहा जब सब जो सरहद बंद हो गए जब घर से निकले के मना ही रहा सामाजिक जुटाव नहीं रहा मरनी रही शादी रही पूजा रही परब रही आपके मेल मिलाप की जरूरत नहीं सकबा करे मेल मिलाप सब म्यूजियम सब जो कल्चरल और हेरिटेज साइट बा बंद हो गल बा ऐसन में कितने उपाय ढूंढल गए कहे कि हमने एगो सामाजिक प्राणी है ऐसा नहीं सकबा घर के 4 दीवारी में बंद रही बीमार हो जाएबा तो ऐसन में अब ऑनलाइन कैसे सकबा ऑनलाइन विजिटें करे कल्चरल प्लेसेस कल्चरल साइट्स कैसे सकबा संस्कृति और समाज से जुड़े ऑनलाइन ऐसा ऐसा बात के प्रावधान रहल तो हमने एगो ऐसा दुनिया में जियत है जा जहाँ पर कबो भी ऐसा स्थिति सखी पैदा हो जाए और हमने के चाहे तैयार रह के तो ऐसा ऐसा विषय लेके जब आई बजा तो यही सब बातचीत ओकर पर चर्चा चली।
0: हाँ, जैसे कोविड में गोप्य मॉरिशस कौन सी कर रही है हमने के कोविड
1: कुछ कर ले रहा ना जा
0: हाँ घर में बैठा रह लीजा
1: जी हाँ
0: लेकिन हम प्रधान होने के नाते सब सदस्य के फोन पर बात कर ली बोली कि एगो चीज देखा जा तो लोग आश्चर्य कर जा कि तोहर आसपास के घर में कोई ऐसा व्यक्ति बा जो कोई वृद्ध महिला या पुरुष अकेले घर में रहला देखा ओके कैसे सकबा ए दे करे क्योंकि ओकर खातिर बाहर निकल के कुछ खाई पिए के सामान जाकर खरीद के आए के बड़ा मुश्किल रहा। तो हमनी के लोकल हर चीज हमनी सकब्जा करे हालांकि उस समय मालान रहल बाहर जाके तो ये जो टेक्नोलॉजी रहल मैसेज व्हाट्सएप हाँ सब बड़ा काम कर खातिर हम बोले चाहते कि यही हाउ स्थिति में हमनी उस समय के एगो रास्ता ढूंढ लीजिए हाई रास्ता रहा और हाउ से मैसेज गल और कई जगह पर हमके मैसेज देना ही ठीक बा ऐजा ऐसे रल है कर लीजा है कर लीजा तो ये टेक्नोलॉजी है इसको कैसे हम पॉजिटिव वे में
1: जरूर
0: एकर
1: इस्तेमाल
0: प्रयोग करब जा तो निसंदेह सबके भला होई
1: जी हाँ जी। और आप बात करत रहा विषय की जो यूथ कॉन्फ्रेंस में चली
0: अच्छा यूथ कॉन्फ्रेंस के बड़ा सोच समझ के विषय दलेजा कि पहला तो मतलब ऐसा नहीं हो कि वन वे कॉन्फ्रेंस है एक दिन आए पेपर पढ़ के चल जाए ओकर में ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप डिस्कशन के जो विषय दल रह जाए ताकि अभी के यूथ जो युवा पीढ़ी बा ओके सोचे के मजबूर करे के तो ओकर पहला बाकी नो योर रूट्स पहला अपना जड़ जाना
1: कहाँ
0: दूसरा बा प्राउड टू बी पीआईयू
1: प्राउड टू बी पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन।

0: इंडियन ओरिजिन, फिर प्रिजर्वेशन ऑफ आवर आइडेंटिटी। एक तो रूट्स जान गए, फिर गर्व बाबा कि हाँ हम प्यायो है, हम जो चीज है ओके पर गर्व, फिर उसके बाद ओके बचाओ जा कैसे आगे बढ़ाव जा कैसे, और अंत में डिटर्मिनेशन जो होता है हमने के कुछ करे के, और ओकर जो हमने के रूट्स से जो हमने के कल्चर जो चीज़ मिलल बा ओके हमने में कौन चीज़ बा जो क्लिक करा था कि है कि आगे बढ़ाए के चाहिए बैठे के नहीं, एगो डिटर्मिनेशन हाँ है करे के चाहिए। तो है एगो विषय में वो लोग अपन बात करिए देखा, एगो चीज़ बा हमने सोचा यूस बहुत यूस बहुत अच्छा जाने ला, बहुत थोड़ा कम नहीं जाना, लेकिन साथ में जब हो तो सब कोई एक दूसरे जाए, ये सुबह के पूरा डिस्कशन है पर हुई
1: okay.
0: और दिस एम आफ्टरनून में दल है जा कि जरोल ऑफ जरोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ यूज इन द कंसोलिडेशन ऑफ पीआईओ मूवमेंट। अब थोड़ा सा पीआईओ पर चले जाए कि पूरा जो हमने काम कर जाओ कि और कैसे संगे आई के कंसोलिडे करेंगे यूज के कौन रोल बा कौन लैपोतांस बा, फिर यूज खातिन माई विजन एंड कॉन्ट्रीब्यूशन टू यूनाइट पीआईओ फैमिली एंड मूव फॉरवर्ड एट रीजनल नेशनल इंटरनेशनल लेवल। तो यूज के उस स्तर खातिन वहाँ के खातिन हमने तैयार करते जाए कि तोहर रोल तोहर विजन ओकर से सुने चाहते जाए।
1: और यूथ में कौन उम्र के युवा लोग हवन जा?
0: अच्छा ये तो बड़ा उम्र देखो हमने 30 से नीचे के यूथ गेल थे, यूथ में तो बोला जाना ना कि जज्बा बात है वो हमेशा जवान हुआ, उम्र की कोई बात नहीं कैलकुलेशन अंधित्वा नहीं है,
1: लेकिन चाहे हम के उम्र के ख्याल रहे के
0: उम्र के ख्याल बा 30 तक
1: जरूर
0: 30 के नीचे यू सा, और हमने 18 नहीं 16 रख दे लीजिए क्योंकि हम चाहते थे जो SC HSC के लड़का
1: वो
0: भी शामिल हो थोड़ा समझन से अभी ऐसे क्या हो। और एक में आर एगो चीज़ जो सबसे रेजोल्यूशन में कौन चीज़ दल ले जा, रेजोल्यूशन में दल ले जा कि हम माई फर्स्ट 10 स्टेप जो रेजोल्यूशन जो चल है और में हमने हमार पहला 10 कदम का हुई जितना चीज अभी डिस्कशन कर लिया जा बोल लिया जा अच्छा लगल बोलेगी ओकर कार्य रूप के हमार 10 कदम का वो लोग सजेस्ट करी, तो एकर में कई गुच्छी कई गुच्छी सामने आई जो हमनियों के हिसाब से हमने के अंदोर रहल हमने के दिमाग से, तो उस सब के हमने प्लानिफिया करके आगे यूज के बढ़ा के हमने के सबसे बड़ा मोटिव है युवा पीढ़ी के आय के, क्योंकि आज भी नहीं दसवीं बार काल चाहे दूसर कोई के रहे
1: जरूर, और युवा पीढ़ी के कंधा पर ही चाहे जिम्मेदारी छोड़े के कहे कि उलोगी ता भविष्य हवन जा बागडोर उलोगी ले जाइन जा, और अभी जे ई सब जोन चर्चा बा परिचर्चा बा ई जोन बात बा और फिर जिम्मेदारी बा उ लोग पर नहीं सौंपा उ लोग के ट्रेन नहीं करवा प्रशिक्षित नहीं करवा आगे मंच पर नहीं ले जाइबा तो कठिन हुई
0: कठिन बहुत कठिन,
1: चाहे अब उ लोग के गलेफ देवे के चाहे उ लोग के हाथ में ये मशाल सौंपे के, और ये बहुत सराहनीय कार्य बा कि युवा पीढ़ी पर आप लोग बहुत ध्यान देवत हो जा। हमारे देखे में युवा पीढ़ी के साथ साथ आपके ये बात के भी ख्याल रख ले हुई बा कि चाहे एक में छोकरी लोग के औरत लोग के भी बराबर
0: शामिल सब
1: जी हाँ,
0: मतलब युवा के मतलब
1: दोनों जना
0: युवा का युवती दोनों
1: जी। और ई बरी अथवा इंटरनेशनल जब कन्वेंशन चल रहा था तो मॉरिशस में पहला चल रहा था, बाकी देश में भी चल रहा बा, और का मॉरिशस में पहला इंटरनेशनल चल रहा था?
0: अच्छा मॉरिशस में है चौथा अधिवेशन है इंटरनेशनल, मतलब 15 हो गल बा, 15 में हमने 3 मॉरिशस में कर दिले जा
1: ओके,
0: और मलेशिया के जो गोप्य चैप्टर है वो 3 कर लेवा, बाकी नेपाल सिंगापुर श्रीलंका कई ऐसे देश बा जन 15 गो ले आ ले जा। अब मॉरिशस एक कदम आगे हो गए 4 हो गए हमने के चौथा अधिवेशन होता
1: है, बहुत बहुत बधाई।
0: अरे धन्यवाद, क्योंकि हम जिस तरह से मॉरिशस है पीआईओ के दुनिया

0: दुनिया में मॉरिशस के जो ना स्थान है वो हमने के मजबूर कहला कदम आगे बढ़ाई
1: जरूर। और मतलब कौन कौन देश से है यहाँ पर अभी आवत है वंजा?
0: अच्छा,
1: कितना देश से आवत है वंजा?
0: हमने के सभी देश के अभी तक रह गल बा, लेकिन अभी थोड़ा सा अभी लगभग एक महीना बाद,
1: हाँ अभी तो समय बा कन्फर्मेशन खातिर,
0: कन्फर्मेशन खातिर
1: जी हाँ।
0: लेकिन जितने भी देश है हमने के इंटरनेशनल मीटिंग हो रहा हमेशा ऑनलाइन, तो वो मैं हमेशा हमके बोलते रह जा कि विनय जी कब मॉरिशस में करवा जाए, हमने मॉरिशस आई चाहते जा, मतलब एक वो इच्छा बा मॉरिशस है,
1: तो
0: हमके बहुत आशा बा कि सब देश से लोग आए और कई गो देश से कन्फर्मेशन हो गए बा, कई देश से ज़्यादा लोग भी आ रहा है
1: जी हाँ।
0: लेकिन हम नहीं चाहते से कि हर देश से कोई ना कोई आवे,
1: जरूर आए।
0: और इस बार थोड़ा अफ्रीका में भी ध्यान देते जा, और हमने के है अधिवेशन के बाद हमने के रेजोल्यूशन में ये रही कि थोड़ा सा अफ्रीका के देश में मूव करके थोड़ा वहाँ बढ़ाइए, तो सिंगापुर, श्रीलंका, इंडिया, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, साउथ अफ्रीका।
1: तो जब ये सब देश से लोग अयंजा, प्रतिनिधि लोग अयंजा, तो विषय कौन, मतलब कि कौन भाषा में ये कॉन्फ्रेंस रही?
0: अच्छा, अंग्रेजी में रही,
1: अंग्रेजी में, कहे कि सब देश से आवत हवन जा, ढेर देश में हिंदी नहीं बोले अयंजा,
0: नहीं समझा, जैसे मलेशिया के लोग है वो लोग इंग्लिश और तमिल
1: जी,
0: और कहीं पर दूसर भाषा
1: जी हाँ।
0: तो ताकि सब कोई समझे
1: जरूर
0: इंग्लिश में हुई
1: जरूर। तो अभी जैसे सुनत हवा हमने बात कर रहे थे जा गोपियों के जो 16वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन लगे होला बा मॉरिशस में आवत 11 से 13 सितंबर तक, और इस विषय पर हमने संगे बात कर रहे थे वन गोपियों के प्रेसिडेंट उनकर अध्यक्ष श्री विनय दसोई जी, और अभी ई प्रोग्राम के अंतिम चरण पर पहुँचब जा, लेकिन एकर से आगे ले जा एगो छोटा सा विराम।

0: आज की चर्चा में जोन विषय पर हमने बात करते थे जा वह गोपियों द्वारा आयोजित जोन सम्मेलन चले हो लबा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन मॉरिशस में और यही लगले देखे थे जा कि गोपियों के कौन उद्देश्य है, कौन दिशा में वो काम करेला, कब से स्थापित बा, कैसे ओकर कार्य चलेला। और हमने संगे हवन गोपियों के प्रधान श्री विनय दसोई जी। विनय दसोई जी, हमने के ई कॉन्फ्रेंस के जोन ओकर विषय बा, साथ में एक संगे कौन गतिविधि चली, और जैसे बोलला कि पूरा जन कॉन्फ्रेंस बा ओकर अंतिम दिन के सिवाय सब चले होला बा कालबास के ह्यूमन सर्विस ट्रस्ट सांस्कृतिक केंद्र में। तो थोड़ा हमने के एकर बारे में और जानकारी दा जेकर से सकब्जा समाप्ति के ओर बढ़े प्रोग्राम के।
1: हमने के कॉन्फ्रेंस के जो टॉपिक बात करब जा ओका में हम तीन चार गो के खाली बोली रहा, 20 गो टॉपिक चुन रहे जा बात करे के, 20 गो स्कॉलर ओकर पर बात करी। जैसे हमने यूज के बात कर लीजा ओकर में एगो टॉपिक दल ले जा बड़ा कॉन्फ्रेंस है यू के कॉन्फ्रेंस के अलावा जो हमने के कॉन्फ्रेंस हुई यूज लीडरशिप एंड द फ्यूचर ऑफ कल्चरल हेरिटेज। हमारे हिसाब से ये बहुत अच्छा विषय बा, एक काफ़ी बात हुई। और दूसरा बा डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड कल्चरल ट्रांसमिशन है पर, क्योंकि ये नया चैलेंज जो हमने के सामने आता हुआ है।
0: जी हाँ।
1: फिर बा द प्रमोशन ऑफ आवर हेरिटेज थ्रू कल्चरल टूरिज्म है पर थोड़ा नया काम के साथ, विशेषकर गोपियों मॉरिशस और गोपियों इंटरनेशनल इस पर ध्यान देवे थे जब बहुत कल्चरल टूरिज्म पर। फिर द रोल ऑफ गोपियों इन द इराडिकेशन ऑफ अलार्मिंग इंक्रीज ऑफ सोशल इविल्स इन आवर सोसाइटी, ये अभी के जबरदस्त मुद्दा हुआ। तो हमने चाहते थे कि गोपियों भी इस पर काम करी, इंटरनेशनल गोपियों भी इस पर करें। और हमने के हमेशा धन्यवाद बोले खातिन एगो विषय जो हमके बड़ा प्रिय लगल बा हम रख रहे एक में, वो है कि द ब्लेसिंग एंड गाइडेंस ऑफ भारत फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ पीआईओ डायस्पोरा, एक पर हम चाहते कोई बात करिए करिए, क्योंकि हमने के रिकॉग्नाइज करे के चाहे जहाँ से जो भी सहयोग मिलेगा, जो भी सपोर्ट मिलेगा, और जाने के चाहिए कौन कौन में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कर लोग लाभ उठाए। और आज जो हमके को टॉपिक बड़ा अच्छा लगा था, वर्ल्ड फ्यूचर चैलेंजेस एंड द इंडियन डायस्पोरा, ये तो अपने आप में सब कुछ बोल दो था। ऐसे 20 गो टॉपिक बा जो तो देखे चार गो पाँच गो सेशन में हो, लेकिन ओकर ले सबसे महत्वपूर्ण सेशन जो गोपियों मॉरिशस खातिन है और जो हमके बड़ा प्रिय है, वह है कॉन्फ्रेंस हम दे जिए कहते सर

0: गोपियों के फाउंडर लेट श्री धनदेव बहादुर जी के
1: जी।
0: एक तरह से गोपी मॉरिशस आज रिकॉग्नाइज कर रहा था, माना था कि धनदेव जी के कार्य और धनदेव जी के विजन ओकर देतेमिनाशों और ओकर अक्षों बहुत बड़ा चीज़ रहल, केवल मॉरिशस खातिर नहीं पूरी दुनिया खातिर। तो वो है सेशन हुआ, स्पेशल सेशन होता उस रविवार को 1 बजे से शुरू हुई, 2 घंटा के वो सेशन रही, मैं कई जन आके पर बतिया जा और हमने एक में साथ साथ गोपियों मॉरिशस कुछ लोगों को अवार्ड की तरह
1: सम्मानित,
0: हाँ उनके मतलब माने के कि हाँ काम कर ले जाए, जो न अभी भी कहीं पर कोना उना में हो जाए तो उन लोग के सबके तो नहीं सकता। मैं इस साल हमने कुछ लोगों के जवाब जा अवार्ड सेरेमनी भी है करते जा है, हमने के पूरा गोपियों कॉन्फ्रेंस के बारे में जो मुख्य विषय रही जो होकर पर हम बात कर ली है। और बड़ा शिष्यों हम सोचते है कि धंधे बहादुर जैसन तबाया सोशल देश धर्म जाति समाज के बारे में सोचोल आदमी अभी तक शायद हम नहीं मिलल है जी, अभी तक ओकर लिए बड़ा कोई हुई था, लेकिन हमर खातिन एगो आदर्श रहन ये खातिन हमने की देवो है कि है कॉन्फ्रेंस हुआ दीजिए करके श्री धंधे बहादुर जी के।
1: और जब उनकर आदर्श के बारे में बोला था तो जहाँ पर आप लोग युवा पीढ़ी से जुड़ के ये सम्मेलन चलावा था वजह बहुत ज़रूरी बा, युवा पीढ़ी लोग के ऐसा ऐसा रोल मॉडल आदर्श उन लोग के सामने रखे के ओकर बारे में बातचीत करे के, ताकि उन लोग सकें जा ओकर से प्रेरणा लेके अपन जो डायरेक्शन बा मार्ग निर्देश बा ओके तय करे। कहें कि देखा आज ऐसा दुनिया में जियत है जा जहाँ पर हर एगो बात के आपके पुष्टि चाहें, कुछ हो भी जानकारी चाहिए, सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बा, जीवित मूर्त इंसान पर जितना बतेबा तो ओकर से इंस्पिरेशन लेके जिए के चले के जीवन में ये बहुत ज़रूरी बा आज के युवा पीढ़ी लोग के सिखावे के।
0: आज के इस अवसर से हम लाभ उठा के सबसे पहले भारत सरकार के विशेषकर हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया मॉरिशस के और जितने हमारे यहाँ के फेडरेशन है सामाजिक संस्था है
1: जो सहयोग दे रहे हैं,
0: जितने लोग जोड़ रहे हैं आप भी सहयोग दे रहे हैं, MBC भी सहयोग दे रहे हैं, सभी लोगों को के आगे मैं नतमस्तक होता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ। अभी 1 महीना और है, आप हमारे साथ रहिए, आपके साथ रहने से हमें ऊर्जा मिलती है काम करने के लिए। और सभी को मैं न्योता देता हूँ कि किसी तरह से हर संस्था 5-5 लोगों को आज डेलीगेट प्रतिनिधि के रूप में भेजे। केवल ऐसा नहीं कि हम चाहते कि ज़्यादा लोग आए, हम चाहते कि ज़्यादा लोग सुने समझे और अपने संस्था में इसको लागू करें, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा संस्था के लोग आए तो अच्छा रहेगा। अपने बच्चों को भेजिए यूथ कॉन्फ्रेंस में, वहाँ से निकलेंगे तो कुछ
1: रजिस्ट्रेशन फ्री है या इसमें एक
0: नहीं बच्चों के लिए यूथ के लिए फ्री है
1: जी हाँ, क्योंकि रजिस्ट्रेशन का हमेशा एक फी होता है,
0: रजिस्ट्रेशन एक बड़ा मिनिमम फ्री ले रहे हैं क्योंकि उसमें कई खर्चा है
1: जरूर,
0: तो उसके एक बहुत कम फी है उसका, लेकिन युवा पीढ़ी के लिए यूथ कॉन्फ्रेंस के लिए फ्री है, बिल्कुल सब कुछ फ्री है। तो अब आएंगे हमारे साथ देंगे और इस कन्वेंशन को हम सफल बनाएं, क्योंकि ये कन्वेंशन मेरा नहीं है न गोपियों का है, ये मॉरिशस का है,
1: जनता का
0: जितना
1: है।
0: अच्छा रहे मॉरिशस का नाम आ गया और मॉरिशस से लोग बहुत अपेक्षा करते हैं
1: जरूर
0: है?
1: जरूर
0: कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉरिशस हमारे लिए करे, मॉरिशस हमारे के। और मॉरिशस सन 2003 में घोषित हुआ है PIO कैपिटल, मतलब पूरे PIO का कैपिटल मॉरिशस है। तो इस बार इस पर भी हम काम करेंगे, इसको आगे कैसे बढ़ाएंगे, हमारा एक विषय है जो उसको आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं कि हमारा गोपियो इंटरनेशनल सेक्रेटेरिएट मॉरिशस में स्थापित हो, इस पर इस कॉन्फ्रेंस में भी बात होगी।
1: तो अभी सेक्रेटेरिया कहाँ है
0: ऑफिशियल से? अभी सेक्रेटरी जो है वो मलेशिया का है, तो वहाँ से वो कर रहा है, लेकिन हम जैसे वॉल हिंदी सेक्रेटेरिएट है
1: जरूर,
0: इस तरह से एक सेक्रेटेरिएट यहाँ बनाना चाहते हैं,
1: क्योंकि हम तो आज जैसा कि आप कर रहे हैं PIO का कैपिटल घोषित हुए हैं।
0: हाँ हाँ, तो
1: इसलिए सचिवालय यहीं पर हो,
0: सचिवालय यहीं हो और यहाँ से काम हो, कल हम रहे ना रहे।

0: है सचिवालय हो और काम आगे बढ़े।
1: जरूर।
0: तो इसलिए अभी भी पहले ही मैं सबको धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि हमें बड़ी खुशी होगी आपसे मिलकर हमारे प्रोग्राम मैनों को। जैसे मैंने कहा, उद्घाटन समारोह शुक्रवार 11 को 3:30 बजे है और क्लोजिंग सेरेमनी 3 बजे 13 रविवार 13 सितंबर को है। उससे पहले स्पेशल सेशन है धनदेव बहादुर जी पर
1: जी।
0: तो मैं चाहता हूँ सब लोग आए, मिले अपने लोगों से, मिले अपने लोग आएंगे। और MBC को आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया हमें कुछ बताने के लिए।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्री विनय दसोई जी कि आपने अपना समय निकालकर आज इस प्रोग्राम में भाग लिया और हमें ये ज़रूरी जानकारियाँ दी। क्योंकि इस तरह से जब कोई पूरा ऊर्जा, पूरा समय और पूरा जो रिसोर्स है इसको लगाकर एक ऐसा मंच क्रिएट किया जाता है जहाँ पर सभी लोग जुड़ सकते हैं, अपने इतिहास के बारे में, अपने लोगों के बारे में, अपने विरासत के बारे में जान सकें, तो इससे देश के सभी जनता को लाभ होनी चाहिए, उनको पूरी जानकारी होनी चाहिए। और हम चाहते हैं कि आपका ये जो सम्मेलन है, हमारी ऐसी शुभकामना है कि वो बहुत ही सफल रहे और हमारे सुनने और देखने वालों को इससे दिलचस्पी हुई होगी, उनकी रुचि जागी होगी, ऐसी उम्मीद के साथ हम इस प्रोग्राम को समाप्त कर रहे हैं। आपको धन्यवाद और हमारे सभी दर्शकों को भी और श्रोताओं को बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

0: जी सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। आपसे अभी नमस्कार।
1: नमस्कार नीलमणि, श्रोताओं को भी नमस्कार और आदाब। संक्षिप्त समाचारों में स्वागत है। ईंधन के दामों में एक बार फिर बढ़ोतरी हुई है। आधी रात से पेट्रोल की कीमत 64.25 रुपये से बढ़कर 70.65 रुपये प्रति लीटर हो गई है, यानी कि इसमें 6.40 रुपये की वृद्धि हुई है। वही डीजल की कीमत 71.25 रुपये प्रति लीटर पर ही बरकरार है और इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। ये फैसला कल रात शुक्रवार 14 अगस्त हुई पेट्रोलियम प्राइसिंग कमेटी की बैठक के बाद लिया गया है। मुख्य रूप से ईंधन की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में बदलाव और प्राइस स्टेबलाइजेशन अकाउंट में दर्ज 3.5 बिलियन रुपए के घाटे को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया गया है। आज 15 अगस्त को भारत अपनी 80वां स्वतंत्रता दिवस पूरे गर्व और उत्साह के साथ मना रहा है। ये ऐतिहासिक अवसर उन अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों के निस्वार्थ बलिदान को नमन करने का दिन है, जिनकी बदौलत आज भारतीय जन आजाद हवा में सांस ले रही है। आज भारत वैश्विक मंच पर एक उभरती हुई महाशक्ति के रूप में खड़ा है। अंतरिक्ष अनुसंधान से लेकर डिजिटल तकनीक और आर्थिक विकास तक भारत

0: ने दुनिया भर में अपनी अमित छाप छोड़ी है। इसी गौरवशाली यात्रा के बीच भारत और मॉरिशस के रिश्ते बेहद ही खास और आत्मीय हैं। साझा इतिहास, सांस्कृतिक विरासतों और अटूट कूटनीतिक संबंधों में बंधे ये दोनों देश सच्चे मित्र हैं और आज लहराता तिरंगा न केवल भारत की प्रगति का प्रतीक है अपितु हिंद महासागर के पार बसे भारत और मॉरिशस की इस अटूट दोस्ती और नए भारत के उज्ज्वल भविष्य का उत्सव भी है। 84,000 छोटे खेतीहर, पशुपालक और उनके परिवार के सदस्य इससे सीधे रूप से प्रभावित हो सकते हैं। स्मॉल फार्मर्स वेलफेयर फंड और फागे का आपस में विलय करने के खिलाफ यही मुख्य तर्क दिया जा रहा है। ये दोनों संस्थाएं कृषि क्षेत्र में ही काम करती हैं, लेकिन दोनों के उद्देश्य और कार्य अलग अलग हैं। यानी कि किसानों को सामाजिक और वित्तीय सहायता प्रदान करता है, मुख्य रूप से शोध, ट्रेनिंग और तकनीकी सहायता पर ध्यान केंद्रित करता है। किसान के प्रतिनिधियों का मानना है कि इस विलय से किसान परिवारों को मिलने वाली सामाजिक मदद कमजोर हो सकती है और साथ ही अनुसंधान का काम भी धीमा पड़ सकता है। इसलिए ये प्रस्ताव रखते हैं कि दोनों संस्थाओं को अलग अलग ही बनाए रखा जाए। कैबिनेट ने इस बात पर ध्यान दिया कि 30 जुलाई 2026 को कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स की सीमाओं पर बने आयोग ने रॉड्रिग्स टापू के क्षेत्र में विस्तृत कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स के संबंध में मॉरिशस गणराज्य द्वारा 6 मई 2009 को प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी। कैबिनेट ने इस बात पर ध्यान दिया कि प्रधानमंत्री रविवार 16 अगस्त को दक्षिण अफ्रीका की यात्रा करेंगी। वे वहां सैडेक के 46वें शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, जिसकी मेजबानी और अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका की गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम मातामेला सिरिल रामाफोसा करेंगे। विदेश स्तर पर हम देखते हैं कि इंडोनेशिया के तट के पास शनिवार टर्की 7.7 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। इस भूकंप के बाद सुनामी की आशंका जताते हुए चेतावनी जारी कर दी गई है और कई झटके भी महसूस किए गए हैं। तो ये थी अब तक की खबरें, आप लोगों ने ध्यान दिया इसके लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार।
1: रॉयल रोड पुद्रदो हैमलेट में 65 साल के 65 years old के श्री जयदत्त सिबालक जिन्हें सब लोग सोना मिनिस के नाम से भी जानते थे और जो पीएमओ के पूर्व चालक थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दोपहर के दो बजे उनकी माँ श्रीमती शकुंतला सिबालक के घर रॉयल रोड पुद्रदो हैमलेट से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पीतों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। गोपोल लेन कारोलालियन वाकुआ में 87 years old के कुमारी श्रीमती गिरगंती रितन पैदाइश नाम बिस्नत और जिन्हें सब लोग सरोजनी के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दोपहर की दो बजे उन्हीं के घर गोपाल लेन कारोलालियन वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए एलिब्रियो की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। इन सभी शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी हमदर्दी है।
2: 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
3: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس وقت ہم ریڈیو مارشس سے آپ سے مخاطب ہیں گل ہے عقیدت پروگرام کا آغاز یہاں پر ہو رہا ہے جس میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں آئیے باقاعدہ آغاز تفسیر سے کرتے ہیں اور آج تفسیر میں آپ کو پیش کر رہے ہیں سورہ فاتحہ یعنی سورہ فاتحہ کی تفسیر مفتی آصف عبداللہ قاری دامت برکاتہ مالیہ کی زبانی اس کا پہلا حصہ ہم آپ کو پیش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کا دوسرا اور آخری حصہ اگلے ہفتے ہم آپ کو پیش کریں گے سماعت کیجیے سورہ فاتحہ کی تفسیر

इंशाअल्लाह ताला कामयाबी ही कामयाबी है। अलहम्दु, अल के माना तमाम, हम्द खूबियां, अलहम्दु तमाम खूबियां, लिल्लाही अल्लाह के लिए हैं, रब्बिल आलमीन रब के माना पालने वाला, आलमीन सारे जहान वालों का, तमाम खूबियां उस अल्लाह के लिए हैं जो सारे जहान वालों का पालने वाला, सबको रोजी वही दे रहा है, इज्जत देने वाला वही है, बीमारियों से शिफा देने वाला वही है, बिगड़े काम बनाने वाला वही है। हाँ, ये अलग बात है कि उसने दुनिया को एक जरिया बनाया। हम जब पानी पीते हैं तो हमारी प्यास बुझ जाती है, प्यास बुझाने वाला कौन है? अल्लाह ताला। पानी को अल्लाह ने जरिया बनाया। अगर अल्लाह ताला चाहे तो हजार मर्तबा कोई पानी पिए उसकी प्यास न बुझे, और रब्बुल आलमीन चाहे तो बगैर पानी पिए वो प्यास बुझाने पर कादिर है। लेकिन उसने एक जरिया बनाया, वसीला बनाया, एक सबब बनाया। भूख लगी है, खाना खाते हैं, भूख मिट जाती है, तो भूख मिटाने वाला रब्बुल आलमीन है। खाना एक जरिया है, एक सबब है, एक वसीला है। वो चाहे तो बगैर खाए भूख मिट जाए, और वो चाहे तो कितना भी खाना खा लें लेकिन भूख में कमी वाकई ना हो। अकीदा यही होना चाहिए, और यही इस्लामी अकीदा है कि सब कुछ करने वाला अल्लाह ताला है। अंबिया औलिया ये असबाब हैं, ये जराए हैं, ये वसीले हैं, अल्लाह ताला ने उन्हें मकाम और मर्तबा अता फरमाया। ये फरिश्ते अल्लाह ताला की मशीयत है, अल्लाह ताला फरिश्तों का मोहताज नहीं है। वो चाहे तो इन फरिश्तों के बगैर पूरी कायनात का निजाम चल जाए, लेकिन उसकी मशीयत है, उसकी मर्जी है कि उसने फरिश्तों को ये निजाम दिया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन में यही दर्स है कि हकीकी तौर पर पालने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला है। फरिश्ते हों, अंबिया हों, औलिया हों, इन्हें अल्लाह ताला ने जरिया और वसीला बनाया, रब्बुल आलमीन ने उन पर करम फरमाया और उन्हें मकाम मर्तबा अता फरमाया। अर्रहमान बहुत ज्यादा मेहरबान, अर्रहीम रहम करने वाला। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस कदर मेहरबान और इस कदर रहम करने वाला है कि इससे अंदाजा लगाइए कि फरमाया जिस कदर माँ अपने बच्चे से प्यार करती है उससे भी 70 गुना जायद रब्बुल आलमीन अपने बंदे से मोहब्बत फरमाता है। जब रब्बुल आलमीन इतना करीम है, इतना रहमान है, इतना रहीम है, तो कितना बदनसीब है वो बंदा जो रब्बुल आलमीन का कहना ना माने, रब्बुल आलमीन की नाफरमानी करे। उस करीम रहीम परवरदिगार की बारगाह में हमेशा के लिए हमें झुक जाना चाहिए। मालिकी यौमिद्दीन, कयामत के दिन का मालिक, दीन के माना फैसला, दीन के माना जजा, यौम के माना दिन, कयामत के दिन का मालिक, फैसले के दिन का मालिक, जजा के दिन का मालिक। कयामत के दिन रब्बुल आलमीन अगर नाराज हो गया और किसी शख्स का मरते वक्त ईमान बर्बाद हो गया, तो बताइए रब्बुल आलमीन के गजब से क्या हमारी दुनिया की दौलत, ये हमारा मनसब, ये सोर्स हमें बचा सकती है? मालिक यौमिद्दीन, कयामत के दिन का तो वही मालिक है। इया का, इया खास का, तेरी खास, तेरी, नाबुदु हम इबादत करते हैं, नाबुदु हम इबादत करते हैं। व इया का, वाव के माना और, इया माने खास, का माने तेरी, और खास तेरी, नस्ताइन हम मदद मांगते हैं। लफ्जी तर्जमा तो यही है, मगर चूंकि ये दुआ है और अरबी ग्रामर का ये उसूल है, ये कायदा है कि दुआ के मकाम पर तर्जमा दुआया होना चाहिए, इसीलिए इसका तर्जमा मुफसरीन ने फरमाया इस तरह होगा, ऐ परवरदिगार तू हमें हमेशा ये तौफीक अता फरमा कि हम तेरी ही इबादत करें और तुझ ही से मदद मांगे। तो ये दुआ है। जहां पर सवाल ये है
कि

0: इय्याका। कुरान में इस आयत में दो मर्तबा है। अगर अरबी ग्रामर जो जानता हो वो इस बात को जानता है कि दो मर्तबा इय्याका की हाजत नहीं, एक दफा अगर इय्याका आ जाए तो वो वही माना देगा जो दो मर्तबा इय्याका देता है। कुरान मजीद फुकान हमीद में किसी भी लफ्ज की तकरार फजूल नहीं है, उसकी हिकमतें हैं। इसकी क्या वजह है? मुफस्सरीन ने फरमाया इसकी वजह यह है कि इबादत और मदद मांगने को अलग अलग करना मकसूद है। इबादत तो सिर्फ अल्लाह ही की जा सकती है, अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करना या पूजा करना ये शिर्क है। लेकिन जहां तक मदद का ताल्लुक है, मदद में यह है कि हकीकी मददगार तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला है। लेकिन इंसान अगर अपनी जिंदगी को देखे तो उसकी जिंदगी मखलूक की मदद के बगैर कामिल और मुकम्मल नहीं होती। माँ बाप की मदद की जरूरत है, लोगों की मदद की जरूरत है, दोस्तों की मदद की जरूरत है, बल्कि इल्म जो है वो उस्ताद की मदद से हासिल किया जाता है। और फिर अल्लाह ताला ने अंबिया औलिया और फरिश्तों को भी मकाम अता फरमाया। तो मदद में अकीदा ये है हकीकी मददगार सिर्फ अल्लाह ताला है, और बाकी जो भी मदद करेगा, चाहे फरिश्ता करे, चाहे नबी करें, चाहे वली करें, चाहे आम मखलूक को जो थोड़ा बहुत मदद करने का इख्तियार है, हकीकी मददगार अल्लाह ही है। और ये तमाम जराए और वसाइल और असबाब हैं। रब्बुल आलमीन ने अंबिया औलिया और फरिश्तों को मकाम और मर्तबा अता फरमाया। इस मजमून को अगर देखना चाहें तो सूरह तहरीम आयत नंबर 4, फइन्नल्लाहु मौलाहु, बस बेशक अल्लाह उनका मददगार है, व जिब्रीलु, और जिब्रील मददगार हैं, व सालिहुल मुमिनीन, और नेक मोमिन सालेह मोमिन मददगार हैं। इस आयत करीमा में अल्लाह भी मददगार है, जिब्रील भी मददगार हैं, सालेह मोमिनीन भी मददगार हैं। तो अल्लाह का मददगार होना हकीकी है, जिब्रील और सालेह मोमिनीन का मददगार होना अल्लाह की अता से है, अल्लाह ने उन्हें मकाम और मर्तबा दिया। सूरतुल माईदा आयत नंबर 55, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीन आमनू, तुम्हारा मददगार अल्लाह है और उसके रसूल हैं, और मोमिनीन तुम्हारे मददगार हैं। हम अब देखें सूरतुल माईदा की आयत नंबर 55 में ये फरमाया गया कि अल्लाह तुम्हारा मददगार है, उसके रसूल तुम्हारे मददगार हैं, और नेक मोमिनीन तुम्हारे मददगार हैं। तो इस आयत का मफहूम यही है, हकीकी मददगार सिर्फ और सिर्फ कौन है? अल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मोमिनीन मददगार हैं अल्लाह की अता से।
1: गोशे नूरी सामीन गुलहाय अकीदत प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा हम आपको आज पेश कर रहे हैं, मारूफ कसीदा बुर्दा शरीफ मा उर्दू तर्जुमा। इसको हमने 4 हिस्सों में तकसीम किया है, इंशाल्लाह हर हफ्ते एक हिस्सा हम आपको पेश करेंगे। पेश खिदमत है हज़रत अल्लामा बुसैरी रहमतुल्लाह अलैह का लिखा हुआ मारूफ कलाम कसीदा बुर्दा शरीफ।

मोहतरम मुकर्रम सामीन, आप सुनने जा रहे हैं पहली बार मुकम्मल कसीदा बुर्दा शरीफ उर्दू तर्जुमे के साथ। जी हाँ सामीन, वो कसीदा बुर्दा जो बरगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में मकबूल है, जो बेकरार दिल का सुकून और बीमार जिस्म रूह की दवा है, जिसको शायर अरब मशहूर आशिक रसूल मोहम्मद शरफुद्दीन बसीरी रहमतुल्लाह अलैहि ने लिखा और ख़ुद उन्हीं की ज़बान से सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने समात फरमाया, जैसा कि कुतुब ज़बां शेख अबू रजा फरमाते हैं कि मैंने अपनी आँखों से देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम

उसको सुनते वक्त इस तरह झूम रहे जैसे दरख्त की डालियां हवा के झोंकों से झूमती हैं। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में ये कसीदा पढ़ा और सुना जाता है और सारे आलम में इसकी शोहरत है। इसी अहमियत के पेश नज़र हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आसिफ

वो इमाम सुन्नी रजवी सोसाइटी ने नहायत ही सलीस और आसान उर्दू में इसका तर्जुमा किया। दुआ है कि मौला ताला इसके लिखने, पढ़ने और पेश करने वाले, सुनने वाले सबकी मुश्किलात को कसीदा बुर्दा शरीफ के सदक़े आसान फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।

ऐ मेरे मालिक, अपने महबूब पर हमेशा हमेश दरुद व सलाम भेज, जो सारे मखलूक में सबसे बेहतर और अफजल व बरतर हैं।

तमाम खूबियाँ अल्लाह अज़्ज़ वजल के लिए जो मखलूक को अदम से वजूद बख्शने वाला है, फिर हमेशा कामिल दरूद हो बख्तियार नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर।

क्या जिसलम के पड़ोसी तुझको याद आ गए हैं, जिनकी वजह से तेरी आंखों से खून आलूद आंसू जारी हैं।

या काजिमा यानी मदीने की तरफ से हवा चली है या अंधेरे में वादिये इदम से बिजली चमकी है।

तेरी आंखों को क्या हुआ, अगर तू उनसे रुकने को कहे तो मजीद आंसू बहाती हैं, और तेरे दिल को क्या हुआ, अगर तू उसको कहे ठहर जा तो और धड़कता है।

क्या मोहब्बत में रोने वाला आशिक ये समझता है कि मोहब्बत छुप जाएगी, जबकि वो अश्के रवां और बेकरार दिल के दरमियान में है।

अगर तुझको मोहब्बत न होती तो खंडरात पर आंसू न बहाता, और बांध दरख्त और पहाड़ यानी कोहे हिरा की याद में तेरी नींद उचाट न होती।

तो मोहब्बत का इनकार किस तरह कर सकता है, जबकि इस मोहब्बत पर बहते आंसू और तड़पता दिल दोनों सच्चे गवाह हैं।

गम-ए-इश्क ने तेरे दोनों रुखसारों पर आंसू और कमजोरी की दो लकीरें बना दी हैं, एक बहार फूल की तरह जर्द और दूसरी अनम फल की तरह सुर्ख है।

हाँ, महबूब रात को मुझे ख्वाब में नजर आया तो उसने मेरी नींद उचाट कर दी, और मोहब्बत खुशियों में गम का रखना डाल ही देती है।

0: पाकीज़ा और सच्ची मोहब्बत में मुझको मलामत करने वाले, मैं तुझसे माजरत चाहता हूँ, अगर तू इंसाफ करता तो कभी मलामत ही न करता।
1: अदत

मेरी हालत इश्क की खबर तुझ तक पहुंच चुकी है। मेरा हाल चुगलखोरों से पोशीदा नहीं और मेरा मर्ज खत्म होने वाला नहीं।

मलामत के बाब में मैंने तो बुढ़ापे जैसे नासिह को भी मुलजम जाना, हालांकि बुढ़ापा नसीहत के मामले में हर इल्ज़ाम से दूर है।

0: आमी।
1: बदी का हुक्म देने वाले मेरे नफ्स से अम्मारा ने अपनी नादानी के सबब सफ़ेद बाल और बूढ़े जैसे डराने वालों की नसीहत कबूल न की।

नफ्स अम्मारा ने नेक अमल से इस मेहमान की मेहमान नवाजी न की, जो मेहमान अचानक मेरे सर पर उतर आया, यानी बुढ़ापा।

अगर मुझको मालूम होता कि मैं इस मेहमान की इज्जत न कर सकूंगा तो मैं इस राज यानी सफेद बाल को मेहंदी से छुपा देता।

कौन है जो मेरे नफ्स को शरारत और सरकशी से बाज रखे, जिस तरह के घोड़े को लगाम के जरिए बाज रखा जाता है।

नफ्स तो बच्चे की तरह है, अगर उसको ढील दोगे तो दूध पर ही जवान होगा, और अगर दूध छुड़ाओगे तो छोड़ देगा।

नफ्स की ख्वाहिशात को कुचल दे और होशियार रह, कहीं वो तुझ पर गालिब न हो जाए, क्योंकि ख्वाहिश जब गालिब होती है तो बर्बाद या रुस्वा कर देती है।

नफ्स पर निगाह रख जब वो आमाले सालेहा के मैदान में चरने में मसरूफ हो, और अगर वो इस चरागाह को मीठा समझे तो मत चरने दे।

नफ्स बसावकात जानलेवा लज्जत को इंसान के सामने अच्छी सूरत में पेश करता है। इंसान को पता भी नहीं चलता कि चिकनाई में जहर मिला है।

उन आंखों से आंसू बहा जो हराम चीजों के मुशाहदे से भर गई है, गुनाहों से शर्मिंदा होकर परहेजगारी इख्तियार कर।

नफ्स और शैतान की मुखालिफत कर और दोनों की नाफरमानी कर, अगर वो तुझको खालिस नसीहत करें फिर भी उनको झूठा ख्याल कर।

उन दोनों यानी नफ्स और शैतान की इताअत न कर, वो फरीक़े मुखालिफ बने या मुनसिफ, क्योंकि तो फरीक़े मुखालिफ और मुनसिफ के मकरो फरेब को खूब जानता है।

मैं अल्लाह से इस्तग़फ़ार करता हूँ बेअमल गुफ्तगू करने से, क्योंकि बेअमल गुफ्तगू करना बांझ औरत की तरफ औलाद मंसूब करना है।

मैंने तुझको भलाई का हुक्म दिया मगर खुद उस पर अमल न किया, और जब मैंने खुद ही इस्तेकामत इख्तियार न की तो मेरा तुझको इस्तेकामत का हुक्म देने का क्या फ़ायदा।

मैंने मौत से पहले नफली इबादात का कुछ भी ज़ादे राह तैयार न किया और फ़र्ज़ नमाज रोज़ों के अलावा नफली नमाज रोज़े अदा न किए।

0: आलमी।
1: मैंने उनके तरीके को छोड़ दिया जिसने अंधेरी रातों को जिंदा किया, शब बेदारी की, यहां तक कि आपके कदम मुबारक वर्म जदा हो गए।

दुनिया से बेरुखबती को उनकी जरूरत ने और मजबूत कर दिया। यकीनन जरूरत इस्मत पर गालिब नहीं आती।

और जरूरत उनको दुनिया की तरफ कैसे मायल कर सकती है? अगर वो न होते तो खुद दुनिया ही अदम से वजूद में न आती।

मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सरदार दो जहां और जिन्नो इंस के आका हैं, अरब व अजम दोनों के सरदार हैं।

हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अच्छाई का हुक्म देने वाले, बुराई से रोकने वाले हैं। हाँ या ना कहने में उनसे ज्यादा बात का सच्चा कोई नहीं।

वही अल्लाह के ऐसे महबूब हैं कि जिनसे शफाअत की उम्मीद की जाती है हर मुसीबत और हर एक तकलीफ में।

आपने तमाम जिन्नो इंस को खुदाए बरतर की तरफ बुलाया, आपके दामन को पकड़ने वाले दर हकीकत ऐसी रस्सी को पकड़ने वाले हैं जो कभी नहीं टूट सकती।

आप हुस्ने सूरत और सीरत में तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम पर फायक हैं, इल्म फजल और जुद सखा में कोई भी नबी आपके करीब तक न पहुंच सका।

वो सब के सब आपके दरियाए इल्म फजल से एक चुल्लू के तलबगार हैं, या आपकी जूदो करम की बारिश से एक घोंट पाने वाले हैं।

वो अपनी हद में रहते हुए आपकी बारगाह में दस्तबस्ता खड़े हैं, जो आपकी किताब इल्म का एक नुक्ता या किताब हिकमत का एक एराब है।

बस आप ही की जात है जो जाहिरी और बातिनी कमालात में मुकम्मल है, फिर खालिक अरवाह ने आपको अपना महबूब चुन लिया।

0: आप अपने कमालात व खूबियों में शरीक से पाक हैं। आपका जौहर हुस्न व जमाल किसी तकसीम के काबिल नहीं।
1: अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले अरब में अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊथ फरमाया, जिनका दुनिया में कोई उस्ताद न था। लिहाजा उम्मी लक़ब पाले वाले ने ऐसा कलाम किया कि बड़े बड़े अहले इल्म मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ऐसे खामोश हो गए जैसे उनके जिस्म से जान ही निकल गई हो। अहले अरब गैर अरब वालों को अजमी यानी गंगा कहते थे, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम को सुनकर यही अहले अरब, जिनको अपने इल्म पर नाज था, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ऐसे खामोश हो गए जैसे उनके जिस्म से रूह ही परवाज़ कर गई हो।

हज़रत आयशा सिद्दीका रदल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला वसल्लम तुम्हारी तरह कलाम करने में जल्दी नहीं करते थे, बल्कि ऐसा कलाम फरमाते थे कि कलाम के दरमियान वक्फा होता था, जो आप सल्लल्लाहु ताला वसल्लम की खिदमत में बैठता था हिफ्ज कर लेता था। और आला हज़रत अज़ीमुल बरकत परवाना शम्मे रिसालत ने इस हदीस मुबारका की रोशनी में कितने खूबसूरत अशार लिखे हैं, समात कीजिए कि मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किस को ज़बान नहीं, वह सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं।

सामीन, आप तमाम लोगों को रबीउल नूर, रबीउल शरीफ बहुत बहुत मुबारक हो। गुलाए अकीदत प्रोग्राम का मुकर्रर वक्त यहाँ पर अख्तिताम को पहुँचा। आपकी तवज्जो के लिए शुक्रिया। एक बार फिर आप तमाम लोगों को आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक महीना रबीउल शरीफ बहुत बहुत मुबारक हो। दुआ में याद करें। अगली मुलाकात तक अनोखी इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।

பாத்திரம் செய்து என்னை பார்த்து சிரித்துக் கொண்டான்.

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: स्वर तरंग।
2: स्वर तरंग।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस।
1: रेडियो
0: मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस
2: 819 किलोहर्ट्ज पर, ये है रेडियो मॉरिशस।
1: रेडियो मॉरिशस,
2: रेडियो मॉरिशस,
3: आपकी पसंद।

जहां 2:15 बज चुके हैं और आज है शनिवार 15 अगस्त 2026, सैटरडे है 15 अगस्त, और हम जानते हैं आज है पब्लिक हॉलीडे। सो हम मना रहे हैं भारत का स्वतंत्रता दिवस, साथ ही असम्पशन डे, मां मरियम की कृपा बनी रहे। सो बहुत से लोग आज घर पर होंगे या कहीं बाहर घूम रहे होंगे परिवार के साथ या पूजा पाठ में लगे होंगे। आप कहीं भी हो, हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हेलो जी, नमस्कार, सलाम, आदाब, और जी से एक बहुत ही प्यारा सा हेलो आप सभी को। क्या हाल है मेरे प्यारे लिसनर्स? उम्मीद है सतादे की ये खूबसूरत आफ्टरनून आप सब के लिए लेकर आई है थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी सी खुशियाँ, थोड़ी सी यादें और बहुत सारा गीत संगीत। मैं हूँ देविना और आप सुन रहे हैं आपकी पसंद प्रोग्राम ओनली ऑन MBC रेडियो मॉरिशस। ऑफकोर्स ये है वो प्रोग्राम जहाँ पसंद आपकी आवाज़ हमारी और गीत दिलों को जोड़ने वाले। चाहे आप घर पर हैं या किचन में होंगे, दुकान में होंगे, ऑफिस में हैं या मॉरिशस की सदियों सड़कों पर अपनी ड्राइव एंजॉय कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, रेडियो की आवाज़ के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आज के गीत हैं खास और ख़ास हैं आप ही। तो वॉल्यूम बढ़ा दीजिए ना और कह दीजिए आज आपकी पसंद में मेरी पसंद का गीत बजेगा। ऑफ कोर्स समय की कमी के कारण कभी कभी ऐसा होता है हम नहीं चला पाते सभी के गाने, मगर आपको तो पता है 4028085 पर आप फ़ोन कर सकेंगे। फ़ोन आने शुरू हो चुके हैं, साथ ही 5251700527 ये है व्हाट्सएप के लिए या फिर नॉर्मल मैसेज के लिए आप ये नंबर यूज़ कर सकेंगे। कहते हैं ना, कभी कोई गाना सिर्फ गाना नहीं होता, उसमें होती है किसी की याद, किसी का प्यार, किसी की दोस्ती और कभी कभी पूरी ज़िंदगी की एक खूबसूरत कहानी। तो शुरुआत करते हैं एक ऐसे गाने के साथ जो आपको ज़रूर पसंद आएगा। देर से होता है मगर जब प्यार होता है तो बस बहुत अच्छा लगता है ना। तो आप लोग हमारा साथ देंगे ना, तो बस ये हो जाए आप सबों के लिए। देर सुहा से हुआ मगर प्यार तो हुआ है।

जान के लाले बोला मुझको कोई बचा ले। चूहा आगे पीछे बिल्ली पीछे बिल्ली चूहा आगे पीछे बिल्ली पीछे बिल्ली चूहा आगे पीछे बिल्ली पीछे बिल्ली चूहा आगे आ।

लाइफ मिजरेबल थी उनकी लाइफ, ड्रंकड हस्बैंड फाइटर वाइफ, बीवी बिगड़े शौहर अकड़े, रोज के झगड़े रोज के लफड़े, लफड़े झगड़े अरे झगड़े लफड़े, लफड़े लफड़े झगड़े झगड़े लफड़े झगड़े झगड़े लफड़े आ

दिन बीवी बन गई भोली, कुंडी खोली हंस के बोली, जाने तमन्ना अंदर आओ, पहले तो कुछ खाओ आओ, फिर बिस्तर पे होंगी बातें, बड़े प्यार से कटेंगी रातें। शौहर चौंका, भूले से मैं ये किसके घर आ गया यार, मेरी बीवी मुझे कभी भी दे नहीं सकती इतना प्यार। शौहर बिस्तर छोड़ के भागा और कुंडी ताला तोड़ के भागा, शौहर बिस्तर छोड़ के भागा, कुंडी ताला तोड़ के भागा, भागा रे भागा रे भागा रे भागा रे भागा। बोला देवी माफ कीजिए, मेरे साथ जरा इंसाफ कीजिए, मुझको अपने घर जाना है, वरना बीवी फिर मारेगी। उस दिन बीवी होश में आई, बंद हो गई सारी लड़ाई, नफरत हारी उल्फत जीती, लुटी खुशी फिर लौट के आई। अरे नफरत हारी उल्फत जीती, लुटी खुशी फिर लौट के आई। आई रे आई रे आई रे आई रे आई, पीना छूट गया।

फिर दोनों ऐसे मिले प्यार में ही डूब गए। प्यार अगर मिले तो हर नशा है बेकार। चाह चारिया

0: आपकी पसंद।
1: जहाँ जहाँ चार यार मिल जाए तो बस क्या गप शप होता है आपको पता ही है। और जब टेलीफोन की घंटी बजती है यहाँ पर ना, इतनी गप शप होती है कि क्या कहें। बस आप लोगों का साथ है, आपका प्यार है, तो ये प्रोग्राम है आपके साथ के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, सो बस पढ़ते हैं पहली फरमाइश की ओर। अभी आपने सुना जहाँ चार यार की श्रद्धा की आवाज़ में, फिल्म थी शराबी। अभी के लिए हम जो गाना पेश करने वाले हैं फ्रॉम द मूवी बहू बेटी, और गायक कलाकार हैं रफ़ी साहब। जियो तो ऐसे जियो, और इस गाने की फरमाइश की है गायत्री जी ने, सैप ऐसे है। और श्रावणी की मंगल कामनाएँ भेज रही हैं सभी लिसनर्स को, साथ में स्वतंत्रता दिवस भारत की उनके लिए भी, और साथ में असम शिंदे के लिए भी सभी को मंगल कामनाएं हैं, और साथ में हमारी टीम के लिए भी थैंक यू। और वे कह रही हैं वहाँ पर बारिश हो रही थी, और हमने सुना है कि मॉरिशस के कुछ इलाकों में बारिश हो रही है। मुका में आए तो मुका भी के लिए थम चुका है ये बारिश। तो बस हम आशा करते हैं आप जहाँ भी हो टेक केयर, और जो भी कर रहे हैं संभल कर कीजिएगा। सो बस ये गाना जाएगा सभी लिसनर्स के लिए, साथ में है उनकी भाभी के लिए, भतीजियां हैं, भतीजे बहुएं हैं, साथ में उनके सभी ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए और सभी सुनने वालों के लिए ये गाना हो जाएगा।

जी हाँ, फिल्म है प्यार का साया, तेरी दोस्ती से मिला है हमें। बस ये गाना विश्वानी दुमन आपके लिए, नमस्ते जी, वाक्वा की है। और प्यार का साया मूवी का गाना बहन इंदिरा, शादा, प्रतिभा, नीला, शोभा और साथ में गीता गजाधर के लिए।

0: प्यार का हम तो देते ही हैं हमारे गीतों के जरिए, आपसे बातें करते हैं, आपके मैसेजेस पढ़ते हैं और साथ में आपके गाने चलाते हैं ना।
1: हट जाओ दीवाने आए, मस्ती लेकर मस्ताने आए, किसे खबर चले कहां, किसे खबर।

जहाँ सिंगापुर का गाना है, सिंगापुर लेकर गई हैं अभी के लिए, और दिल से प्यार भरा नमस्कार आपको भी। हाँ, गीता जी पोंफे से हैं, पति रोहित के लिए, तीन बहू हैं, तीन बेटों के लिए, आदित्य, आरफ, तनिष, साथ में जानवी से प्यारी जी, जानवी हैं, और पूरी एमबीसी स्टाफ के लिए, सभी उनके फ्रेंड्स हैं, थैंक यू ऑफ कोर्स। और ये गाना बस एंजॉय कीजिए।

0: फूले पले।
1: चुप क्यों हो गए? और सुनाओ।
2: हम चुप नहीं, हम ये पर हैं। और आज का दिन अपने आप में बहुत विशेष है, स्पेशल है, क्योंकि आज हम याद कर रहे हैं भारत के जो स्वतंत्रता दिवस की गौरवमयी भावना को, और साथ ही मना रहे हैं असम्पशन डे, माता मरियम की स्वर्गारोहण का पवित्र पर्व। दो अलग अलग परंपराएं हैं, लेकिन संदेश एक ही है, आस्था, प्रेम, शांति, करुणा और मानवता। तो इस ये जो गाना है ना, इसकी फरमाइश की है सुदेवी और वाकवा। गुड इवनिंग आपको भी और एंजॉइंग योर शो, थैंक यू। अगला गीत जो है, हाँ जी, ये गाना ट्रियोले के दीदी ललिता कुशल फैमिली के लिए दीदी सुनीता शोभा देवी नामाला बिंदु संगीता मानेंगा के और रामरतन रामगोलाम कुआओ रघुबर जालू फैमिली और सभी टीम्स के लिए थैंक यू सो मच। आपको भी वंडरफुल डे, वंडरफुल शनिवार, ये गाना आपके लिए। महेंद्र कपूर साहब की आवाज में पूरब और पश्चिम मूवी का गाना। और जितने भारतीय हैं मॉरिशस में, भारतवासियों को हमारा सलाम है, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी मंगल कामनाएं भारतवासियों।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलो हर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: चले आज तुम जहां से।
3: जी हाँ, एक बार फिर से रफ़ी साहब की आवाज़ में। अगला गाना जो है आफेजी लाविनिया की है सैंपिया से, और उनकी जो भाभी हैं शबेरून सालगिरह मना रही हैं। आपको हैप्पी बर्थडे शबेरून जी, हमारी पूरी टीम की ओर से। आपके परिवार हैं, आपकी ननद हैं आफेज़, और वे आप रहती हैं शबेरून जी में जिन कौन मास्क। सभी बाबा साहेब परिवार की ओर से, साथ में हुसैन बख्श परिवार के लिए ये गाना आपके डियर लेट पति की याद में।

हमको साथ नहीं लेना है, हमारे साथ जुड़ना है। यहाँ पर प्रोग्राम चल रहा है आपकी पसंद प्रोग्राम रेडियो मॉरिशस पर, दीवीना है आपके संग 4 बजे तक। और आज विशेष कुछ गाने जो भारत से जुड़े हुए हैं, भारतवासियों के लिए एक महान दिन है। सो राष्ट्रीय जो दिवस है उनके लिए मंगलमय हो। और ये गाना किसने मांग की है, तो बस ये गाना जाएगा मोदाल भैया की। हाँ जी, अनीता है, करुणा, अमृता, सभी दोस्तों के लिए और सभी जो लोग हम इस गाने को पसंद करते हैं बस।

जहाँ ये गाना हमें ले जाएगा 3 बजे के समाचार की ओर। आप हमारा साथ देते रहे रेडियो मॉरिशस पर। मैं हूँ देविना और समाचारों के बाद कार्यक्रम को फिर जारी रखेंगे और आपका आपके जो प्यारे प्यारे साथ के लिए तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।

0: आइए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार टीना के साथ। आपको नमस्कार टीना।
1: नमस्कार। संक्षिप्त समाचारों में सबसे पहले स्थानीय खबरें। पेट्रोल के दाम में एक बार फिर बढ़ोतरी हुई है। आज ही रात से पेट्रोल का दाम 64.25 रुपये से बढ़कर 70.65 रुपये प्रति लीटर हो गया है, यानी 6.40 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन डीजल के दाम 71.25 रुपये प्रति लीटर पर पहले जैसा ही रहेगा। ये फैसला कर रात हुई पेट्रोल प्राइसिंग कमेटी पीपीसी की बैठक के बाद लिया गया। पीपीसी ने दुनिया भर में फ्यूल के दामों में हुई बढ़ोतरी के साथ प्राइस स्टेबलाइजेशन अकाउंट में दर्ज 3.5 बिलियन रुपए के घाटे को भी ध्यान में रखा है। इसके साथ स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ पेट्रोल और डीजल की खरीद बिक्री का समझौता करेगी ताकि लंबे समय तक इनकी सप्लाई बनी रहे। इस फैसले को कल मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। ये समझौता मॉरिशस और भारत की सरकारों के बीच आपसी सहयोग के तहत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने कल दोपहर बेजुतोंबो में कई जगहों का दौरा किया। सबसे पहले उन्होंने बेजुतोंबो में फोर्ट अल्बर्टा मिनी सॉकर पिच का उद्घाटन किया। इस पर 3.5 मिलियन खर्च किए गए हैं और इसका काम मार्च से जून के बीच पूरा हुआ। इसके बाद प्रधानमंत्री ने इलाके के नए पुलिस स्टेशन का भी उद्घाटन किया। अपने भाषण में डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने नशीली दवाओं की तस्करी के खिलाफ सरकार की सख्त कार्रवाई का इरादा फिर से जाहिर किया। उन्होंने कहा कि इस मामले में सरकार किसी भी तरह की नमी नहीं दिखाएगी। और प्रधानमंत्री वैसे इस रविवार दक्षिण अफ्रीका जाएंगे। वे सोमवार को जोहान्सबर्ग में होने वाले सादेक के 40वें शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। आज सुबह फिनिक्स स्थित इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र में भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारतीय तिरंगा फहराया गया। इस समारोह में प्रवासी समुदाय के सदस्यों ने विशेष रूप से भाग लिया, जो ऐतिहासिक सांस्कृतिक और आर्थिक स्तर पर भारत और मॉरिशस के बीच के विशेष संबंधों का प्रतीक रहा। विदेश में फ्रांस की शीर्ष अदालत ने देश में 15 साल से कम उम्र के बच्चों द्वारा सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को खारिज कर लिया है। अदालत ने इस कानून को नागरिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करार दिया है और फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों बच्चों की सुरक्षा के लिए इस कानून के प्रमुख समर्थक थे। तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुई। थोड़ी देर में एक शोक समाचार।
2: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
1: Railroad Ben Miami, Tabaji de Mizami ke pas, 58 साल की 58 years old की श्रीमती मीराबाई वेंकटास्वामी पैदाशी नाम किसना और जो बाबू नाम से ज़्यादा जानी जाती थी की मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी आज शाम 4 बजे

0: उनके घर व रोदबन में ऐसे उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कौंडमास की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमिशन टुडे एट 4 PM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस,
2: रेडियो मॉरिशस 819 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
3: रेडियो मॉरिशस,
2: रेडियो मॉरिशस।

0: मैं फिल्म में गुलुकारा की हैसियत से गई थी, लेकिन एक और रास्ते पर चल पड़ी। मैंने अदाकारा की हैसियत से अपनी सलाहियतों को जाहिर किया। आज की नौजवान नस्ल से पहले के लोग जानते हैं कि मैंने फ़न के किन पहलुओं को दरियाफ्त किया। वक्ती तौर पर गाने का शौक दब गया। फ़न भी पानी के चश्मे की तरह होता है, ज़मीन के नीचे तो चला जाता है, अपनी ताकत से ऊपर उभर आ जाता है।
1: मुसर्रत नज़ीर की आवाज़ में बहुत प्यारा प्यारी सी प्यारा सा गाना कहेंगे या प्यारी सी गज़ल, ये होगा हीरामंती जी बाशरी की है आपके लिए।

जी हाँ, दिन बजकर 16 मिनट हुए हैं और है आज है शनिवार 15 अगस्त। मैं हूँ देवीना, आप सबों का साथ दे रही हूँ। आपकी पसंद प्रोग्राम है और आपकी पसंद का आफ्टरनून और भी खूबसूरत होता जा रहा है। आप सुन रहे हैं MBC रेडियो मॉरिशस। आज एक सवाल आपसे, आपके लिए परफेक्ट सैटरडे आफ्टरनून कैसा होता है? म्यूजिक, फैमिली, फ्रेंड्स, चाय, थोड़ी सी घूमना फिरना, या फिर बस एक क्वाइट सुकूने में आप बैठे हैं, या फिर सोफे पर बैठे हैं, चाय की चुस्की ले रहे हैं और ये गाने सुन रहे हैं। वाह, जो भी हो, आज का आफ्टरनून बना लीजिए म्यूजिक फील्ड आपकी पसंद प्रोग्राम के साथ। और हम पहुंच गए हैं इस प्रोग्राम के सेकंड आवर की ओर। तो कुछ मैसेज ऐसे होते हैं जो प्रेजेंटर भी पढ़ते पढ़ते मुस्कुरा देते हैं, और कुछ मैसेजेस जो हैं सीधा दिल तक चले जाते हैं। और आज बहुत से डेडिकेशंस आ रहे हैं फॉर इंडिया के जो इंडिपेंडेंस डे के लिए, सभी लोग हार्दिक बधाइयाँ दे रहे हैं। कुछ गाने हम चलाएंगे भी और चला चुके भी। और वैसे जो बच्चे जो है ना, जो पार्टी करनी है कर लो, क्योंकि मंडे से बैक टू स्कूल। सो आपके लिए भी गाने हैं मेरे दोस्त। सो कुछ लोग जो हैं दूर होकर भी दिल के करीब होते हैं, कुछ सभी कुछ स्पेशल पीपल हैं, बस हमसे जुड़े होते हैं जिंदगी के हर पड़ाव में। और जब म्यूज़िक का नशा होता है, जादू होता है, तो क्या कहें, म्यूज़िक जो है ज़िंदगी को और ख़ूबसूरत बना देता है। और ऐसे में ये अगला गाना जो है ना, सुनकर किसी का जो चेहरा है खिल जाएगा, मुस्कुरा बैठेंगे विद्यानंद जी। और ऐसे गाने की फरमाइश करते हैं कि क्या कहें। और जी हाँ, फिल्म है अनोखी अदा, शमशाद बेगम की आवाज़ में, आज कहाँ जाके। और ये गाना जो है ना, विद्यानंद जी मांग रहे हैं सुहंती जी के लिए, राजीव, अमित शीतल, आशु, कृषिका, विशाल, स्वीति, हरवेश, उनके खास दोस्त विष्णु गजाधर, साथ में उनकी बहन है बिंदु कालीचंद।

ये पाकिस्तान वाला गाना चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था लता जी की आवाज में। ये था फॉर पोर्ट्रिस के इब्राहिम जी के लिए। तो आज विशेष दिन है इसे गाने चलाने का जो जुड़ा है स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष पर। और हमारे देश में बहुत से भारतीय लोग यहाँ पर रहते हैं, हमारे परिवार में जैसे एक साथ जुड़ते हैं हम, जैसे वो जैसे कहते हैं ना हमारा ही परिवार जैसा है। सो बस आप सभी को कहेंगे स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। ऐसे में जो गाना हम चलाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी हकीकत, धनी जी की मांग पर, धनी जी बहुत शरीक हैं, ये गाना यश और हिमिश के लिए। साथ में इसी गाने की मांग की है कटरबोन की स्वस्ति जी ने और सभी लिसनर्स के लिए। खास तौर पर ये गाना जाएगा वाकवा के सुबोध धनपत जी के लिए, साथ में उनकी स्वर्गीय पत्नी जो है माला धनपत के लिए।

कभी खुशी कभी गम इस फिल्म से लिया गया ये गाना वंदे मातरम उषा उत्थप की आवाज में, साथ में कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम वंदे मातरम। और ये गाना आपके लिए, जय हिंद आपको भी आशा जानो जी आपको तेज, ये सभी लिसनर्स के लिए और इंडियन भाई बहनों के लिए हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया। मामा कुमारी की ओर से निफ्यू हैं शुभम, ऋषभ, दीदी आरती, जीजू राज और सभी किनू जानू फैमिली के लिए।

एक प्यारा मैसेज है, हेलो ऑल टीम, लवली सॉन्ग्स, ऑलवेज गो, थैंक यू सिंस नाना नानी टाइम, लव दिस प्रोग्राम, हैविंग टी टाइम, गुड डे, एंजॉयिंग दिस लवली प्रोग्राम विद ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, फेते मिल फॉर मोमो, सो आपको बन अपेची, आई हैव ए नाइस वीकेंड, आपको भी नसरीन वाकवा, टेक केयर, आपको भी हम कहेंगे टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव टू नाना नानी एंड यू नसरीन. चलिए ये गाना हम नाम करेंगे, नाम जोड़ेंगे इसमें बंटू फैमिली ऑफ ट्रियोले.

लेट्स प्ले दिस सॉन्ग कटरबोन की प्रेमी लाजी, क्योंकि बहुत लोगों ने इसी विषय पर गाने मांगे हैं, तो हमने सोचा टाइम की कमी है, सो बस इस गाने में आप सभी के नाम जोड़ेंगे जो सभी को विश कर रहे हैं हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया। तो इसका ये की है प्रेमिला, कटरबोन की है प्रेमिला, और लीना, साइलेश, यश, रिया, रामनाथ जो फैमिली जो हैं, सभी माँ भाई बहन जो हैं विदेश जा रहे हैं, ये लीना, साइलेश, यश और रिया, बेस्ट ऑफ लक आप सभी को।

ये गाना लता जी की आवाज में श्यामा रघुनंदन जी और ग्रैंड गोप, ये आपके लिए सभी जो परिवार की ओर से आप सभी को बधाइयाँ दे रही हैं, शुभकामनाएं दे रही हैं फॉर द स्वतंत्रता दिवस ऑफ इंडिया। भाई जय प्रकाश के लिए, नम्रता भाभी के लिए, केशव युधिश, सहेलियाँ हैं विना रामफुल, विश्वानी दुखी और नंदिनी ओकरू के लिए।

ये गाना जाएगा खास तौर पर रेहाना जियोफिनिक्स के लिए। समय की कमी के कारण एक दो गाने हम नहीं चला पाएंगे, तो बस आपका नाम जोड़ेंगे। बस ये जो इम्पोर्टेंट है कि आप लोग फ़ोन करते हैं, हमसे बातें करते हैं, और अगर हम सभी के गाने चलाएंगे तो ये जो घंटा है काफ़ी नहीं होगा, फिर भी आपके प्यार के लिए। और जब समय समय पर हम चला पाएंगे तो चलाएंगे ऑफकोर्स। तो नीता किडनी जी सेंट जूलिया विलेज के, तो बस ये गाना आपके लिए, ठीक है, और सभी खेतनी परिवार के लिए। साथ में बेलवेदिया के हैं, नहीं उर्मिला हैं लिस्कालिए से, ये गाना आपके लिए और साथ में उनके सभी भाइयों के लिए।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: 15 अगस्त, हाँ जी, हम जानते हैं सभी से बहुत लोग अपना बर्थडे मना रहे हैं। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे टू यू ऑल। खास डेडिकेशन है, बर्थडे विशेज है, लक्ष्मी बॉम्बू से गाना वो मांग रही हैं बर्थडे पर। उनकी बहन है जया, उनका बर्थडे है। दो बेटे और पति धनराज, और ननद है जयश्री, उनका भी बर्थडे है। दो बेटे हैं किशन और कमलेश, पति हैं दीनू। सभी परिवार के लिए शुभकामनाएं भेज रही हैं लक्ष्मी जी। साथ में यहाँ पर है सुनीता कांगोब, हैप्पी बर्थडे टू संता जी। उनके जो बेटे हैं आशले, हाँ जी, यशिनी है, दामाद है।

हाँ जी, सुनम, नील, उनकी नातिन है सत्यम, भाई बहन और सभी के लिए ये गाना क्या कहना। और इससे पहले जो गाना हमने चलाया, फिर मिलोगे कभी, इस बात का वादा कर लो, हरीश बाबू बुबासन के, उनके नाम जाता है। मिलेंगे ना कल फिर से 12 बजे से 3 बजे तक RM Free रेडियो मनोरंजन पर सुहाना सफर प्रोग्राम के दौरान।

हमको हमी से चुरा लो, मोहब्बत फिल्म का गाना है और ये गाना जाएगा सुचिता के बर्थडे के अवसर पर है। हाँ जी, हाँ, सुचिता, पूर्णिमा कुसुमोहन और पिचिझिली सभी भाई बहनों की ओर से, भाभियों की ओर से, कुसुमोहन परिवार की ओर से रवेज पुस्के। साथ में है वेडिंग एनिवर्सरी ऑफ जाहिर एंड शर्मीन, चेड्यू ऑफ थ्रुडोडस, मामा पापा, सिस्टर इन लॉ, नानी और चेडी फैमिली की ओर से। साथ में है वो है फातिमा ऑफ न्यू कोव, ये गाना आप सभी के लिए पेश मांग रही है। और ऐसे में ये गाना होगा हमारे इस प्रोग्राम का आखिरी गाना। वैसे कहते हैं ना, म्यूज़िक का सफ़र कहाँ रुकता है, एक गाना ख़त्म होता है तो दूसरा इंतज़ार करता है, एक याद ख़त्म होती है तो दूसरी दस्तक देती है, और एक प्रोग्राम ख़त्म होता है तो अगली मुलाकात की उम्मीद जागती है। तो कल मिलेंगे 12 बजे और एम फ्री रेडियो मनोरंजन पर। और सभी लिसनर्स का दिल से शुक्रिया आपकी फरमाइशों के लिए, आपकी मैसेजेस के लिए, आपके प्यार के लिए और सबसे बढ़कर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और बस आज के लिए इजाज़त दीजिए, हमारे बाद

तो 4 बजे आप सुन पाएंगे साहित्य दर्पण, वो होगा प्रस्तुतिकरण डॉक्टर श्रीमती अलका दंपत। तो वैसे हमारे सभी प्रोग्राम जो हैं दिलचस्प हैं, आप सुनते रहिए, फिर मिलते हैं। हैव ए नाइस टुडे, एंजॉय दिस डे, और साथ में फिर मिलते हैं कल। तब तक के लिए लव्स ऑफ लव, लव यू ऑल।

0: सेख का सदा स्वागत होता है। साहित्य में छुपा गुड़ रहस्य होता है, क्योंकि साहित्य सबका आईना होता है। साहित्य दर्पण, ये साप्ताहिक साहित्यिक कार्यक्रम लेकर आ रही है अलका धनपत।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आपने बहुत प्यारे प्यारे गीत देवीना के साथ सुने और आपकी पसंद के सब गीत, खूब आनंद आपने लिया। तो चलिए आप थोड़ा सा वैचारिक पृष्ठभूमि की ओर चलते हैं। श्रोताओं, साहित्य दर्पण में हम सभी जानते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, और ये जो दर्पण है समाज का, वह लेखक के साथ चलता है। लेखक अपनी रचनाओं को लिखता है और समाज के सामने उन्हें प्रस्तुत करता है, और जब ये रचनाएं उसके सामने आती हैं और हम जब उसको पढ़ते हैं, तब हम जो कुछ समाज में हो रहा होता है उसे जानने का प्रयास करते हैं। आज हम एक शब्द लेकर चलेंगे, आज़ादी या स्वतंत्रता। इस गीत के बाद आपके साथ हम जुड़ेंगे।
2: नफरत

0: श्रोताओं, देश को बचाना, आज़ाद करवा लेना और फिर उसके बाद उसको खड़ा करना और लगातार उसको विकसित करना, ये बहुत बड़ी चुनौती होती है। लेकिन आज़ादी सबसे पहले चाहिए, और आज़ादी किसको नहीं चाहिए। अरे कल एक चिड़िया को बिल्ली ने पंजा मार दिया, चिड़िया थोड़ी सी घायल हो गई। अब मैं चाहती थी उसको थोड़ा पकड़ कर पानी या उसको धो दूँ ज़ख्म या कोई दवा लगा सकूँ। उसको पकड़ने में जितनी मशक्क़त करनी पड़ी और वह लगातार चिल्ला रही है, काटना चाहती है। मन में सोच रही हूँ, देखो इसके प्राण जाने हैं, बिल्ली फिर से आ सकती है क्योंकि ये अभी उड़ नहीं पा रही, लेकिन वह पकड़ने से बचना चाहती है। वह नहीं समझ पा रही कि मैं उसे बचाना चाहती हूँ। देखिए, आज़ादी या स्वतंत्रता कितनी प्यारी चीज़ होती है। जब तक हमें कोई कुछ कहता नहीं तो घर बड़ा अच्छा लगता है, हम चाहे घंटों एक सीट पर बैठ जाएं। लेकिन जैसे ही अगर कोई हमें ये कह दे, श्रोताओं, कि आप यहाँ से 4 घंटे से पहले नहीं उठेंगे, आप देखिए आधे घंटे के बाद ही आपके दिमाग के घोड़े इस बात का ताना बाना बुनने लगेंगे कि कैसे उसको चकमा दे के मैं यहाँ से भागूँ। तो आज़ादी ना, जिसे कहते हैं ना जन्मसिद्ध अधिकार, वह हर जीवित प्राणी का है। मेरे साथ तकनीकी सहायक के रूप में यश जुड़े हैं। एक हमें फ़ोन कॉल आ रहा है, लेते हैं। हेलो, हेलो।
1: हाँ बेटी।
0: हाँ नमस्ते नानी जी, कैसी हैं आप?
1: जय मॉरिशस बेटी, तो लोग कभी
0: क्या बात है, जय मॉरिशस और जय हिंद।
1: आज स्वतंत्र दिवस,
0: आज तो दोनों देश त्योहार मना रहे हैं जी।
1: ये भगवान करे कि हर साल इसे मिले ला है
0: जी।
1: अभी एक भारत गान बोला था,
0: जरूर
1: जानब जो बोला में,
0: जरूर नानी जी
1: सब नहीं सका बोले में, जो जानब बोला में
0: जरूर जरूर।
1: मंगल गण जन गण मंगल अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा दाबिर।

0: गंगा विद्या हिमाचल जमुना गंगा उज्ज्वल जलधि तरंगा तब सुभता में जागे तब सुभ आशीष मांगे तब यस गाथा भारत
1: भाग्य विधाता
0: मंगल जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे।
1: वाह नानी, आपने याद दिला दिया कि पुरखे जनगण मन को भी यहाँ लेकर आए थे, क्योंकि जिस कहीं कहीं पर शब्दों को आपने इधर उधर इस्तेमाल किया उससे पता चलता है कि ये चीज़ें थी खून में और वे लेकर आए थे। बहुत धन्यवाद नानी जी, आपकी आवाज़ में चाहे थोड़ा हमने इधर उधर शब्दों को सुना लेकिन बहुत अच्छा लगा। आज का दिन आपके लिए मंगलमय हो। बहुत धन्यवाद नानी जी। चलिए एक और श्रोता को पकड़ते हैं। हेलो
2: हेलो अलका बहन,
1: नमस्कार जी, कैसे हैं
2: जी? बहुत ठीक हूँ और बहुत खुश हूँ आज के दिवस के लिए।
1: क्या बात है,
2: पुण्य दिवस है,
1: बहुत पुण्य सचमुच।
2: पर मैं सभी मॉरिशस वासी भारतवासी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।
1: भारत को आजादी मिली तो मॉरिशस को अभी नहीं मिली थी, लेकिन सबने यहाँ पर उत्सव
2: मनाया था जी, मनाते थे हम पहले।
1: हाँ,
2: जब हमारा देश स्वतंत्र नहीं था।
1: हाँ, तब
2: हम भारत वर्ष का
1: बिल्कुल ये 15 अगस्त जैसे एक सिंबॉलिक था आजादी का।
2: जी जी, तो हम यही मनाते थे तभी से, क्योंकि हमारा तो उनके साथ आत्मा का संबंध है ना।
1: बिल्कुल जी, अगर संस्कृति नहीं रहेगी तो पहचान खत्म हो जाएगी।
2: जी जी, क्योंकि हम भी तो एक तरह से हमारे पूर्वज आए थे तो हम उन्हीं के वंशज है।
1: बिल्कुल,
2: हमारा भी मन बहुत गदगद है आज।
1: हाँ, क्या बात है।
2: क्या बोलती हूँ कि
1: जी,
2: जश्न तो हम मना रहे हैं, सही
1: हाँ।
2: है, लेकिन जश्न के पीछे जितना वो दुख तपस्या है और ये जश्न मनाने का अवसर जो हमें मिला है उनको नहीं भूलना चाहिए हमें।
1: अरे आप अगर अंडमान निकोबार की जेल देखें, लोग उसको कहते थे काले पानी की सजा है।
2: जी जी जी।
1: ओहो हो, उसमें तो नीचे गहरा एकदम अंधेरा जैसे कुआं जैसे।
2: हाँ,
1: कुआं जैसा उसमें बंद कर देते थे। आप सोचो,
2: बहुत उन्होंने बहुत भयंकर यातनाएं सही है।
1: सोचकर आत्मा कांप उठती है कि देश के लिए कितना त्याग किया।
2: जी, हम सुखदेव जी को लें,
1: हाँ,
2: भगत सिंह जी को लें,
1: बिल्कुल,
2: राजगुरु
1: को लें, चंद्रशेखर आजाद,
2: बहुत ऐसे हैं
1: जी,
2: जिनका नाम हम नहीं गिना सकते।
1: जी जी,
2: बहुत है तो, लेकिन फिर भी आज के दिवस में उनको हम श्रद्धा के सुमन चढ़ाते हैं और उन्हीं की वजह से आज जो देश स्वतंत्र हुआ, इतना प्रगति उन्नति कर रहा है, तो ये सब उन्हीं का फल है।
1: ये आजादी का यज्ञ था, एक एक ने संविधान डाली इसमें।
2: हाँ, सबसे देखो, आपने यज्ञ कहा तो मुझे यज्ञ बेटा को भी बहुत बहुत धन्यवाद।
1: हाँ, यज्ञ सोच रहा है कि उसका नाम क्यों ले रहे हैं।
2: जी, उनको बहुत बहुत आशीर्वाद मैं दे रही हूँ,
1: ब्लेसिंग्स। बिल्कुल,
2: मैं क्या बोलती हूँ कि आजादी आप जो है वो तो मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है ना। कोई भी बंधन में नहीं रहना पसंद करता।
1: बिल्कुल,
2: अभी आपने एक छोटा सा प्रसंग सुनाया।
1: जी जी,
2: तो सही है। तो मैं आज इसी के अवसर पर ज्यादा नहीं बोलूँ कि आज के दिन बहुत लोग फोन कर अपना विचार रखना चाहते हैं, तो मैं सिर्फ चार लाइनें जो हमारे मैथिली शरण गुप्त जी है
1: स्वागत
2: उनकी रचना का मैं 8 लाइनें सुनाना चाहती।
1: जरूर, स्वागत है आपका, सुनाइए।
2: भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल जहाँ। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका कि जो ऋषि भूमि है वो कौन, भारत वर्ष।
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर पंक्तियों का चुनाव किया।
2: भारत वर्ष ही संसार का सिरमौर है। हाँ, भारत वृद्ध भारत वर्ष ही संसार का सिरमौर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या कोई और है।
1: बहुत सुंदर चुनाव किया आपने।
2: भगवान की भवभूतियों का यहाँ प्रथम भंडार है, भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है, विधि ने किया नरसिष्टि का पहले यही विस्तार है। तो यही मैं कहूंगी बहन जी, क्योंकि बहुत सारे ये जो पुस्तक है ना भारत भारती,
1: हाँ।
2: ये मेरे दिल के बहुत करीब है और मैं जब पढ़ती थी अध्ययन काल में, मैं परिचय जब करती थी 14 साल की 13 साल की थी, तब से मैं इन कहानियों को इसको मैं

0: बार बार पढ़ती हूँ, तभी से मतलब ये बहुत
1: दिल में बसी हुई है ये कहिए,
0: दिल आत्मा में, दिल को छोड़ो आत्मा में, तभी से भारतवर्ष के विषय में हमने जाना, क्योंकि इस पुस्तक में सारा कुछ कहा गया है उनके विषय में।
1: बहुत धन्यवाद दीना बहन,
0: और जी आपको बहुत बहुत मैं शुभकामनाएं देती हूँ, हम सबको शुभकामनाएं आज के दिवस के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे सुना,
1: मंगल कामनाएं आपको, नमस्कार नमस्कार जी, शुभ संध्या। चलिए एक और श्रोता को ले लेते हैं। हेलो
2: माता जी, जय मॉरिशस माता जी।
1: जय मॉरिशस बहन जी, जय मॉरिशस, कैसी हैं आप?
2: मॉरिशस है देश हमारा, जान से अपने हमको प्यारा।
1: वाह क्या बात है,
2: भारत मेरी माता, भारत महान है हमारी माता।
1: बहुत
2: सिर्फ एक बीच है, हम लोग तो प्लेन से जाते हैं ना, एक बीच कमी है,
1: बीच नहीं एक समुद्र है पूरा।
2: बहुत खुशी की बात है आज स्वतंत्र दिवस, अभिनंदन सभी को,
1: धन्यवाद सबको।
2: हम तो देख रहे हैं लेकिन लग रहा है कि हम इंडिया ही में हैं,
1: क्योंकि जड़े वही है ना,
2: हमारे छोटी इंडिया को सत सत नमन
1: जी, बिल्कुल
2: धन्यवाद,
1: धन्यवाद आप जुड़ी, शुभ दिन आपको। चलिए एक और श्रोता, हेलो हेलो
3: हेलो, नमस्कार जी।
1: नमस्कार, कैसे हैं?
3: मैं ठीक हूँ मेरी प्यारी सी डॉक्टर जी।
1: क्या सुनाएंगी आज आप?
3: यही बोलेंगे कि भारत इतना बड़ा देश, हम लोग तो सुनते हैं भारत ही तो, हम लोग के खून तो दौड़ते हैं।
1: जानती हैं भारत शब्द का अर्थ क्या है? भा मतलब प्रकाश, रत मैंने निमग्न रहने वाला, वह देश जो ज्ञान के प्रकाश की खोज में लगा रहता है।
3: हाँ इतने दुख सुख सब कुछ मैं YouTube में देखती हूँ, कितनी बड़ा, मॉरिशस भी ऐसे ही है।
1: हाँ हाँ, क्योंकि हम ही तो हैं, हम ही वहीं थे, हम ही यहाँ पर हैं।
3: हाँ,
1: तो मॉरिशस भी वैसा ही होगा ना।
3: हाँ ऐसे हम लोग को जीना चाहिए ऐसे ही, देखते हैं कितने दुख है सुख है, लेकिन सबको जी रहे हैं बहुत अच्छी तरह से,
1: बिल्कुल
3: सबको अच्छी तरह से जी रहे हैं। एक आजादी है याद ना, छोटा सा एक दो लाइन
1: गाना सुनाइए सुनाइए।
3: ए मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ

0: कुछ याद हमें भी कर लो, कुछ याद हमें भी कर लो।
1: बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद बहन जी, आप
0: तो
1: जुड़े।
0: बहुत अच्छी लगती है ये गाना, अच्छा लगता है। जो जिस देश में हम लोग के खून तो दौड़ते हैं जब सुनती है, तो कितने ये गाना ही में बहुत चीज है
1: बहुत धन्यवाद, आप
0: बोले।
1: जुड़ी और इतना सुंदर गीत हमको सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए
0: धन्यवाद
1: ओके जी,
0: डॉक्टर,
1: शुभ
0: बहुत
1: दिन,
0: धन्यवाद
1: शुभ
0: डॉक्टर
1: दिन।
0: जी।
1: चलिए एक और श्रोता को लेते हैं। हेलो हेलो,
2: हेलो दीदी, नमस्ते
1: नमस्ते,
2: काली जी, प्रणाम।
1: प्रणाम, कैसी हैं आप?
2: हाँ मैं अच्छी हूँ, और यज
1: हाँ,
2: बेटे को भी मेरा बहुत बहुत शुभ प्रणाम
1: वे
2: और
1: भी आपको
2: आशीर्वाद।
1: नमस्ते दे रहे
2: हाँ
1: हैं।
2: बहुत आशीष बेटे को।
1: जी,
2: आज हम भारत देश का
1: स्वतंत्रता
2: स्वतंत्रता दिवस
1: दिवस।
2: मना
1: जी
2: रहे हैं।
1: जी जी
2: इसकी मैं आपको, सभी को, भारत वालों को, मॉरिशस वासी, हम भी तो छोटे भारत हैं, मैं
1: हाँ,
2: सबको बहुत शुभकामनाएं दे रही हूँ।
1: बहुत धन्यवाद,
2: क्योंकि इस स्वतंत्रता के पीछे कितने बलिदान हुए हैं, कितनी
1: बहुत
2: कुर्बानियां हुई है,
1: सोच नहीं
2: ये वो तो
1: सकते
2: इतिहास।
1: इतने।
2: हाँ वो तो इतिहास साक्षी है,
1: जी,
2: कितनी कुर्बानियां हुई है इस
1: जी
2: स्वतंत्रता मिलने से पहले। अगर आप पढ़ेंगे उसको या कहीं देखेंगे पिक्चर में, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
1: सही कह रही हैं,
2: किस हाँ किस किस सीमा से गुजर कर आज ये झंडा लहरा
1: आजादी
2: रहा
1: मिली है।
2: है,
1: जी
2: आजादी मिली है और खुली हवा में। तो इसको हमें किसी बोलूं सुरक्षित रखना चाहिए, संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि स्वतंत्रता सबका जन्मसिद्ध अधिकार है दीदी।
1: जी
2: देश
1: जी
2: हो, पक्षी हो, जानवर हो, मनुष्य हो,
1: कोई भी हो, आजादी सबको
2: हाँ
1: प्यारी है,
2: सबको प्यारी है।
1: और
2: तो अपने
1: आजकल के
2: देश को
1: बच्चों
2: हमें
1: को तो ज्यादा
2: संभाल,
1: प्यारी है।
2: हाँ जरूरत से ज्यादा ही हो गई है
1: हाँ
2: उनकी आजादी।
1: कभी
2: हाँ इसलिए
1: कभी।
2: तो मैं एक छोटा सा गाना गीता, मैं बचपन में बैठ कर मैं गुरु जी हमें
1: जरूर
2: सिखाते थे, दो
1: सुनाइए,
2: लाइन में बोल
1: जरूर
2: देती हूँ।
1: जरूर सुनाइए।
2: बुंदेले हर बोलों की मोह हमने सुनी कहानी थी, खूब
1: खूबी
2: लड़ी
1: नी मर्दानी,
2: मर्दानी
1: मैं
2: वो
1: तो
2: तो
1: झांसी
2: झांसी वाली
1: वाली
2: रानी।
1: रा

0: मातरम वंदे है, उस वंदना करते हैं हम उस
1: अपनी
0: भारत भूमि को,
1: मातृभूमि की, बिल्कुल
0: मातृभूमि, क्योंकि हमारे पूर्वज भी तो वहीं से आए ना,
1: जी
0: हमारा
1: जी
0: भी
1: वो
0: लहू वहीं
1: संस्कृति
0: का है,
1: संस्कार सब वहीं के ही हैं,
0: सब कुछ वहीं का है।
1: बिल्कुल
0: बहुत बहुत शत शत कोटि प्रणाम धन्यवाद आपको जो आपने इस देश पर कुछ रखा, और
1: बहुत
0: सभी को
1: धन्यवाद
0: अपने देश से प्रेम जरूर करना चाहिए,
1: जी जी
0: उसमें
1: बिल्कुल
0: श्रद्धा
1: करना
0: होनी
1: चाहिए,
0: चाहिए।
1: क्योंकि
0: जी
1: हम अपने देश की मिट्टी, हवा, पानी सब
0: हाँ
1: लेते हैं, तो
0: हाँ
1: उसका
0: हमें गर्व भी
1: कर्जा
0: होना
1: चुकाना है,
0: चाहिए,
1: बिल्कुल।
0: हमें गर्व भी होना चाहिए कि हम उस देश के वासी
1: हाँ
0: हैं। ठीक,
1: जी जी बहुत धन्यवाद
0: धन्यवाद
1: बहन जी,
0: दीदी,
1: आप
0: शुभ
1: हमारे साथ
0: संध्या
1: जुड़ी,
0: आपको
1: आपको भी
0: भी।
1: शुभ
0: हाँ
1: संध्या। श्रोताओं, एक पहचान होती है आज़ादी की, देश की, संस्कृति की, संस्कारों की। देखिए आज भी विवाह के समय हम अग्नि के चारों फेर लगाते हैं, यज्ञ करते, अग्नि देवता की पूजा करते हैं, हमारे घरों के द्वार पर ध्वजा लगी है, महावीर की प्रतिमा लगी है। अगर ये सारी चीज़ें उड़ जाएं तो हमारी पहचान क्या होगी, हम कौन हैं, कहाँ से हैं, किस संस्कृति के हैं, किन विचारों के हैं, किस तरह की जड़ें हैं हमारी, बता ना पाएंगे, और हवाएं हमको उड़ा कर ले जाएंगी। इसलिए जिस देश के पास इतनी पुरातन संस्कृति है, आज 8,000 साल हो गए वैदिक संस्कृति को, श्रोताओं हम उस पर गर्व कर सकते हैं। आज उसी मिट्टी का स्वतंत्रता दिवस है, और हमारी परंपरा हमारे गुरुओं ने ऐसे ही जिंदा रखी थी। तो चलिए एक और श्रोता को लेते हैं। हेलो हेलो,
2: हेलो, नमस्ते बहन जी।
1: नमस्कार जी, कैसे हैं भाई साहब?
2: मैं तो ठीक हूँ, मैं हूँ धनेश्वर चौबा झवेर से।
1: क्या बात है, सुनाइए आज क्या सुनाएंगे?
2: तो आपके विषय में कुछ सुनाऊंगा।
1: सुनाइए।
2: तो जय भारत जय मॉरिशस। तो लंबा नहीं करूंगा
1: जी
2: उसको,
1: जी
2: थोड़ा सा निकालूंगा।
1: ओके सुनाइए।

शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा तारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गंवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, दो लौट के घर न आए।

लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए है उनकी जरा याद करो।

जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं।

0: बहुत धन्यवाद धनेश्वर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप तो देश के प्रेम में बह ही गए, और इतना सुंदर गाना आपने सुनाया कि मैं उसे रोकना नहीं चाहती थी, लेकिन हमारे साथ लाइन पर और भी बहुत लोग जुड़े हुए हैं। खैर, बहुत बहुत सुंदर और बहुत धन्यवाद, आपका ये प्रेम सदा ऐसे ही बुलंद रहे। चलिए हम एक और श्रोता को लेते हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो
1: हेलो
0: हेलो,
1: हेलो, नमस्कार। मैं
0: नमस्कार, कैसी हैं?
1: हूँ बसंती, मैं ठीक हूँ
0: हाँ,
1: जी।
0: सुना
1: तो
0: जी,
1: मैं
0: बोलिए
1: शुरू करती हूँ।
0: जी।
1: ये दो अलग अलग हैं, लेकिन दो दो तीन तीन लाइन में
0: बहुत सुंदर, क्योंकि और
1: दोनों
0: लोग भी लाइन पर हैं।
1: जी।
0: हाँ
1: 3 मिनट मिलेगा ना?
0: हाँ
1: तीन
0: 3 मिनट,
1: मिनट
0: 2 मिनट में कोशिश करिए, ठीक है?
1: अच्छा,
0: चलिए
1: ठीक
0: बोलिए
1: है।
0: बोलिए।
1: दीदी हमें आजादी तो बिना खदेड़ बिना डाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड्ड बिना डाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आंधी में भी जलते रही गांधी तेरी मशाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। धरती पे लड़ी तूने अजब ढंग की लड़ाई, त्यागी ने कहीं तो अपन बंदूक चलाई। और दूसरा ये है,
0: जी
1: ये चमन हमारा ये अपना है, इस देश पे अपना राज है। मत कहो कि सर पे टोपी है, ये कहो कि सर पे ताज है। ये चमन हमारा ये अपना है, आते थे एक दिवाली, बरसों में कभी खुशहाली, अब तो हर इतवार एक त्योहार है। ये उभरता संवरता समाज है, ये चमन हमारा अपना है, ये देश मेरा अपना है, इस पे न सर पे ताज है ना
0: बहुत सुंदर,
1: सर पे। मैं
0: बहुत
1: समाप्त करती हूँ, औरों के मौका दिए
0: जी
1: जाए।
0: बिल्कुल
1: जी
0: बिल्कुल, बहुत
1: जी
0: धन्यवाद।
1: जी
0: चलिए हम अपने एक और श्रोता को लेते हैं। हेलो,
1: हाँ बहन जी नमस्ते।
0: नमस्ते, कैसी हैं बहन जी? अरे
1: अच्छी हूँ बहन जी, व्यस्त रहती हूँ, बहुत काम है घर में।
0: बहुत अच्छी बात है, जिंदगी में काम हो रहा हम कर सकें, इससे बड़ी खुशनसीबी क्या है।
1: हाँ बहन जी,
0: पूछिए
1: अगर हाथ पाँव
0: उनसे,
1: सही सलामत है ना।
0: हाँ पूछिए उनसे जो कुछ नहीं कर पा रहे, कितना अकुलाते हैं बिस्तर पर या व्हील चेयर पर बैठे हुए। ये
1: हाँ
0: तो
1: बहन।
0: शुक्र

0: है मेरा, जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता है डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा।
1: बहुत
0: जय भारत, जय भारत। तो बहन जी, हमारी ओर से सभी भारतीय वंशजों को स्वतंत्रता दिवस अभिनंदन हो।
1: बहुत धन्यवाद बहन जी।
0: हाँ बहन जी, और उन महान आत्माओं को शत शत नमन है, उन वीरों को बहन जी शत शत नमन है, और क्या कहते हैं, श्रद्धांजलि है बहन जी।
1: बहुत धन्यवाद बहन
0: जी। जो भारत भूमि है ना बहन जी, क्या तपस्या और बलिदान की भूमि है बहन जी। हाँ बहन जी,
1: बहन जी संस्कृतियां ऐसे नहीं खड़ी होती हैं
0: ना।
1: बहुत
0: अच्छा, आपने अच्छा कहा बहन जी। आप लोगों से कैसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम जिस समय भारत वर्ष का ये राष्ट्रीय ध्वज लहराया गया था ना बहन जी, जब भारत वर्ष आजाद हुआ, मैं 4 साल की थी बहन जी।
1: क्या बात है।
0: हाँ बहन जी, मुझे रग रग पता है। मेरे पिताजी मुझे सब कुछ सिखाते थे, करते थे। और उस समय बहन जी आपको पता है, हमारे देश में आम छुट्टी का दिन हुआ करता था।
1: हाँ, जब तक यहाँ आजादी नहीं मिली थी तब तक मानो वो आजादी यहीं की आजादी थी।
0: हाँ, तो आम छुट्टी का दिन हुआ करता था, बैठकाओं में यज होता था और जुलूस निकालते थे बहन
1: जी,
0: और जन गण मन का नारा लगाते थे बहन जी।
1: बहुत धन्यवाद बहन जी, ये अनुभव बांटने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए एक और श्रोता को लेते हैं। हेलो हेलो हेलो
2: हेलो, जय हिंद बहन जी।
1: जय हिंद आशा जी, कैसी हैं?
2: मैं अच्छी हूँ, और आप कैसी हैं?
1: बढ़िया। आप सुनाइए, क्या सुनाएंगी आज?
2: तो समस्त देशवासियों को वंदे मातरम कहते हुए एक छोटी सी कविता आपने लिखी हुई सुनाना
1: जरूर। आप तो कवियत्री हैं, जरूर सुनाइए।
2: भारत देश है महान, बना तिरंगा इसकी शान, स्वतंत्र राष्ट्र फूले फले मुस्काए, जिसके लिए वीरों ने दी अपनी जान, जिसके लिए वीरों ने दी अपनी जान, भारत देश है महान। जो लेता है तिरंगा सीना आसमान का, जब आता है दिन 15 अगस्त का, गूंज उठता है वंदे मातरम का नारा, गूंज उठता है वंदे मातरम का नारा, गर्वाहित हो जाता है मस्तक हर देशवासी का। भाव देश प्रेम का लिए मिलकर गाएं राष्ट्रगान, भाव देश प्रेम का लिए मिलकर गाएं राष्ट्रगान, भारत देश है महान। जहाँ से निकली संस्कृति की सरोवर, जहाँ से मिली सभ्यता की धरोहर, जहाँ से हो गंगा जमुना सरस्वती का संगम, भारत भाषी से बही हिंदी भाषा की गागर, जहाँ से हरिद्वार काशी का हो तीर्थ स्थान, जहाँ से हरिद्वार काशी का हो तीर्थ स्थान, भारत देश है महान। धन्य है भारत देश, यहाँ से मिलता है एकता का संदेश, इबादत होती है अल्लाह करीम की, पूजे जाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, रघुवंशों की मर्यादा यदुवंशों की कर्म की गाथा ज्ञान, रघुवंशों की मर्यादा यदुवंशों की कर्म गाथा ज्ञान, भारत देश है महान, भारत देश है महान।
1: बहुत धन्यवाद आशा जी सुंदर कविता के लिए। आप सदैव लिखती रहें, बस हम यही आपसे आशा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। चलिए एक और श्रोता को लेते हैं, जरा क्या कहना चाहते हैं वे हमें। हेलो,
3: शुभ नमस्कार बहन जी।
1: नमस्कार जी, सब घर में सब परिवार ठीक ठाक चल रहा है?
3: ईश्वर की कृपा है, हम लड़ रहे हैं,
1: लड़ रहे हैं, गाड़ी चल रही है, हर पल लड़ाई है।
3: हम सभी लोग खुशी चाहते हैं
1: जी, जी,
3: और अच्छा स्वस्थ चाहते हैं, तो लड़ना चाहिए
1: हर पल। खाना खाना है तो अपनी जीभ के स्वाद से लड़ेंगे, बात करनी है तो पालाप से लड़ेंगे, अगर अच्छा बनना है तो लड़ना पड़ेगा।
3: लेकिन ईश्वर को
1: धन्यवाद,
3: बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी जी, मदद करता है, वो मदद करता है
3: और वो

0: उसी वेश में भी आ जाते हैं।
1: हाँ, ये तो सच बात है
0: बहन जी। और यश भी सादर से प्रेम नमस्ते।
1: हाँ, यश अभी की दूसरे स्टेशन पर चले गए, वहाँ न्यूज के लिए गए हैं वे।
0: अच्छा, तो फिर भी उनका नाम सुना था।
1: हाँ, अभी
0: तो
1: आएंगे जी।
0: और सबसे पहले
1: जी
0: जय मॉरिशस जय हिंदुस्तान।
1: आपको भी जय मॉरिशस जय हिंद।
0: और कहूंगा मॉरिशस में बसे सभी भारतीयों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाइयां हैं और शुभकामनाएं।
1: आपकी इन बधाइयों को हमने अपनी झोली में लिया, बहुत धन्यवाद।
0: बहुत धन्यवाद आपको भी बहन जी। आपने नानी, नानी का नाम मैं तो भूल गया।
1: अरे हाँ, मैं तो नानी जी ही कहती हूँ, नाम मुझे भी नहीं मालूम।
0: नहीं, लेकिन अभी अपना नाम बोल देते, लेकिन याद नहीं आ रही है।
1: मेरे लिए तो वो बड़ी हैं, और जानते हैं उनके पास धरोहर का पिटारा बहुत है। मतलब वो ऐसे ऐसे गीत और चीजें लेकर आती हैं कि दिल खुश होता है कि देखो ये एक धरोहर के रूप में हमारे पास है।
0: अभी से अभी तक सब कुछ याद करती है।
1: हाँ, देखिए जनगण मन उन्होंने मतलब पुरखे जैसे याद करके आए होंगे, उनको उसी तरह से याद है, लेकिन उसका भी एक अलग आनंद है।
0: और एक बार उन्हें कहा था, नवीन जी आप लिखते हैं मैं पढ़ता हूँ।
1: अच्छा, क्या बात है।
0: अयोध्या में उनको, वो अभी तक अयोध्या पढ़ती है।
1: अच्छा, बहुत बढ़िया, तभी नए नए भजन सीखती हैं, मंदिर जाती हैं, सत्संग में जाती हैं, तो अच्छी बात है।
0: बहन जी आते हैं विषय पे।
1: जरूर।
0: तो आपने कहा था नानी से आज दोनों देश मना रहे हैं।
1: जी,
0: बहुत बहुत सही बात आपने कहा कही। और जब भारतवर्ष को स्वतंत्रता मिली थी तब हम मॉरिशस प्रतंत्र था।
1: बिल्कुल उस समय, क्योंकि यहाँ तो 1968 में मिली ना।
0: लेकिन हम मनाते थे बड़े जोश।
1: नहीं तो पहचान ही वहाँ से थी।
0: हाँ, यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि दोनों मॉरिशस और भारत
1: जी
0: का गहरा संबंध है, इसलिए लघु भारत कहते हैं।
1: हाँ।
0: और जोड़ूंगा कि यह इसलिए है कि हमारी जड़ वहीं से है।
1: जी बिल्कुल, पहचान।
0: हाँ, पहचान तो वहीं से है। तो सांस्कृतिक संदेश में गहरी समानताएं देखने को भी मिलती है।
1: जी,
0: इसी हेतु आज दोनों देश मना रहे हैं, जैसे आपने कहा। और आएंगे आप राष्ट्रगान पे। राष्ट्रगान में मैं भी एक दूसरे, ये दोनों देशों का जो राष्ट्रगान है एक दूसरे से मेल खाते हैं।
1: जी,
0: देखिए जन गण मन जो हमने बचपन में सीखा था, अभी तक मुझे याद है। जन गण में भारत भूमि को नमन किया गया है।
1: जी,
0: वंदे मातरम भी है, एक
1: मातृभूमि को नमन है
0: ना, मातृभूमि को नमन है। हाँ, वंदना करते हैं,
1: वंदना करते हैं, बिल्कुल।
0: और यहाँ मॉरिशस में हम अपने राष्ट्रगान में मदरलैंड,
1: वही बात,
0: मातृभूमि, वही शब्द है।
1: जी जी,
0: जो एकदम समानांतर है। मॉरिशस को लघु भारत कहना सुसंगत है। यहाँ पर भारतीयता कूट कूट कर भरी है।
1: जी जी।
0: और एक मजेदार बात कहना चाहूंगा। जब मैं जन गण मन सुनता हूँ और गाता भी हूँ, तो यहाँ पर मुझे किसी भी देश के राष्ट्रीय गान में विभिन्न क्षेत्रों का नाम नहीं सुना है, कभी नहीं सुना है। देखिए वो बोलते हैं इसमें, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा डाविल उत्कल बंगा,
1: पूरा भारत का नक्शा है,
0: पूरा भारत का नक्शा, विभिन्न प्रांतों या धर्मों सभी लोगों को एक साथ मिलाकर एक राष्ट्र बन गया।
1: अगर हम नक्शा सामने रख लें तो वो यात्रा पूरे स्टेट्स की है।
0: जी,
1: उच्छल जलधि तरंग, अब पूरा समुद्र जो घेरे हुए है तीन तरफ से भारत को, उसका चित्र खड़ा करता है कवि, पूरा भारत का मैप है उसमें।
0: महत्वपूर्ण है बहन जी, क्योंकि एकता में ये अनेकता में एकता है। यही संदेश हमको मिलता है। आपने हमको मुझे दिया एक दो बात कहने को, बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे छोटी सी।
1: मैं आपकी धन्यवादी हूँ कि इतनी प्यारी प्यारी बातें आपने की, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार जी। चलिए श्रोताओं, एक और श्रोता को भी ले लेते हैं। हेलो।
2: हेलो, नमस्कार डॉक्टर जी।
1: नमस्ते भाई साहब।
2: जी, मैं धनी हूँ। डॉक्टर जी।
1: जी,
2: पहले बोलूंगा मैं तो बहुत बोलना नहीं जानता। तो
1: देखिए
2: बोलूंगा कि
1: भाव की बात है।

0: बोलने में
1: हिंदुस्तान
0: क्या,
1: स्वतंत्रता दिवस अभिनंदन
0: बहुत धन्यवाद, आपने
1: जी।
0: इतने सुंदर शब्द
1: कर
0: बोल
1: चले
0: दिए।
1: हम फिदा जानो तन साथियों। डॉक्टर जी,
0: अब
1: जिंदा
0: तुम्हारे
1: रहने का
0: हवाले।
1: मौसम बहुत है मगर, जिंदा रहने का मौसम बहुत है मगर, जान देने की रूट रोज आती
0: ती
1: नहीं।
0: नहीं, सही कह रहे हैं, बिल्कुल
1: जी,
0: सही कह रहे हैं। देश के
1: ये
0: लिए
1: बहुत
0: मरना।
1: बहुत बड़ा दिल वाला होना चाहिए बंदूक उठाकर दुश्मनों को मारना,
0: मारना और खुद गोली खा के लड़ना।
1: जी, अपने देश के लिए, अपनी
0: जी,
1: आजादी के लिए,
0: इस
1: अपने
0: देश
1: हक
0: में
1: के लिए।
0: ऐसे ऐसे सिपाही हुए हैं या
1: जी
0: आर्मी में व्यक्ति हैं
1: जी
0: जिनके पैर कट गया, हाथ कट गया,
1: जी
0: अपने
1: जी
0: मुंह में बंदूक पकड़ के उन्होंने मुकाबला किया।
1: जी
0: आप सोचिए
1: तो
0: देश के
1: ये
0: प्रति क्या जज्बा रहा होगा।
1: जी बड़े दिल वाला होना चाहिए।
0: जी जी बिल्कुल,
1: धन्यवाद डॉक्टर जी।
0: बहुत धन्यवाद धनी जी, आज के शुभ दिन की आपने शुभकामनाएं हमें
1: जी
0: दी।
1: धन्यवाद।
0: धन्यवाद, शुभ दिन। तो श्रोताओं, सचमुच ये जो राष्ट्र प्रेम है ये व्यक्ति को सरोबार कर देता है। अगर आपके अंदर ईमानदारी है, और होनी भी चाहिए, अगर राष्ट्र के प्रति ईमानदार नहीं तो हमसे बड़ा दगाबाज कौन है। क्योंकि जिस मिट्टी से अन्न, जल, हवा, मतलब जीने की हर चीज़ की वजह जो मिट्टी है, आज हवा ये अच्छी ख़त्म हो जाए, नदियों का पानी दूषित हो जाए, कैसे जी सकेंगे। ये उपज यही तो हमें ज़िंदा रखती है, यहाँ तक कि हमारी अपनी माँ से भी पहले अपनी जन्मभूमि है, क्योंकि हमारी माँ को भी यह मिट्टी ही जीवन देती है। इसीलिए श्रोताओं, राष्ट्र का प्रेम या राष्ट्र का स्वतंत्रता दिवस याद दिलाता है कि आज़ादी का बहुत महत्व है। तो चलिए अभी इसी शब्द को लेके और बातचीत करेंगे, तब तक आपसे अभी मिलते हैं हम।
2: सीख का सदा स्वागत होता है, साहित्य में छुपा गुड़ रहस्य होता है, क्योंकि साहित्य सबका आईना होता है। साहित्य दर्पण, ये साप्ताहिक साहित्यिक कार्यक्रम लेकर आ रही है

0: श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं आजादी की, और अभी हमने उस गाने की पंक्तियां सुनी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। आप सभी को पता होगा ये कविता किसने लिखी थी, सुभद्रा कुमारी चौहान ने। बड़ी छोटी उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी, अभी 44 साल की थी तो बस स्वर्गवासी हो गई। लेकिन अपने 44 साल की आयु में यह लड़की अभी युवावस्था में, किशोरावस्था में थी, तभी से ही देश के लिए लड़ रही थी, आंदोलनों में भाग लेती थी और महादेवी वर्मा की बहुत अच्छी दोस्त थी। और कहती थी, जब मैं मरूं तो मैं चाहती हूं कि मेरी एक समाधि हो, उस पर मेले लगें, बच्चे आएं और सब बड़े खुश हों। उनके पति लक्ष्मण प्रसाद भी देशभक्त थे। आपको आश्चर्य होगा कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जब विवाह हो रहा था, उसी समय पुलिस उनको पकड़ने के लिए आ गई। अभी अग्नि के 7 फेरे पूरे नहीं हुए थे, केवल 3 या 4 ही फेरे हुए थे, और पुलिस ने कहा कि आपके नाम वारंट है, दोनों पति पत्नी देश के लिए कार्य करते हो। सुभद्रा कुमारी और लक्ष्मण जी ने कहा, बड़ी अच्छी बात है, आप हम आपके साथ चलेंगे, बाकी के फेरे जेल में लिए जाएंगे। दूसरे दिन उनकी सखी ने पूछा, सुभद्रा कैसा रहा जेल का अनुभव? उसने कहा, बहुत अच्छा था। घर पर होती तो बिस्तर पर लेटती, वहाँ पर तो पुष्पों की शैया थी, क्योंकि इतने लोगों ने उनको हार दिए, माला पहनाई, कि इतने पुष्प उनके जेल के कक्ष में हो गए कि उन्होंने कहा, जानती हो, आज की रात तो मैं पुष्पों पर सोई थी। तो श्रोताओं, देशभक्त हर कठिन परिस्थितियों में भी कुछ नया खोज लेते हैं। वीर सावरकर को अंडमान निकोबार जेल में बंद कर दिया गया, उन्होंने कितनी बार प्रयास किया कि वे तैर कर देश तक वापिस आ सकें और देश की सेवा कर सकें। पंजाबी के कवि कहते थे, हमको तुम काले पानी की सजा मत देना, इससे तो अच्छा है कि मौत की फांसी की सजा दे देना, ताकि हम फिर से नया जन्म लेकर अपनी आज़ादी के लिए लड़ सकें। लेकिन अगर काले पानी की सजा दे दोगे तो ये जन्म हमारा बेकार हो जाएगा। तो श्रोताओं, ये तड़प थी उस समय के रचनाकारों में, उस समय के देश प्रेमियों में। तो ये जो झांसी की रानी कविता सुभद्रा कुमारी चौहान ने जो लिखी, ये कविता उस समय के आंदोलन, उस समय के जुलूसों में गाई जाती थी। कांग्रेस के जब अधिवेशन होते थे तो लोग कहते थे, इस कविता का पाठ किया जाए। और कविता सचमुच लोगों को जगाने वाली थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अंग्रेजों ने अपने इतिहास में लिखा कि अपने ऐतिहासिक जीवन में, ऐतिहासिक तथ्यों में उन्होंने ऐसी स्त्री को कभी नहीं देखा जो इतनी छोटी उम्र में इतने मर्दों पर भी भारी पड़ सकती है। तो श्रोताओं, और उसने कहा था, जीते जी मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, और जीते जी अंग्रेज मुझे हाथ नहीं लगा सकते, और सचमुच ये बात पूरी हुई। तो श्रोताओं, ये जो कवि थे, इनके अंदर जो तड़प थी आज़ादी की, वो तड़प उनकी रचनाओं में हमको दिखती है। इसके बाद हम एक और रचना की चर्चा करेंगे, तब तक आप इस गीत को सुनिए।
1: जो शब्दों से

0: श्रोताओं, 1857 का जो संघर्ष था, यदि आप मॉरिशस के MGI के संग्रहालय में जाके चार्ट देखें तो 1857 में भारत से मॉरिशस आने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है, क्योंकि 1857 का जो गदर हुआ, जो विद्रोह हुआ, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को भी छोड़ के जाना पड़ा, पर चतुराई की उन्होंने रानी विक्टोरिया को सब अधिकार दे के और भारतीयों को भुलावे में डाला कि अब तुम्हारे अच्छे दिन आएंगे, लेकिन 5 साल में ही लोगों को दिखने लगा कि वो अच्छे दिन सब दूर के ही खिलौने थे। लेकिन 1857 में इतना अत्याचार गाँवों में लोगों पर हुआ कि आप जब संख्या देखते हैं आश्चर्य होता है कि एजेंटों ने उस मजबूरी का कितना फ़ायदा उठाया था। और सचमुच ये एक सैनिक विद्रोह था, एक गदर था, और इस तरह के गदर बहुत देशों में हुए। 1905 में रूस में हुआ, 1911 में चीन में क्रांति हुई, और जो 1857 में जो भारत में हुआ, उसके बाद 1947 तक कहते हैं कि अंग्रेज़ लोग चैन की नींद सो नहीं पाए। तो चलिए श्रोताओं, एक श्रोता को लेते हैं जो शायद हमसे जुड़ना चाहते हैं। हेलो, हेलो,
1: नमस्कार जी।
0: नमस्कार, कैसे हैं भाई साहब? बहुत दिनों बाद आपकी आवाज़ सुनाई दी जगेसर जी।
1: हाँ, चलो आज मौका हाथ लग गया।
0: चलिए, बहुत बढ़िया, सुनाइए।
1: तो भारत के सभी जनता को और भारतीय प्रवासियों के सभी वंशजों को जी भारत की स्वतंत्रता दिवस की अभिनंदन।
0: बहुत धन्यवाद आपको
1: बहन जी।
0: जी,
1: आज़ादी के बाद भारत को बचाए रखने के लिए हमेशा संदेश दिए जाते हैं।
0: हाँ हाँ,
1: जो अब तक जारी है,
0: ये रहेंगे जी, क्योंकि कुछ लोग नहीं समझते, कुछ हाँ, लोग इस आजादी तो, की कीमत को बेच डालते हैं,
1: हाँ,
0: तो बार बार वो इंजेक्ट करना पड़ता है।
1: हाँ, वर्तमान में कुछ ऐसी परिस्थिति को देखते हुए मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं।
0: बस कुछ पंक्तियाँ,
1: इजाजत हो तो मैं थोड़ा
0: मैं जरूर सुनूंगी, लेकिन थोड़ा, क्योंकि एक और व्यक्ति भी लाइन पर है जी, सुनाइए।
1: तुझे अपने
0: जी,
1: तुझे अपने दिल में नहीं, तुझे प्यार करते हैं हम ए श्री मोदी, तुझे अपने दिल में बसाए हुए हैं, तेरा नाम ले ले के जीते रहे हैं, तेरा नाम ले ले के मरते रहेंगे, तुझे प्यार करते हैं ए हम श्री मोदी, तुझे अपने दिल में बसाए हुए हैं।
0: बहुत धन्यवाद जगेसर जी।
1: किया
0: बहुत
1: तूने जो वो मुमकिन नहीं था, किया तूने जो वो बहुत जरूरी था, करके तूने ऐसा भारत को आगे बढ़ाया, के कर्म को तेरा दुनिया ने सहारा, तुझे प्यार करते हैं ए हम श्री मोदी, तुझे अपने दिल में बसाए हुए
0: हैं। बहुत धन्यवाद जगेसर जी, बहुत प्यारी पंक्तियां आपने सुनाई, और सचमुच आपकी कविता को बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता, चलते चलते शायद उनका कट गया और समय भाग रहा है, शायद हम उनका ले भी ना पाएंगे। तो श्रोताओं, बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो आज़ादी है ना, इसकी कीमत बहुत चुकानी पड़ती है, इसलिए नई पीढ़ी को ये एहसास बताना कि किसी भी देश, आज़ाद देश में आज़ाद नागरिक होकर पैदा होना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी नियामत है, आशीर्वाद है मनुष्यता का, क्योंकि मानवता कभी किसी का बंधन स्वीकार नहीं करती है। एक छोटी चींटी भी कहीं अटक जाए तो तड़पती है, तो हम और आप तो इतना विवेक रखते हैं। जंगल के जानवर जंगल में रहते हैं, लेकिन उनको आज़ादी प्रिय है, पिंजरे में जब कोई उनको डालता है या सर्कस में लेकर जाता है, ये उनके ऊपर एक अत्याचार होता है। ऐसे ही बच्चों को देखिए, पूरे विश्व में शिक्षा के क्षेत्र में भी ये बात है कि कम से कम 14-15 साल तक हर बच्चे को स्कूल जाने का हक है, उसे वो पढ़ने का, अपने मित्रों में रहने का, समाज में जीने का अवसर मिलना चाहिए। वह चाहे होशियार है या मान लीजिए उसका IQ कम है, लेकिन उसके लिए 14 वर्ष तक स्कूल अनिवार्य होना

होना चाहिए, उसे किसी काम में या टेक्निकल चीज़ में इतनी छोटी उम्र में नहीं डालना चाहिए। तो ये सब वही आज़ादी की विस्तृत परिभाषाएं हैं। तो श्रोताओं, ये जो आज़ादी है ना, स्वतंत्रता, अपने तंत्र में रहना, तो अपना तंत्र कैसा है जिसमें किसी दूसरे को नुकसान ना हो। अगर मैं कहूँ कि मेरी आज़ादी है, मैं तो बोतल पीना चाहती हूँ, मैंने पैसा कमाया है, ये आज़ादी नहीं। क्यों? क्योंकि आप समाज के प्रति जिम्मेवार हैं, आपको समाज ने बड़ा किया है, आप समाज में नौकरी कर रहे हैं, आपको समाज ने पढ़ाया है, आपको समाज ने ट्रांसपोर्ट दिया, सड़क दी, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि मेरा जीवन मेरा है? आपका अकेला नहीं है, क्योंकि आप एक काल कोठरी में नहीं रहते, आप पूरे समाज में चलते फिरते हैं। तो आज़ादी समाज सापेक्ष होती है, देश सापेक्ष होती है, और अच्छे कर्मों की सापेक्ष होती है। तो श्रोताओं, आज़ादी के अर्थ को ठीक से समझें और अपनी आज़ादी को बरकरार रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे और यज को अनुमति दें। शुभ संध्या, फिर मिलेंगे।

0: खेल खिलाड़ी इज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी देखो द फ्लो एक्सपर्ट।
1: खेल खिलाड़ी खेल खिलाड़ी खिलाड़ी

खेल खेला रवि के सभी श्रोताओं को, दोस्तों को संजय की ओर से प्यार भरा नमस्कार आदाब और स्वागत है रेडियो बशिस की लहरों पर। सबसे पहले तो हमारे दोस्त रोशन की ओर से प्यार भरा सलाम स्वीकार हो। आज उन्होंने हमें भेजा है आपकी सेवा के लिए, लेकिन हमें यकीन है कि उनके तमाम जो फैंस हैं उनकी प्रतीक्षा में थे। आप निराश ना हुए, अगले शनिवार को वे यहाँ पर हाजिर होंगे। चलते चलते हमारी ओर से उनको, भाभी जी को और दो बेटों को हम सलाम करते हैं। आज वे व्यस्त हैं इसलिए वे नहीं आए, लेकिन हमें यकीन है कि आप सभी लोगों तक उनका प्यार पहुँच रहा होगा। सो आज हम किस विषय को लेकर आपके सामने आए हैं? विषय ये है कि अगले 21 तारीख को फ्राइडे 21 अगस्त को इंग्लिश प्रीमियर लीग शुरू हो रहा है, फिर से शुरू हो रहा है। वर्ल्ड कप समाप्त हुआ, वर्ल्ड कप के साथ जो मैजिक था, जो टेंशन था, वो भी समाप्त हुआ। काफ़ी दिन बीत गए और सभी जो फुटबॉल प्रेमी हैं प्रतीक्षा करें बहुत ही बेसब्री के साथ कि कब इंग्लिश प्रीमियर लीग शुरू होगा, फिर से खिंचातानी फिर से होगी काम में दोस्तों के बीच। सो आज हमने विषय रखा है इंग्लिश प्रीमियर लीग 2025-2026। यस, कितनी चीज़ों को हम अभी भी याद कर रहे हैं। पिछले साल, पिछले सीजन के इंग्लिश प्रीमियर लीग को लेकर। सो पहला सवाल जो बहुत ही आसान है आपके सामने हम रखते हैं, आप हमें बताएं कि किस खिलाड़ी को, कौन सा खिलाड़ी, विच वॉज द टॉप स्कोरर ऑफ द प्रीमियर लीग सीजन 2025-2026।

हम दरख्वास्त करेंगे कि जो भी लोग भाग लें आप लाइन पर इंतज़ार करें, हम आपको ऑन एयर लेंगे, तब आप अपना फ़ोन काटें, इससे पहले ना काटें। सो आत्मा जी ने हमें फ़ोन किया था पुथोदो से, अगर मेरी यादगाश्त ठीक है तो, और उन्होंने जवाब दिया। सो अभी तक हमने किसी को नहीं लिया है ऑन एयर, आप प्लीज़ कृपया फिर से फ़ोन करें ऑन 402-80-85 402-80-85 पर आप फोन करें और हमें बताएं कि सीजन 2025-2026 में इंग्लिश प्रीमियर लीग में कौन टॉप स्कोरर बने थे।

खेल खिलाड़ी प्रोग्राम संजय के साथ हम अपने श्रोताओं को जरा देर तक लाइन पर इंतजार करवाना नहीं चाहते हैं। चलिए हम मिलते हैं हमारे पहले श्रोता से। हेलो हेलो आत्मा जी, हेलो। लगता है कि आत्मा जी की लाइन कट गई, कोई बात नहीं। उन्हें ठीक से सुनाई नहीं देता था, सो कोई बात नहीं, थोड़ी देर में हम लेते हैं हमारे पहले श्रोता से बात करते हैं।

0: चले हम मिलते हैं हमारे पहले श्रोता से। हेलो
1: हेलो
0: नमस्कार।
1: हेलो नमस्कार। नमस्कार,
0: आपका शुभ नाम?
1: सुबीर सेन।
0: और आप कहाँ के रहने वाले हैं?
1: पालमा रोड कटरबोन।
0: बताए आपकी फेवरेट टीम कौन सी है इंग्लिश प्रीमियर लीग में?
1: द बेस्ट इज अलोन।
0: टॉप स्कोर अर्लिंग हालैंड। हाँ, हमने आपकी टीम के बारे में पूछा, आपकी फेवरेट टीम कौन सी?
1: लिवरपूल।
0: हम 100% श्योर थे कि लिवरपूल ही होने वाला था। सुबीर सेन जी, आपको लगता है कि इस सीजन में लिवरपूल कुछ कर पाएगा?
1: हाँ जी हाँ, हमने इस कोच के बारे में बहुत सुना है।
0: हाँ,
1: ये कोच कुछ अलग सा है और कुछ नए खिलाड़ी भी आना पड़ेगा।
0: हाँ,
1: तब टीम अच्छा बनेगा।
0: ओके, सो हम ये आशा करते हैं कि आपकी टीम इस सीजन कुछ बेहतर परफॉर्मेंस दे पाए। सो सुबीर सेन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने साथ दिया और सही जवाब भी दिया। अर्लिंग हालैंड जिन्होंने 27 गोल स्कोर किए थे इंग्लिश प्रीमियर लीग सीजन 2025-2026 में। फिर से मिलेंगे। नमस्कार।
1: अच्छा लगा आपसे बातें करके।
0: हमें भी। नमस्कार, जय मॉरिशस।

सो दूसरा सवाल हम आपसे पूछते हैं, आप बताएं कि सीजन 2025-2026 में इंग्लिश प्रीमियर लीग की कौन सी टीम ने सबसे ज्यादा गोल स्कोर किए थे, यानी कि बेस्ट अटैक।

0: चले हम बेस्ट लिसनर्स के लिए बेस्ट प्रोग्राम पेश कर रहे हैं और हमने पूछा कि हु वाज द बेस्ट अटैकिंग टीम इन द सीजन 2025-2026 यानी कि इंग्लिश प्रीमियर लीग में किस टीम ने सबसे ज्यादा गोल्स स्कोर किए थे और जवाब इनके पास। हेलो
1: हेलो, जय सियाराम बाजी।
0: जय सियाराम महाराज जी, आप कहां पर नहीं होते, आप तो चारों ओर छाई रहती
1: हैं।
0: महाराज जी, आप फुटबॉल में रुचि रखते हैं ये हमें पता है।
1: थोड़ी सी रखती हूँ पर ये आंसर तो
0: आपके मैसेजेस रेडियो मस्ती पर आती हैं और हमें पता है कि आप यूनाइटेड के एक बड़ी फैन हैं। ये सच है?
1: मैनचेस्टर।
0: हाँ ना, ये सच है ना? सो आप बताएं कि सीजन 2025-2026 में इंग्लिश प्रीमियर लीग की कौन सी टीम ने सबसे ज्यादा गोल स्कोर किए थे? मैनचेस्टर सिटी, 77 गोल्स स्कोर्ड। इतने गोल स्कोर करने के बाद भी वो चैंपियन नहीं बनी। दूसरी टीम जो सबसे ज्यादा गोल स्कोर की वो आर्सेनल, 71 गोल्स। और तीसरे स्थान पर आई आपकी टीम यूनाइटेड विद 69 गोल्स। सो माला जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भाग लिया। और आप क्या सोचते हैं कि इस सीजन यानी कि नेक्स्ट सीजन यूनाइटेड चैंपियन बनेगी?
1: जी जरूर, हो सकता है। कुछ भी हो सकता है।
0: कुछ भी हो सकते हैं। और आपकी फेवरेट खिलाड़ी कौन है?
1: खिलाड़ी नहीं, मैं वो टीम ही पसंद करती हूँ।
0: अच्छा, ओके
1: ओके। बहुत बहुत धन्यवाद
0: माला जी, नमस्कार, जय सियाराम।

सो जाहिर है कि अब की बार हम आपसे सवाल करेंगे विच टीम की बेहतरीन डिफेंस रही इंग्लिश प्रीमियर लीग सीजन 2025-26 किस टीम की बेहतरीन डिफेंस रही आप जवाब दीजिए बाय कॉलिंग ऑन 402 85।

सो आज के खेल खिलाड़ी में वी आर डूइंग अ रिकैप कि पिछले सीजन में कौन सी टीम ने ज़्यादा गोल्स किए, कौन सी टीम ने कम गोल्स कंसीड किए, और अब की बार हम जानना चाहते हैं कि बेस्ट डिफेंस किस टीम की रही।

0: यकीनन बेफिक्र होकर चलते रहें। अगले शुक्रवार 21 तारीख को इंग्लिश प्रीमियर लीग सीजन 2026-2027 किक ऑफ हो रहा है बिटवीन आर्सेनल एंड कोवेंट्री। और अभी के लिए हमने सवाल पूछा कि पिछले सीजन में बेस्ट डिफेंस किस टीम की रही, चले हम इनसे मिलते हैं। हेलो
1: हेलो, नमस्कार जी।
0: नमस्कार रूमा जी।
1: हाँ।
0: रोजबेल की रहने वाली
1: आपने।
0: रोजबेल की रहने वाली उमा विश्राम जी आपको सलाम करते हैं।
1: ठीक है।
0: रोजबेल के किस प्रांत में रहते हैं?
1: मखीजानी रहती हूँ। क्यों है, आप मुझे जानते हैं ना।
0: अच्छा,
1: ठीक है।
0: उमा जी बताएं बताएं, आपके पास जवाब क्या है?
1: जवाब है
0: आर्सेनल। आर्सेनल। आप फोटो करती हैं या आपके घर में किसी ने आपको?
1: फोटो करती हूं थोड़ा बहुत। हां, मैं अर्जेंटीना की बहुत बड़ी फैन हूं।
0: अच्छा,
1: मैं की फैन हूं। हां, फाइनल में उसे देखे मैं बहुत दुखी हुई।
0: लेकिन अफसोस अर्जेंटीना क्या कहें,
1: फाइनल में गया था ना।
0: लेकिन
1: गेम है ना, ये तो कोई जीत होता है तो किसी की हार में एक्सेप्ट करना होता है।
0: वर्ल्ड कप की शुरुआत से मैं बहुत इंस्पायर्ड, मैं बहुत इम्प्रेस हुआ था स्पेन के खेल को देखकर।
1: और स्पेन के, हाँ, वो हाँ, बहुत बढ़िया है खिलाड़ी। हम लोग वेट करते थे तो क्या करें।
0: लेकिन हम
1: इसका मतलब ये नहीं कि ये ज्यादा बेहतर है मेरे।
0: हम नहीं सोच रहे थे कि फाइनल में कुछ ऐसा होगा कि हाँ, इस तरह से अर्जेंटीना को मुर्गा बना कर रखेंगे कि बिल्कुल ही नहीं खेल पाया अर्जेंटीना। लेकिन हम

0: हम बहुत ही सलाम करते हैं, नतमस्तक होकर सलाम करते हैं मेसी को उनके पूरे करियर के लिए, उनके पूरे करियर के लिए। हाँ, हाँ, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी। सो आपने सही जवाब दिया, आर्सेनल। आर्सेनल जिसने पूरे सीजन में सिर्फ 27 गोल, 27 गोल्स,
1: 27 है। हाँ, उसके बाद है मैनचेस्टर सिटी में, हो सकता है 35 गोल्स।
0: हाँ, और पीछे हाँ, में यूनाइटेड
1: थोड़ा को करती हूँ, देखती हूँ कब नींद लगती है तो नहीं देखती हूँ, होता है ऐसे कभी कभी।
0: बहुत बहुत अच्छा।
1: उम्र के साथ ये जोर भी जो है उससे थोड़ा प्रॉब्लम है।
0: अभी तो आप जवान हैं, जवान हैं, फिर से मिलेंगे। नमस्कार,
1: बहुत नमस्कार जी, शुभ संध्या आपको, बाय बाय।

सो अगला सवाल आपके सामने रखते हैं। आप हमें बताएं कि कौन कौन सी टीमें इंग्लिश प्रीमियर लीग की सीजन 2025-26 की कौन कौन सी टीमें अगले साल अगले सीजन के चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई हुए हैं। कौन सी टीमें अगले सीजन के चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई हुए हैं?

0: खेल खिलाड़ी प्रोग्राम रेडियो मोशस की लहरों पर संजय के साथ सवाल जो हमने पूछा कि अगले सीजन के इंग्लिश प्रीमियर लीग की कौन कौन सी टीमें चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई हुई हैं। चलें हम इनसे मिलते हैं। हेलो हेलो
1: हेलो
0: जी आत्मा जी नमस्कार।
1: हाँ नमस्कार। आर्सेनल मैनचेस्टर सिटी और मैनचेस्टर यूनाइटेड।
0: आत्मा जी आपके रेडियो सेट के वॉल्यूम कुछ ज़्यादा हैं और फीडबैक हो रहे हैं। आपने कहा आर्सेनल मैनचेस्टर सिटी और मैनचेस्टर यूनाइटेड ये तीनों टीमें क्वालिफाइड हुई हैं, ये सही हैं, लेकिन इनके अलावा और दो टीमें क्वालिफाई हुई हैं।
1: लिवरपूल
0: आस्टन विला जिसने यूरोपा कप जीता, और क्योंकि आस्टन विला ने यूरोपा कप जीता सो उसकी जगह में लिवरपूल भी क्वालिफाई हुआ। सो अगले सीजन चैंपियंस लीग में तीन नहीं चार नहीं पांच इंग्लिश टीमें भाग लेने वाली हैं, आर्सेनल, यूनाइटेड, सिटी, आस्टन विला और लिवरपूल। सो बहुत बहुत धन्यवाद आत्मा जी, आपने भाग लिया। ओके और आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? आपकी फेवरेट टीम कौन सी है?
1: बहुत कम सुनाई देता है।
0: हाँ तो आत्मा जी शायद आपके फ़ोन में कुछ खराबी होगी, लेकिन कोई बात नहीं, आपने भाग लिया, फिर से मिलेंगे। नमस्कार।
1: नमस्कार, शुभ संध्या
0: आपको भी। शुभ संध्या।

सो अगला सवाल अगले सीजन के लिए कौन सी तीन नई टीमें प्रमोट हुई हैं? फर्स्ट डिवीजन से प्रमोट डिवीजन में खेलने के लिए कौन सी तीन टीमें प्रमोट हुई हैं? आपका जवाब ऑन 402 85 85।

पिछले साल चंद टीमों का ख्वाब साकार हुआ और चंद टीमों के सपने चकनाचूर हो गए। किसी के दिल पर चोट लगी तो कोई बहुत ही खुश हुआ। सो पिछले साल इंग्लिश प्रीमियर लीग के तीन आखिरी स्थानों पर आए थे वेस्ट हैम, बर्नली और वोल्व्स, जो रेलिगेट हुए। उनकी जगह कौन सी नई टीम में आ रही है नेक्स्ट सीजन के लिए, इन खेलने वाली हैं इन इंग्लिश प्रीमियर लीग, इस सवाल का जवाब आपको देना है बाय कॉलिंग ऑन 402 80 85।

0: 5:45 मिनट हुए हैं क्योंकि समय बहुत ही कम है। चले हम मिलते हैं हमारे दोस्त से तुरंत ही। हेलो
1: हेलो
0: सिरिक भाई।
1: हाँ
0: अस्सलाम वालेकुम।
1: वस्सलाम शांति।
0: आप रहते हैं फिनिक्स?
1: हाँ।
0: सो आपके हिसाब से कौन सी तीन नई टीमें इंग्लिश प्रीमियर लीग में नेक्स्ट सीजन खेलने वाली हैं?
1: इप्सविच,
0: इप्सविच,
1: हल, कोवेंट्री,
0: हल सिटी, इप्सविच टाउन और कोवेंट्री सिटी। हाँ ये नई टीमें।

0: और एक सप्ताह में सभी रोड्स में डिस्कशंस फिर से शुरू होने वाले हैं कंसर्निंग देयर फेवरेट टीम्स सीजन 2026-2027 फॉर इंग्लिश प्रीमियर लीग जो अगले 21 अगस्त को शुरू हो रही है विद आर्सेनल फेसिंग कोवेंट्री सिटी। चलते चलते ये भी बता दें कि सुपर कप यूरोप के अंतर्गत सुपर यूरोपा कप के अंतर्गत पीएसजे ने आस्टन विला को 2-1 के स्कोर पर हरा दिया, जहां तक इंग्लिश प्रीमियर लीग का सवाल है एक रिकॉर्ड 9 क्लब्स के नए मैनेजर्स आ रहे हैं। सबसे जो मच अवेटेड विल बी ज़ाबी अलोंसो क्या करने वाला है एज द न्यू मैनेजर ऑफ चेल्सी। एंटोनी इराउला लिवरपूल का भागदौड़ संभालने वाला है। मैनचेस्टर सिटी का के स्टार कोच पेप गार्डियोला चले गए और उनकी जगह में आ रहे हैं एन्जो मारेस्का। इराउला जो पहले बोर्नमुथ के मैनेजर थे उनकी जगह पर मार्को रोज आ रहा है फॉर बोर्नमुथ। ओलिविये ग्लासनर आ रहे हैं फॉर नॉटिंघम फॉरेस्ट। पीएसआर आ रहे हैं फॉर क्रिस्टल पैलेस। अल्वारो अल्बेओला आ रहे हैं फुलहम के लिए। गैरी ओनील इप्सविच टाउन के लिए और निकोल न्यूकासल यूनाइटेड के लिए आ रहे हैं मैथियास जासले। सो ये नए जो मैनेजर्स आने वाले हैं क्या जलवा दिखाएंगे, क्या रंग दिखाएंगे, इसके बारे में हम आपको बताते रहेंगे। आज के लिए आप सबको कोटि कोटि धन्यवाद, आपने बहुत ही प्यार से हमारा साथ निभाया। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार। टाइम फॉर मी टू साइन ऑफ। फिर से मिलेंगे, आप सबको शुभ सप्ताहांत।
1: खेल खिलाड़ी वॉज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी डेकोर द फ्लो एक्सपर्ट।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: शाम के 6 बज चुके हैं। समाचारों में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। आज 15 अगस्त

को ईसाई समुदाय द्वारा असम्पशन का पर्व मनाया जा रहा है, जिसमें श्रद्धालुओं ने मदर मेरी को श्रद्धांजलि दी। पोर्टवी के बिशप मोंसिनियर मिकाएल जोहन ने बिजिटोम्बो में प्रार्थना सभा की अध्यक्षता की, जहां प्रवचन का मुख्य विषय एक माँ और माता पिता का संघर्ष रहा। और इस अवसर पर प्रधानमंत्री डॉ नवीन राम गुलाम की उपस्थिति में एक नए प्रार्थना स्थल का उद्घाटन किया गया। आज फिनिक्स स्थित IGCIC में भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराया गया, जिसमें प्रवासी सदस्यों ने हिस्सा लिया। इस दौरान वर्षसा में भारत के उच्चायुक्त ने दोनों देशों के शीर्ष नेताओं की हालिया यात्राओं और ऐतिहासिक समझौतों का विशेष उल्लेख किया। वर्षन सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए भारतीय सहयोग से एक नया रेडर सिस्टम और ऑफशोर पेट्रोल वेसल हासिल करने की घोषणा की है। साथ ही प्रधानमंत्री डॉ नवीन राम गुलाम ने बिजिटोम्बो में एक नए पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया। विदेश में भारत की स्वतंत्रता की 80 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इस अवसर पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए उन्होंने पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के ऐतिहासिक गायन के साथ शक्ति की सप्तधारा का आह्वान किया।

0: अब समाचार विस्तार से। आज 15 अगस्त के दिन ईसाई धर्म के लोग असम्प्शन का पर्व मना रहे हैं। देश भर में श्रद्धालु प्रार्थना करने और एक संरक्षक के रूप में मानी जाने वाली ईसा मसीह की माता मदर मेरी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए विभिन्न गिरजाघरों में एकत्र हुए। पौड़ी के बिशप के प्रवचन का मुख्य विषय एक माँ के रूप में वर्जिन मेरी का संघर्ष और दैनिक जीवन में हर माता पिता का संघर्ष था। मोनसिग्नियर मिकाएल जोहन ने कल असम्प्शन के अवसर पर बीजे टोम्बो में एक प्रार्थना सभा की अध्यक्षता की। उस सिलसिले में एक नए प्रार्थना स्थल का भी उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम सहित कई प्रमुख हस्तियों ने इस समारोह में भाग लिया।
1: माता मेरी के स्वर्गारोहण पर्व से ठीक एक दिन पहले बिजुटोम्बो के डॉकर्स विलेज में इस ग्रोटो में पहली बार मास का आयोजन किया गया। इस खास अवसर के जरिए इलाके के लोगों ने अपने तरीके से वर्जिन मेरी के प्रति अपनी श्रद्धा और आस्था प्रकट की।
2: Seigneur, nous te confions les habitants de Dockers Village, nos familles, nos jeunes et tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cette grotte dédiée à la Vierge Marie. Que ce lieu devienne un espace de prière, de paix, de rencontre et d'espérance, où chacun puisse se tourner vers Marie et se rapprocher de ton fils Jésus. Seigneur, écoute notre prière.
1: इस धार्मिक समारोह में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के साथ कई गणमान्य अतिथि भी मौजूद रही। इनमें प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम भी शामिल थी। अपने संदेश में पोर्टल्यू के बिशप मोनसिग्नियर जॉन माइकल जोन ने एक मां के रूप में वर्जिन मेरी के संघर्ष, साहस और समर्पण का उल्लेख किया।
3: Mais pour dire qu'une vie humaine est une vie de combat et que Marie a pris ce chemin-là, sa vie pas si simple. C'est pourquoi, peut-être pour ma maman, ma papa qui est ici, quand nous mettons devant la Vierge Marie, nous peut dire qu'il nous peut lutter des fois pour nos enfants, nous lutter pour notre famille, comme Marie lui-même. C'est pas une madame qui gagne toutes leurs facilités, pas parce qu'il est bon Dieu, choisir lui. Mais c'est une madame qui ne connaît qui était douleur aussi une maman pour donner la vie à nos enfants, mais pour porter aussi la souffrance Bandimoun. Mais Marie représente l'Église qui morce avec Bandimoun et donne l'espérance dans toute la vie. À cause de ça même, quand nous célébrons l'Assomption de la Vierge Marie, nous rappelle qui grâce qui Jésus nous donne nous quand il nous donne nous une maman qui appelle Marie.
1: श्रद्धा और प्रार्थना के माहौल में डॉकर्स विलेज और आसपास के इलाकों से आए लोगों ने इस समारोह में हिस्सा लिया। इस खास अवसर पर निभाई गई मॉरिशस की संस्कृति में गहराई से जुड़ी एक खूबसूरत परंपरा गातो माही बांटने की।
0: राज सुबह फिनिक्स स्थित इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र में भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारतीय तिरंगा फहराया गया। इस समारोह में प्रवासी समुदाय के सदस्यों ने विशेष रूप से भाग लिया, जो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक स्तर पर भारत और मॉरिशस के बीच के विशेष संबंधों का प्रतीक रहा। मॉरिशस में भारत के उच्चायुक्त ने विशेष रूप से भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मॉरिशस की हालिया यात्राओं और मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम की भारत यात्राओं का उल्लेख किया, जो ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर के साथ संपन्न हुई थी। आशा गोविंद दामन।
1: भारत की आजादी, देश प्रेम और मातृभूमि के प्रति समर्पण का स्वर वंदे मातरम आज सुबह फिनिक्स के इंदिरा गांधी भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में गूंज उठा। देशभक्ति से सराबोर इस माहौल में नेशनल कोस्ट गार्ड और हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन के सैन्य कर्मियों के साथ बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक और मॉरिशस में भारतीय समुदाय के प्रतिनिधि मौजूद रहे। सुबह 9 बजे गर्व और सम्मान के साथ भारतीय तिरंगा फहराया गया। मॉरिशस में भारत के हाई कमिश्नर श्री अनुराग श्रीवास्तव ने तिरंगा फहराया। भारत आज अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। अवसर उस ऐतिहासिक आजादी को याद करने का है जिसने देश को बरतानी शासन से मुक्ति दिलाई और उन स्वतंत्रता सेनानियों के साहस, संघर्ष और बलिदान को नमन करने का भी जिन्होंने आजाद भारत का सपना साकार किया। समारोह के आधिकारिक हिस्से में भारतीय उच्चायुक्त ने भारत और मॉरिशस के गहरे और पुरानी संबंधों को रेखांकित किया। इतिहास और संस्कृति से जुड़े ये संबंध आज आर्थिक सहयोग और आपसी साझेदारी के साथ और मजबूत हुए हैं। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम के बीच विशेष संबंधों का भी उल्लेख किया। इस संदर्भ में मार्च 2025 में प्रधानमंत्री श्री मोदी की मॉरिशस यात्रा, सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम की वाराणसी यात्रा और फरवरी 2026 में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के लिए उनकी भारत यात्रा को याद किया गया।
4: This is not only a celebration of our Independence Day, it is a celebration also of our special friendship with Mauritius, a friendship which has grown stronger, a friendship which is very robust, it is time tested, and a friendship where we are committed to take to even greater heights in the times to come.
1: श्री अनुराग श्रीवास्तव ने दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी का जिक्र करते हुए कहा कि स्वास्थ्य, चिकित्सा, प्रशिक्षण, व्यापार, निवेश और समुद्री सुरक्षा समेत कई सेक्टरों में भारत और मॉरिशस मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद बारी थी भारत की समृद्ध संस्कृति के रंगों की। भारतीय और मॉरिशन कलाकारों की प्रस्तुतियों ने समारोह को एक अलग ही रंग दिया। संगीत और नृत्य के जरिए भारत की विविध और जीवंत सांस्कृतिक विरासत की खूबसूरत झलक देखने को मिली।
0: राज्य भारत के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर पुरखों की जमीन से जुड़ी भारतीय पीढ़ियों की बात करती है। मॉरिशस की अधिकतर आबादी के लोग भारतीय वंशज है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत बाहें खोलकर इन्हें भारतीय जैसा दर्जा दे रहा है। ओसीआई कार्ड के माध्यम से एक तरह से भारतीय नागरिक कहलाया जा सकता है। ये बात उल्लेखनीय है कि अब तक करीब 20,000 मॉरिशस वासी ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया बन गए हैं।
5: शिवालिंगम आरासन के पूर्वज दक्षिण भारत से आए थे, इसलिए हमेशा से भारत से उनका गहरा लगाव रहा है। तकरीबन 12 दफा वो भारत जा चुके हैं। सन 2016 से उन्हें अपना ओसीआई कार्ड मिला और तब से उन्हें अलग सुविधाएं मिल रही हैं।
6: मुझे गेंच प्रॉब्लम मोलीजे सांस एस्पिरेम et puis moi je suis très loin et mon arrivée à Madurai
5: एक बार मैं मदुरई में था

0: और अचानक आंखों में कुछ समस्या पैदा हो गई। मुझे चेन्नई जाना पड़ा जहां डॉक्टर ने मुआयना किया। डॉक्टर ने मुझसे आधार कार्ड यानी भारतीय आईडी कार्ड मांगा। तब मैंने अपना उसी आई कार्ड दिखाया। फौरन मेरा इलाज शुरू हुआ और सर्जरी की गई। अगर मेरे पास ये ओसीआई कार्ड नहीं होता तो मैं शायद अपनी आंखें गवा चुका होता, क्योंकि मुझे मुर्शिद से मेडिकल वीजा और दूसरी दस्तावेजें मंगवानी पड़ती।
1: Mais si vous passez dans ça aussi, est-ce que vous avez entendu un petit papier?
2: Vous entendez peut-être, moi je capte, je vous le dis aussi, parce que moi je vous entends ça assez vite. Qui vous entendez? Moi je vous entends médical visa.
0: हर महीना ओसीआई कार्ड की प्राप्ति के लिए भारतीय उच्चायोग को करीब 300 अर्जियां मिलती हैं। ज्योति एक भारतीय नारी हैं और उनके पास भारत का आधार कार्ड नहीं है। आज उन्हें अपना ओसीआई कार्ड मिलकर बड़ी खुशी मिल रही है।
3: मेरा पासपोर्ट तो मॉरिशन है। जिस घड़ी मैं मॉरिशस आई थी उस घड़ी आधार कार्ड नहीं था, तो मैं सिर्फ पासपोर्ट और अपना जो बाकी सर्टिफिकेट है उसके ऊपर आई थी।
1: कितने सालों से?
3: 28 ईयर्स हो गया मुझे यहाँ। मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि मैं भारत जा कर के अभी और भी समय बिता सकती हूँ वहाँ। पहले तो था रूल्स के हिसाब से कि वीज़ा है 2 या 3 महीने का, पर अब मैं ज़्यादा समय बिता सकती हूँ अपनी फैमिली के साथ।
0: किसी न किसी कारण से इस कार्ड के अनेक फ़ायदे जानकर मुर्शिदों की दिलचस्पी बढ़ती जा रही है।
4: मेरा सपना है एक दिन मैं वहाँ जाके 2-3 साल रहूँ, मनाली शिमला घूमूँ। कहीं जाएंगे घूमने के लिए प्राइस, टिकट प्राइस जो है वो कम होता है लोकल इनहैबिटेंट्स के जैसा।
0: हमारे पूर्वज भारत से आए थे, इसलिए मैं ये कार्ड प्राप्त करना चाहती थी। मेरे सास ससुर बूढ़े हैं तो मैं उन्हें किसी भी वक्त इलाज के लिए भारत ले जा सकती हूँ, वीज़ा की कोई ज़रूरत नहीं होगी। गए सालों के मुकाबले ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड्स की मांगे बढ़ गई हैं। अब तक 18,000 से ज्यादा मुर्शन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कहलाए जाते हैं।
5: यूजुअली ओसीआई कार्ड का हम लोग रिजेक्ट नहीं करते। कोई भी इंडियन ओरिजिन के हैं अगर उनके पास सारा डॉक्यूमेंट अवेलेबल है तो हम लोग एक भी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं करते हैं। ओसीआई का कोई कोटा नहीं है, ओसीआई अनलिमिटेड है। जब तक जितने भी यहाँ पे मॉरिशस में जितने भी लोग हैं, जितने भी सब अप्लाई करेंगे सबको देंगे, एंड फ्यूचर जनरेशन भी उनके बाद भी जो नेक्स्ट जनरेशन आएंगी या छोटे बच्चे हैं सबके लिए ओसीआई कार्ड है। ओसीआई कार्ड का कोई लिमिट नहीं है। हम लोग प्रीवियस ईयर से डाटा कंपेयर करें तो लास्ट ईयर में हमने 3,000 ओसीआई इशू किया, इस साल हम लोग 4,000 करीब इशू करेंगे।
0: ओसीआई कार्ड पाने की प्रक्रिया सिविल स्टेटस दफ्तर से की जानी चाहिए और इसका मुख्य मापदंड ये है कि आप साबित करें कि आपके पूर्वज भारत से आए थे।
6: पेट्रोल के दाम में एक बार फिर बढ़ोतरी हुई है। आधी रात से पेट्रोल का दाम 64.25 रुपये से बढ़कर 70.65 रुपये प्रति लीटर हो गया है, यानी 6.40 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन डीजल का दाम 71.25 रुपये प्रति लीटर पर पहले जैसा ही रहेगा। ये फैसला कल रात हुई पेट्रोलियम प्राइसिंग कमेटी की बैठक के बाद लिया गया। भारतीय अधिकारियों की मदद से मॉरिशस नौकाओं की सटीक स्थिति का पता लगाने के लिए एक रेडर प्रणाली स्थापित कर रहा है। इसका उद्देश्य मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ और अधिक प्रभावी ढंग से मुकाबला करना है। सरकार एक ऑफशोर पेट्रोल वेसल का अधिग्रहण भी करेगी। ये घोषणाएं कल शाम बिजुटोम्बो में की गई, जहां प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम अन्य विकास कार्यों के साथ साथ एक नए पुलिस स्टेशन का उद्घाटन कर रहे थे।
7: 40,000 आबादी वाला तटीय गांव बेजिटोंबो नए ढांचे से लैस हैं। पुराने पुलिस स्टेशन की जगह पर एक नया कार्यस्थल जहां कोई 40 पुलिसकर्मी कार्यरत होंगे। उद्घाटन समारोह के दौरान प्रधानमंत्री ने सरकार द्वारा जनता की सुरक्षा के लिए दिए जाने वाले महत्व पर जोर दिया। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने ड्रग्स के खिलाफ लड़ने के लिए एक समुद्री रडर प्रणाली की स्थापना की भी घोषणा की।
8: पुनमन सिस्टम रडर एक कैमरा कि nous vous connaissez chaque bateau qui était mais commence les procédures pour installer ici et nous vous servir man drone. Et là nous avons déjà une fake commande, un nouveau appelle ça OPV, offshore patrol vessel. Dernier OPV, moi que tu veux mettre canon l'eau là. Et puis de rayer. Bien mettez. Nous bisons sévère et nous bisons prendre action qui bisons.

0: Parisien prend. Parce qu'il a lit combien de morts sont la drogue, les Boubisiens sans pitié. Ils ont besoin aussi d'équipement, ils ont besoin de formation. Ils ont besoin d'un career path. Vous n'êtes pas capable d'être policier, d'être constable. Il veut être constable jusqu'à 20 ans, 30 ans. Pour pas tous les gains de promotion. Et bizarre aussi, gain de promotion, mais moi tout le temps, je dis ça comme cette police, promotion bizarre au mérite. Promotion automatique, je ne pas quoi là-dedans, dit tout.
1: कुछ मीटर की दूरी में फोर्ट अल्बर्ट में एक बीच सर्कल का भी उद्घाटन किया गया। पोम्पलमुस जिला परिषद के अध्यक्ष वेदानंद टुटू ने प्रधानमंत्री से इलाके में विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ करने की मांग की।
2: Monsieur le Premier ministre, moi je vous invite tout pour faire bonne inauguration là, parce qu'il nous parle vers une élection en décembre. Avant ça, nous l'avons fini ouvert tout ça bonne bâtiment qui le district council nous fait, bonne sport complexe qui nous fait.
3: Le chairperson du district, Pamplemousse, camarade, de toutes les affaires bien pourtant. Fait bonne inauguration là vite. Il y a la raison, parce qu'il est une victime de ça. Plusieurs fois, il nous fait poser, maintenant qu'il n'a même pas besoin de son gouvernement tous les cinq ans. Maintenant qu'il nous fait, là, il nous fait faire contingent self pour Audrey. 2009, ça. Alors, MSM Bénéco, petit qui n'est pas pour lui. Ouais, c'est faux, là, non. C'est un cliché MSM, ça, oui.
1: सरकारी नेता ने डकर्स विलेज के प्राथमिक स्कूल का भी दौरा किया जिसका नवीनीकरण हुआ है और जो बच्चों का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री ने वहां के निवासियों से भी भेंट करते हुए उनके साथ बातचीत की।
4: प्रधानमंत्री ने साथ ही मध्यपूर्ण में जारी तनाव और उसके देश पर पड़ने वाले प्रभावों पर टिप्पणी की। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने मॉरिशसवासियों से एकजुटता और सहयोग बनाए रखने की अपील की। उनको सुनते हैं।
0: Mais seulement nous faire face à un défi ensemble, dans l'unité. Bon, oui, c'est là sa réputation. Beaucoup de défis de nous faire face.
4: वैसे प्रधानमंत्री इस रविवार को दक्षिण अफ्रीका जा रहे हैं। वे सोमवार को जोहान्सबर्ग में होने वाले सादेक के 46वें शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस बैठक में खासतौर पर इलाके के देशों के बीच मिलजुल कर काम करने, बुनियादी सुविधाओं के विकास, खेती में बदलाव और जरूरी खनिजों का बेहतर इस्तेमाल जैसे मुद्दों पर बात होगी। ज्यादा जानकारी इस रिपोर्ट में।
1: सोमवार सुबह होने वाले आधिकारिक उद्घाटन से पहले 16 सदस्य देशों के प्रतिनिधिमंडलों की मेज़बानी करने वाले स्थल पर तैयारियां तेज़ हो गई हैं। इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा करेंगे और इसका उद्देश्य क्षेत्रीय एकीकरण तथा विकास को और भी मजबूत करना है। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम रविवार को डर्बन पहुँचेंगे। शिखर सम्मेलन से इतर उन्हें अन्य राष्ट्र अध्यक्षों और शासन अध्यक्षों से मुलाकात करने का अवसर मिलेगा, जहां साझा हितों और क्षेत्र की रणनीतिक प्राथमिकताओं पर चर्चा होगी। इनमें खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा के साथ साथ व्यापार भी शामिल हैं। प्रत्येक सदस्य देश से जुड़े मुद्दों से आगे बढ़कर इस शिखर सम्मेलन को क्षेत्रीय एकीकरण को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। बैठक में साझा चुनौतियों और क्षेत्र की प्रगति को तेज करने के उपायों पर चर्चा होने की उम्मीद है।
4: विदेश में भारत अपनी स्वतंत्रता के 80 साल पूरे होने के अवसर पर जश्न मना रहा है। 1947 में मिली आज़ादी के बाद से हर साल देश का मुख्य समारोह लाल किले पर होता है। आज भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर ध्वजारोहण करने के बाद परेड की सलामी ली। श्री नरेंद्र मोदी ने भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर

लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के ऐतिहासिक गायन के साथ शक्ति की सप्त धारा का आह्वान किया। और इंडोनेशिया में आए 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप के कारण कम से कम 47 लोगों की मौत हो गई है। बचाव और राहत अभियान शुरू होने के साथ ही आधिकारिक मृतकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस आपदा में कई लोग अलग अलग रूपों से घायल हुए हैं। देश विदेश की खबरों के बाद आइए मौसम का हाल सुनते हैं। हमारे इलाके पर सामान्य हवाओं का असर है। पूर्वानुमान आज रात और कल सुबह बादल घिरे रहेंगे, रह रहकर वर्षा होगी खासकर ऊंचे इलाकों पर। और कल दिन के दौरान मौसम सुहाना रहेगा। तापमान सेंटर बादल पर न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम 21 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की तरफ से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। प्रवाह के बड़ी समुद्र खराब रहेगा और दक्षिण पश्चिम की तरफ 3 मीटर 50 सेंटीमीटर तक ऊंची लहरें भी उठ सकती है। दो समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। कल सूर्योदय 6:31 पर होगा।

0: तो इसी के साथ ही समाचार समाप्त हुए से आप तक पहुंचाने में हमें फैजान का साथ मिला, उन्हें धन्यवाद कहेंगे। जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार।
1: News on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: रायरोड विचा मिल्ट्री ओले में रायरोड विचा मिल्ट्री ओले में 65 साल के 65 ईयर्स ओल्ड के श्री शांति देव रामेश्वर, श्री शांति देव रामेश्वर जो जय सिंह नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 10 बजे उनके घर रायरोड विचा मिल्ट्री ओले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए टर्मिनस ओले की श्मशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन चुमरु एट 10 AM। भुजावन रोड अपर डागोसिया में, भुजावन रोड अपर डागोसिया में 62 साल की 62 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती उमा किस्तु, श्रीमती उमा किस्तु पैदाश नाम निर्मल और जो उमा नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, कि मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी कल दिन के 10 बजे उनके घर भुजावन रोड अपर डागोसिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सियाक मुस्तान साहिबिया की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट 10 AM। क्लावेट रोड सेबास्तोपोल में 92 साल की 92 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती रज्जो बंधु पैदाश नाम हरी और जो रज्जो नाम से सटा जानी जाती थी, कि मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी कल दिन के साढ़े बारह बजे उनके बेटे श्री राजीव बंधु के घर क्लावेट रोड सेबास्तोपोल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोहताल ब्लॉन्च की श्मशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन चुमरू एट 12:30 PM। न्यू रोड होशनुआ में 69 साल के 69 ईयर्स ओल्ड के श्री मथुरा प्रसाद गुदौ जो राजू नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, कि मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी सोमवार 17 अगस्त को दिन के साढ़े ग्यारह बजे उनकी पत्नी श्रीमती वेदवंती गुदौ के घर न्यू रोड होशनुआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावांचे की श्मशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन ऑन मंडे 17 अगस्त at 11:30 AM। मैडम लुलू रोजबेल में 85 साल के 85 ईयर्स ओल्ड के श्री मुनय ईयापा जो सीमाद्री नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, कि मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी कल दिन के साढ़े ग्यारह बजे उनके बेटे श्री रवि ईयापा के घर मैडम लुलू रोजबेल से उठाकर दफ्ताने के लिए यूनियन पार्क की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। फ्यूनरल टुमरो एट 11:30 AM। डिस्पेंसरी रोड विचा मिल्ट्री ओले में 55 साल के 55 ईयर्स ओल्ड के श्री रविन्द्रनाथ जोयमंगल जो अखिलेश नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, कि मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके घर डिस्पेंसरी रोड विचा मिल्ट्रियोले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए एसएसएस लेन ट्रियोले किश्मशान भूमि ले जाएगी। क्रिमिशन टुमरो एट 11 AM। एवेन्यू इकबाल वाली पीटो में 79 साल की 79 ईयर्स ओल्ड की मिसिज़ हाफेज़ बीबी महादू पैदाइशी नाम नियामत खान और जो दादी हाफेज़ नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, का इंतकाल हो गया। उनका जन्म

आज़ा आज रात साढ़े आठ बजे उनके बेटे जनाब हैदर अली महाजू के मकान अवेन्यू इकबाल वाले पीटो से निकाल कर दफनाने के लिए रिश्ते के कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फिनर टू नाइट एट 8:30 PM। क्लेमेंट रोड सेबास्टोपोल में 92 साल की 92 years old की श्रीमती रज्जो बंधु, वैसे ये शोक समाचार हमने पढ़ ली है। रॉय रोड कथकुकुमी

Okay, 73 years old. Okay, Shri Satyadev Mitu, Shri Satyadev Mitu, जो चंद्रदेव नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, और जो एक टैक्सी ड्राइवर थे, की मृत्यु हो गई उनकी अर्थी कल दिन के दो बजे उनकी पत्नी श्रीमती प्रतिमा मीटू के घर व रोज कथकुकों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावांचो की श्मशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट 2 PM एमिलियन स्ट्रीट पुथोदो विलाज में, एमिलियन स्ट्रीट पुथोदो विलाज में 74 साल के 74 years old के श्री रामचंद्र बुलाकी, श्री रामचंद्र बुलाकी जो मिलात नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई उनकी अर्थी कल दिन के साढ़े दस बजे उनकी पत्नी श्रीमती सालदा बुलाकी के घर एमिलियन स्ट्रीट पुथोदो विलाज से उठाकर दफनाने के लिए बेलमो की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। फ्यूनरल टुमरो एट 10:30 AM मुसलमान प्रिंट हाईलैंड्स में, मुसलमान ब्लू प्रिंट हाईलैंड्स में 44 साल के 44 years old के श्री मेगावेन मोहोगिया जो मायन नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई उनकी अर्थी कल दिन के बारह बजे उनके घर मुसलमान ब्लू प्रिंट हाईलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगाह की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट नून। Coriolis Road, 16,000 Forest Side में, Coriolis Road, 16,000 Forest Side में 58 साल के 58 years old के श्री धनेश्वर सिंह बालक, जो कमलेश नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई उनकी अर्थी कल दिन के 10 बजे उनके घर Coriolis Road, 16,000 Forest Side से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए 16,000 सिमिट्री रोड की श्मशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट 10 AM पैराडाइज लेन रोशनवा में, उनसठ साल के 59 years old के श्री चितानंद सांतक, जो फिया बुशो नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई उनकी अर्थी कल दिन के साढ़े बारह बजे उनके घर पैराडाइज लेन रोशनवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रोशनवा की श्मशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट 12:30 PM नंबर 72 अवेन्यू सोदना कैथ्रोबोन में 51 साल की 51 years old की श्रीमती कविता रामचंद पैदाइश नाम राजवानी और जो सोनी नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई उनकी अर्थी कल दिन के डेढ़ बजे उनके घर नंबर 72 अवेन्यू सोदना कैथ्रोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सुर्फिया की श्मशान भूमि ली जाएगी। क्रमशन टुमरो एट 1:30 PM कश्मीर रोड डिस्फेरेंस रेबुशे में 49 साल के 49 years old के श्री ऋषि देव बैरब जो ऋषि नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई उनकी अर्थी कल दिन के 10 बजे उनकी माँ श्रीमती रूपा बैरब के घर कश्मीर रोड डिस्फेरेंस रेबुशे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पितों की श्मशान भूमि ली जाएगी। क्रमशन टुमरो एट 10 AM शोक में डूबे सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।

您所收听的是毛里求斯广播电台819频道，你收听的是毛里求斯广播电台819频道。

0: मीठी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो।
1: बजली प्रभु का नाम रेडियो मॉरिशस के लहरों पर।
2: सभी श्रोताओं को अनीता का करजोड़ नमन स्वीकार कीजिए। इस क्षण आप रेडियो मॉरिशस पर भजले प्रभु का नाम कार्यक्रम सुन रहे हैं। श्रोताओं, जहाँ शक्ति काम नहीं आती वहाँ केवल भक्ति ही काम आती है। जब भी आप अपनी शक्ति से निराश हो जाएंगे और आपको अंत दिखाई दे, ऐसे संकट के समय में अपना अहंकार छोड़कर प्रभु के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित कर लेना चाहिए। तो आइए इसी विचार के साथ हम कार्यक्रम का शुभ प्रारंभ करते हैं।

भक्तजन, भगवान कहते हैं कि जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है उसी क्षण उसका समाधान भी जन्म लेता है। अंतर मात्र इतना है कि हम दड़ में उलझ जाते हैं और समाधान को देख नहीं पाते हैं। जब मन शांत होता है तब मार्ग स्वयं सामने आता है। इसलिए हर संघर्ष से घबराए मत, क्योंकि हर अंधेरा के साथ तेरे के साथ ही कहीं ना कहीं एक रोशनी भी चलती है। बस विश्वास बनाए रखना चाहिए, समाधान आपके ही भीतर है।

के साथ मिलकर सारे वातावरण को सुगंधित बना देती है। परंतु जब यही वर्षा की बूंदें किसी स्थान पर एक साथ बादल फटने के कारण गिरती है तो उस स्थान पर बाढ़ भी ला सकती है। इसी प्रकार जीवन में भी यदि हम किसी व्यक्ति की सज्जनता और उदारता का मोल नहीं रखते हैं तो वह व्यक्ति बरखा की बूंदे की भांति हमारे जीवन में एक अच्छा परिवर्तन ला सकता है। वही व्यक्ति हमारे निराश का कारण भी बन सकता है।

भक्तों, आगे बढ़ने के लिए पीछे के पुलों को छोड़ना पड़ता है। प्रारंभ में जो परिस्थितियां हमारा सुरक्षा कवच होती है, समय आने पर हमें उन्हें छोड़ना पड़ता है। अपना अस्तित्व बढ़ाना है तो अपने सुरक्षित वातावरण को छोड़कर कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तभी विकास संभव होता है।

श्रोताओं, प्रेम का जन्म करुणा से होता है और मोह का जन्म अहंकार से, तो इस विचार पर अवश्य ध्यान दीजिएगा। अभी कार्यक्रम को समाप्त करने का समय हो गया है। आपके साथ एवं ध्यान के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। अनीता को दीजिए अनुमति। नमस्कार और शुभ रात्रि।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलो हर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान और बड़ा रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिनके आने से रोशन हुए दो जहां, जिनके आने से रोशन हुए दो जहां, उनके कदमों की बरकत पे लाखों सलाम, उनके कदमों की बरकत पे लाखों सलाम। मौज़े सामीन, उम्मीद है आप बफ़ज़ले खुदा खैर वाफियत से होंगे। इस वक्त आप समात फरमा रहे हैं हमारी उर्दू नशरियात महफिल शब रेडियो मॉरिशस के ज़रिए सैयदा सुबाई के साथ। फरमाने इलाही है, और हमने तुम्हें ना भेजा मगर रहमत सारे जहां के लिए। आप तमाम सुनने वालों को माहे रबीउल अव्वल हमारी जानिब से बहुत बहुत मुबारक।

माह रबीउल अव्वल हमें उस अजीम हस्ती हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत याद दिलाता है, जिनकी तशरीफ़ आवरी पूरी इंसानियत के लिए रहमत का पैगाम बनी। आइए इस बाबरकत मौके पर हम अपने दिलों को मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुनव्वर करें, कसरत से दुरूद व सलाम पढ़ें और ये अहद करें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा से सिर्फ मोहब्बत ही नहीं करेंगे बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, रहम, सब्र, सच्चाई, अमानत और इंसानियत से मोहब्बत को अपनी

अल्लाह ताला इस माह मुबारक की बरकत से हमारे दिलों में अपने महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत पैदा फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। आप तमाम सुनने वालों को हमारी जानिब से माह रबीउल अव्वल बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में सैयदा सुबाई को भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलो हर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: भोजपुरी,
3: भोजपुरी तड़का,
2: तड़का।
4: भोजपुरी धमाल आज की रात रत्ना के संगे एमबीसी रेडियो पर।
3: भोजपुरी,
2: भोजपुरी तड़का,
3: तड़का।
5: रात के 9:03 हो गल बा। भोजपुरी तड़का कार्यक्रम सुने होला हमार सब कोई श्रोता लोगन के दिल से स्वागत करत है। जहाँ कहूँ से भी साथ देवत हवा, आशा है ये रखब जा कि आप सब कोई मजे में हवन और आज के कार्यक्रम के संगे बहुत प्यार से साथ देवे खातिर बिल्कुल तैयार हो गल हवा। अभी से लेके रात के 11 बजे ले आप सब कोई के साथ देवे खातिर चलाल हाँ रत्ना के सब प्रेम नमस्कार स्वीकार कर ले जा। अभी से लेके बढ़िया बढ़िया भोजपुरी गीत चली रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पर जा। जहाँ कहूँ से भी साथ देवत हवा, प्यार से साथ दे दे रही है जा। और जे तोरा मन बा कोनो गीत सुने के, जो न गीत तोहर मन में बजाता मन करता तोरा कोनो ऐसन बढ़िया गीत सुने खातिर, त जरूर बेझिझक हमनी के तू टेलीफोने करे सकब 4028085 पर। जी हाँ, 4028085 पर। और मेसाज भी दा करे खोजत हव त 5251700 पर। चला ऐसा ठंडा के बढ़िया बढ़िया मौसम में बढ़िया गर्मा गर्म गुजरात भोजपुरी गीत, कहा गुजराती बोला था, भोजपुरी गीत सुनाओ अब जा सब कोई के रात के 9 बजे से लेके रात के 11 बजे ले चलेला भोजपुरी तड़का कार्यक्रम। तो चला आप सब कोई के बहुत प्यार से आज के कार्यक्रम में हमनी के शुरुआत करब जाए एगो ऐसन गीत संगे। और है जोन गीत है संभावती जी गैले हवन, संभावती दुमन के आवाज में है गीत के साथ करब जाए एगो बढ़िया शुरुआत। दादा के सोभेला है बहुत मजेदार गीत है, तो चला एगो बढ़िया शुरुआत। हाय तम मांग के सिंदूरवा चलाल, चल कोई बात नहीं, थोड़ा घड़ी में दादा के सोभेला हाई गीत भी तोरा सुनाओ अब जा।

0: भोजपुरी तड़का
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम मजेदार कार्यक्रम संगे है जा पर अमरोज हमनी के संगे जुड़ गल हवन। और अमरोज हमनी के बोले कौन कू ले ले हवा इतना प्यार से तू बतिया ल कहा कू लेवे जाब हो। हम तो ऐसने बस तोहर संगे प्यार से साथ देवे खातिन हमेशा साथ रहिला। और आज के मजेदार कार्यक्रम संगे जाने ल मोरिस में रहब कि कहूँ बाहर चल जाइब देश में विदेश में कहूँ भी रहब www.mbcradio.tv के माध्यम से तू हमनी के संगे जुड़ल रह सकब। और आज के कार्यक्रम में चला आज के जन पहला गीत है अमरोज खातिन चलाओ अब जा अमरोज लौटन हमनी के साथ देवत हवन नोएल दिकुवेत से। और बहुत ही खुशी हवन भोजपुरी तड़का कार्यक्रम सुने खातिर। तो चला आज के कार्यक्रम के है पहला गीत लीलो माथुर सुकन के आवाज में रखल है गीत है तोहर खातिन चलाओ अब जा। अब वैसे हम बताए के भुला गईली है जन पहला गीत बजल उ भावती दुमन के आवाज में नहीं रहल वो बिजमावती संपत के आवाज में रहल। और जैसे हम तोरा बोलनी कि अभी थोड़ा घड़ी में संभावती दुमन के आवाज में भी रखल है गीत जे तोरा तनी समय मिली तो जरूर चलाओ अब जा। और अमरोज हमनी के बोले ईशानों से उनकर जो संगतिया हवन खास संगतिया सुमेहरा खातिन चला देवे के है गीत आग लगल मड़ैया में। जितना ठंडा करता सचे के आग धरे के और बैठे के ऐसन बुझाता कहूँ कहूँ तो सच्चे के ढेर ठंडा करता। और कोई तरह बैठ के गर्मा गर्म कॉफी या चाय पीते पीते भोजपुरी तड़का कार्यक्रम सुने के एगो दूसर मजा रहेला। और चल चुटकुला कहाँ जाए चुटकुला भी सुनावब जा तोरा। और हमर चचा चाची के किस्सा तो जितना फेमस हो गल बाकी का बोलब हम तो जाने ल चचा हमनी के कहाँ कहाँ से बात सोच सोच के आने लन सा हमनी के बोले जाने ल है जन प्यार है ये बहुत बहुत बहुत खराब बीमारी है। अब बोले काहे चचा काहे ऐसन बोला था प्यार तो जाने ल दुनिया में प्यार नहीं तो कुछो नहीं। बोले हाँ जानी ला पर शादी शुदा आदमी जब अपन पड़ोसन के प्यार में पड़ जाए तो जाने ला कौन ची होला। हम बोले नहीं चाचा हम कैसे जानब। बोले जाने हम तब बोलब तोहर से अनुभव से बोलत हाँ है जोन पप्पू है रोज ओकरा हम वही करी ला जाने ला पड़ोसन के संगे प्यार चक्कर मोहब्बत चलता ओकर। छह बजे में हाउ कामियो सालते पासे होला ता उता साढ़े पसाड़े पांच बजा में खड़ा रहे लंस गेट पर जेकर से वो पड़ोसन के एदे करियन। हम बोली चाचा तू कैसे जाने ला। बोले कहे कि हम भी पांच बजे में उठ के हौजा खड़ा हो जाइला हवे से। अरे वाह चाचा तू तो पप्पू भैया से भी दू कदम आगे हवा हो।

भोजपुरी भोजपुरी तड़का तड़का भोजपुरी तड़का कार्यक्रम में हैजा पर हमनी के साथ देवधवन सुनीता जी गाँव गोब बगल से, चार गो बहिन हवन विमला जी कोंगोमा से, अमृता जी गाँव गोब से और वीना जी गुडलैंड बगल से हमनी के हमेशा बहुत प्यार से साथ देवेलन और साथ देते देते हैजा पर स्विट्जरलैंड से चला हवन रंभा जी अपन परिवार संगे हमनी के बोले तनी पीती पीती छोकरी चला द सुदेश बोईजू के आवाज में काहे नहीं हो इतना प्यार से तू गीतवा के मांग कर ले हुआ तो जरूर चलाओ अब जा और हंसते मुस्कुराते सब साथ देते रहिए जा और जाने ल हमर चचा चाची से बोले आज त जाने ल दिमास है ना तो बढ़िया सा तनी पका के हमनी के खियावा तनी कुछो चटाकेदार मजेदार स्वादिष्ट भोजन हमनी के बनावा बना के खियाइयो तो चाची हाली से बोल देला काहे हो सब कोई नौकरी पे जाला तो दिमाग के छुट्टी मनावेला तो आज भी हमर भी ऑफ बा आज हम भी छुट्टी ले ले हैं जाके देखल लाकू जिन में कौन सी पड़ल बा वही खा लिया अरे वाह चाची

0: भोजपुरी तड़का। भोजपुरी तड़का तड़का
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम जारी बा और 9:28 हो गए। देख ल बढ़िया बढ़िया गीत सुन के समय कितना हाली से बीतेला और मजेदार गीत के जन सिलेक्शन कले हवन भाई।

से और है जन गीत, अगला गीत है लागी नहीं छूटे राम के लाले लाल होठवा। है गीत के वो मांग कर ले हवन और है गीत चलाओ अब जा सुदेवी खातिन, सुदेवी जी उनकर बहिन संगे हवन देवीना ज्ञानी और छोटी पोलौजे से दादी प्रभावती नुएल्फांस से और हरीश भैया बुबासे बगल से बेलिया बगल से हवन आत्माराम भैया साथ देवत हवन माला राम जवन और सुखलाल मौसी खातिन। और जानेला अभी श्रावण के मास चलता था, हमनी के जोन प्यारी चाची है ना हमार चाची चमेली, वो चचा से बोले हाँ तनी हाँ पूजा के सामानवा ला दिया हमार खातिर। बोले काहे, मतलब अभी श्रावण मास चलता ना तो पूजा करब, श्रावण के सोमवार के पूजा करब, बहुत प्यार से भगवान शिव जी के याद करब। बोले काहे, हम तो मिल गल हैं। बोले हाँ मिल तो गल हवा, तो अब सातो जन्म में तू रहब हमर जीवन में, हये खातिर पूजा करे के चाही ला ना। बोले धत पहला हमनी से तो पूछ लेते ना, हये जन्म हमनी के इतना भारी लगा था, अभी सात जन्म कैसे झेलब तोरा।

0: भोजपुरी तड़का तोहर जीवन में स्वाद आने खातिर गमच जलसा हंगामा। भोजपुरी तड़का
1: तड़का कार्यक्रम के जारी रखा था। 9:36 हो गल बा और कहूं तो बहुत ठंडा करा था। तो चला अपन सेहत के पूरा ख्याल रखे जा और एक संगे चला है जा पर शो। भाजी हमने के का तो बोन से साथ देवत हवन और आज शादी के सालगिरह मनैया प्रदीप जी और उमा जी के शादी के सालगिरह रहल और उनकर दूगो बेटी नेहा और वर्षा की तरफ से और सब परिवार देने से बहुत बहुत तोहरा जन्मदिन और जन्मदिन तो नहीं पर शादी के जन है सालगिरह तो मनयन मनैले हो आज के दिन उकरा बहुत बहुत जन्मदिन काहे बोला था शादी के सालगिरह के बहुत बहुत बधाई देवत हई। और एकर संगे एगो बढ़िया गीत संभावती दू मन के आवाज में रखल है गीत करब जा तोहर खातिर।

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी तड़का
0: तड़का तड़का कार्यक्रम 9:42 होगल बाद 11 बजे ले चली भोजपुरी तड़का कार्यक्रम रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पर और रही जा पर हमनी के मानती जी बहुत ही प्यार से साथ है देवता नोएल फोंस बगल से और उनकर बहिन लोग अनंती और आरती और साथ हवन उनकर घर के सब नाती पोता भव्य पुष्कल हितांशु गिरीशा मितिशा तो चलो बहुत ही प्यार से सब कोई के स्वागत करत है और अगला गीत जो है विनोद सिवदत्त के आवाज़ में रखल है गीत के तू मांग करत हवा और खास कर तू सब भारतवासी के आज के बहुत बहुत अभिनंदन देवत हवन काहे के आज भारत के 80 वर्ष हो गल बा स्वतंत्रता दिवस के तो चला मानती जी दिल से तोरा बहुत बहुत धन्यवाद और है बढ़िया संगीत विनोद सिवदत्त के आवाज़ में रखल भोजपुरी भाषा और भोजपुरी भाषा जाने ला ना सब कोई कितना खुशी रहेला सुने के तो एकर पर जाने ला हमर चाची कौन दिन बोले जाने ला हाई जोन कहावत है कि सब मर्द एक जैसन रहेलन

जाने ल है कहावत के लिखले बा। हम बोली नहीं चाची, हम कैसे जानब, सब बड़ा आदमी ऐसन त बोलत रहलन कि सब मर्द लोग, सब आदमी लोग ऐसन एक नियर पारे रहेलन, दुनिया में कहूँ भी चल जाइय। बोले है जोन कहावत है एगो चिन्हवा, एगो चिन्हवाइन लिखले हवन। हम बोली वो कैसे जाने ल चाची। बोले जाने वो ओकर बूढ़ा संगे एगो बाजार में गल रहल घूमे एगो चीनी औरत, एगो चीनी महिला, और जब वो गल बाजार में तब बाजार में ओकर बूढ़ा खो गल। तो बोले अच्छा फिर। बोले जैसे वो खोजे के शुरू करलन अपन बूढ़ा के, तो सब त पारे रहल, हवे से है कहावत पड़ गल कि सब आदमी पारे रहेलन। का हो चाची, कहाँ के बात कहाँ ढुकावत हुआ।

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी तड़का
2: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम जे सबसे फेवरेट कार्यक्रम है सब कोई के रात के 9 बजे से 11 बजे ले चलेला और रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पर राज रत्ना सब कोई के साथ देवत हवन तह चढ़ाई जा पर हमनी के साथ जुड़ गल हवन भाई अबू साथ देवत हवन उनकर बेगम आफेज असलम आया जायान जहीरा रईस खाला छोटी

और आज सलमा जी उनकर हियाँ घूमे आल हवन। तो चला सलमा जी तोहर खातिन भाई अबू एगो गीत के मांग कर ले हवन। आशा करब जा कि हाई गीत सुन के तोहर चेहरा के जन मुस्कुराहट है वो दुबले हो जाए। और बस ऐसन बढ़िया समय बिताइए अपन परिवार के संगे। और हई गीत है विक्रम कोलाचन के आवाज में, धोती पोथी पगड़ी जाने ल। जब हमनी के पूर्वज आल रहल त संगे हये लेके आल रहलन भारत से। और आज हैजा पर अपन भोजपुरी भाषा के अपन संस्कृति के अपन भाषा संगे संगे अपन कैसे बोलबा अपन काजिशों के जो जारी रखलन हैजा पर जीवित रखलन। और आज सब कोई हमनी के भाषा के लेके आगे बढ़त हवन चलत हवन। तो चला ये गीत करब जा आप सब कोई खातिन और हंसते मुस्कुराते साथ देते रहिए जा हैजा पर ढेर कोई हमनी के बोले आई सब चुटकुला सुन के तो हमर तबियत बहुत टकाटक हुआ था। ऐसने चाहिला जीवन में टकाटक रहे के। और हमर चचा जोन है ना का बोलब, चचा चाची के कौन दिन बोले चाची के इतना प्यार से शर्मा के तनी प्यार से रोमांटिक आवाज में बोले, ऐ बुढ़िया हमर खातिन आज तनी ऐसा बढ़िया चाय बना द जेकरा पी के हमर तन बदन में तनी आग लग जाए, हमर तन तनी नाचे लगी जू में लगी, हमर मन तनी खुशहाली में बहुते मगन रही। तो चाची बोले हाँ जाने ला ना घर में गाय के दूध मिले ला नागिन के नाई, तरा जूमे के नाचे के तिल मिलाई के मन करता।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: भोजपुरी भोजपुरी तड़का तड़का।
2: भोजपुरी गीत रत्ना के संगे MBC रेडियो पर।
1: भोजपुरी भोजपुरी तड़का तड़का। चला रात के बज गल बाद 10:02। 11 बजे ले चली भोजपुरी तड़का कार्यक्रम और हाईजा पर हमनी के साथ देवा धवन कल्याणी जी बुआशेगी बगल से। और अगला गीत के उमंग करत हवन पूर्णिमा फोकीरा के आवाज में रखल हई गीत चलाओ अब जा सत्यानंद साली खातिन गीता गजाद गीता राधे की सुन। और साथ हवन अंजू और सब परिवार संगे बड़की मुनुआ भी साथ है जुड़ गल हवन। तो चला अभिमन्यु हरिपाल के आवाज में रखल हई अगला गीत चलाओ अब जा उनकर खातिन। और हंसते मुस्कुराते सब कोई हमनी के साथ है दिवत हवन। और जैसे हमार पप्पू भैया के तक का बोला पप्पू भैया को

0: दिन जितना मार खा के आल हवन बाजार से। तो चाचा बोले, अरे पप्पू का होल तोरा, इतना कैसे सब कोई आदमी तोरा पीट देलक। बोले हाँ चाचा देखा ना कैसे जमाना चला आल बा, हम का बोलब। बोले काहे पीट ले लग तोरा, इतना मार खा के काहे तू अलग। बोले हम तो गल रही बाजार में और एगो मगाजे के लाहो में रख लिखले रहल हौजा पर कि हैजा पर शादी के सब सामान मिलेला, तो हम तो हेल गईली हौजा। बोले वो तो सब ठीक है पर मार काहे खा के आई लग। बोले तो हये तो बतावत है चाचा। बोले हौजा जाके जाने ला, हम तो एक एगो बात पूछ ले ली, काहे के शादी के सामान बोल ले रहल हौजा पर सब मिला था, तो हम तो एक एगो सामान किने गईली पूछ ली, तो हमने के पीट पीट के रख देलक, हमने के कुछ कुछ के रख देलक। बोले कौन सामान तू मंगले रहलन। बोले हम तो इतना निर्दोष आदमी है का बोलब, हम तो कर से जीस खाली बोलनी दुल्हन बा तब पीट पीट के रख देलक हमने के। बोले तब पीटी नहीं तो रहा, शादी के सामान मिला था, दुल्हन थोड़ी मिला था हो जाब।
1: सियामान

0: भोजपुरी तड़का
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम में अभी ढेर कोई हरदी से आवत हवन और ढेर कोई पूजा पाठ करके आवत हवन। चला आज के कार्यक्रम के गत्ते गत्ते आगे बढ़ावत है। सुदेवी जी भी हमने के संगे साथ है देवत हवन वाकवा बगल से, और वाकवा देने से वो अपन बहिन ललिता कुशल खातिन गीत मंगले हवन, साथ ही साथ दीदी सुनीता शोभा देवीना और मलेगा के किशनी कृषय प्रनीता और सब राम रतन परिवार खातिन अगला गीत के मांग करत हवन। और है गीत है बड़की मसाला पीसेला, तो चला हइए।

गीत कर अब जा और बस हंसते मुस्कुराते साथ देते रहिए जा। और ये हमार चचा चाची के जोन किस्सा है उ जैसे आगे बढ़ले जाला, रोज नवा नवा किस्सा वो हमनी के सुनावेला। कौन दिन चाची बिचारी इतना परेशान, तो हम बोली का होल चाची काहे इतना परेशान बा। बोले हाँ हमर जोन संगतिया है ना ओकर से हम का बोला बिचारी बहुत परेशान बा, तो वही से ओकर हम दुख में हम शामिल होवत हई। हम बोली दुख काहे कौन कालीते के दुख चलाल बा। बोले जाने लो ओकर बूढ़ा संगे बहुत बहुत बहुत खिसिया गल बा ओकर बूढ़ा संगे। तो हम बोली काहे कौन ची होल। बोले कौन दिन शादी में जाए के रहल त वो बोले अपन बुढ़िया के पारे हो जाइए शादी में जाब। द बुढ़िया बोले हाँ 5 मिनट में पारे होवत हई। तो हम बोली तो इतना में काहे खिसिया गल। बोले तो हाँ बिचारी आधा घंटा से बोला थवन 5 मिनट में पारे होवत हई 5 मिनट में पारे होवत हई। तो का जनी ओकर बुढ़वा काहे इतना खिसियाता ओकर पे काहे उतना खिस करता। अरे चाची 5 मिनट मतलब 5 मिनट में पारे होई के ना, तो आधा घंटा ले 5 मिनट 5 मिनट बोलबा तो कोई भी तक चिड़ी नहीं खिसियाई नहीं।

0: भोजपुरी तड़का
1: 10:15 हो गल भा भोजपुरी तड़का कार्यक्रम के जारी रखे थे और हैजा पर हमने के चाची शांत सुकागी से जमिल फोरसाइट से जुड़ गल हवन और अगला गीत जो ना पिया परदेश फोकिरा पूर्णिमा के आवाज में रखल है गीत मांगत हवन अपन पतो किरण चार गो बेटा हवन सुदेश अशोक कामिन सुजीत और नाती हवन प्रवेश नातीन संजना खातिर तो चल हंसते मुस्कुराते आप सब कोई के साथ देवत हाँ और चाचा हमने के बोले जानेला इतिहास जो हा वो गवाह हा। हम बोले कौन चीज के गवाह हा? बोले हाँ गवाह हा कि पति जो है वो अपन पत्नी के हमेशा खुश रखे सकी। बोले का बोला था वो चाचा? हाँ तो पति के तक धर्म हा कर्तव्य हा अपनी अपन पत्नी के खुश रखे के। बोले हाँ खुश रखे सकी पर कबो चुप नहीं करावे सकी।

0: भोजपुरी तड़का
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम जारी बा और चला 10:23 हो गल बा। और जितना रात कोई रात के काम करत हवन सब कोई के बोकवास बोलब जा। और आज के कार्यक्रम में चला आगे बढ़त हाँ एगो बढ़िया गीत संगे और संभावती दुमन के आवाज में रखल है अगला गीत चलावब जा। दागोचे के कुमारी जी खातिन और 8 बहिन साथ देवत हवन और संगे हवन रामफल परिवार उस्ताबिया परिवार और उनकर 3 बेटी लता प्रतिमा और

वधवा और सात देव वधवान आयुष। और हाईजा पर जयंती जी पेची जूली से जुड़ गल हवन और सेंस जूलिया बगल से सेंस जूलिया विलास से हमनी के साथ देवत हवन हमार प्यारी चाची चाची नीता खेतनी जे हमनी के हमेशा प्यार से साथ देते रहेलन और उनकर खास संगतिया स्वादिका खातिर अगला गीत चलाओ अब जा हंसते मुस्कुराते साथ देते रहिए जा। और चाची जाने ल कौन दिन इतना कन्फ्यूजा गल तनी कन्फ्यूज हो गल चचा से बोले जाने ल महिला लोग के गला में जब मंगल सूत लटकते रही त जान जाइब एगो महिला के शादी हो गल बा। तब पुरुष के ऐसा कौन निशानी रहेला जेकर से जनब कि उकर शादी हो गल बा। तब चचा बोले जाने ल महिला के गले में लटकेला एगो मंगलसूत तो जान जाइब और पुरुष के तो चेहरा जैसे लटकल रही तो जान जाइब कि उ शादी शुदा हुआ। हाँ पारे तोहर नियर जब देखा तब 24 घंटा तोहर मुँह तो ऐसे ने लटके रहेला।

भोजपुरी तड़का कार्यक्रम मजेदार कार्यक्रम संगे हैजा पर हमनी के साथ जुड़ गल हवन भाई आत्मा राम मिले ऐसे साथ देवत हवन तब भैया जी हमनी के बुले भाई दीदी सुदेवी दीदी ललिता और छोटी खातिन चला दिया जा हमर खातिन एगो बढ़िया गीत नंदकेश्वर शंकर के आवाज में रखल तो चला हाइये गीत के साथ लाजवाब कार्यक्रम भोजपुरी तड़का कार्यक्रम चला था रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन के लहरों पर और जाने चाची हमनी के चचा के बोले चला ना तनी बाजार जाए के बा तो चचा इतना मूड इतना रोमांटिक आवाज में चाची के हाथ पकड़ के बोले जाने ल बुढ़िया आज हमनी के मन करा था तोहर हाथ पकड़ के घंटा दूर किलोमीटर कितना किलोमीटर चलते जाए के तो चाची बोले हाँ ऐसा बोला ना ले सांस के भाव बढ़ गल बा नहीं लेके जाइबा हमनी के

भोजपुरी तड़का कार्यक्रम के जारी रखा था और हाई जा पर हमनी के साथ देवत हवन नाजीरा जी दागोचिया बगल से लागी ना ही छूटे राम के हाई गीत के मांग कर ले हवन ते चला जरूर चलाओ अब जा हाई गीत और जाने ला हाई गीत। गायत्री जी भी बहुत खुशी रहेलन सुने के और हाई गीत चलाओ अब जा गायत्री जी खातिर जे हमेशा नुअल फॉन्स से भी हमनी के साथ देते रहेलन बेटा जय मामी कल्याणी मोहन और उनकर खास दोस्त गीता बाई खातिन तो चला हंसते मुस्कुराते दागोचिया के सब परिवार खातिन चलाओ अब जा और जितना कोई सुनत हवन और जितना खुशी हवन लागी ना ही छूटे राम के हई गीत के संगे तो चला हंसते मुस्कुराते साथ देते रहिए जा।

भोजपुरी तड़का कार्यक्रम और भोजपुरी तड़का कार्यक्रम में है जहाँ पर हमनी के संगे जुड़ गल हवन भाई माहेन और वो एगो गीत के खुशी हवन ललिता गजादर के आवाज में। तो चला हाई गीत चलाओ आप जाओ उनकर खातिन और खास कर दीदी मान खातिन जे हमने के साथ देवत हवन बढ़िया से। और हाई गीत है आज के गमट को

पता चला गमट के कार्यक्रम तक जा रही है बाटे और हैजा पर उमा जी हमनी के संगे फोन जुसाक से जुड़ गलावन और हमनी के बोले उमा जी अभी तो श्रावण मास चला था तनी गंगा मैया पर एगो गीतवा चला दा चला अभय दानंद बीजन के आवाज में रखल है गीत चलावब जा तोहर खातिर और जितना कोई सुनत हुआ उन

0: हो।
1: तो चला आज के कार्यक्रम भोजपुरी तड़का कार्यक्रम के समाप्त कर अब आज के है अंतिम गीत के साथ पूर्णिमा फुकीरा जी की आवाज में रखल है अंतिम ललना के गीत। चलाओ अब जा है ललना के गीत खास कर दादी शोभा प्यासन, साथ ही साथ पापा हवन कमलेश प्यासन और ममा करिश्मा प्यासन। जेकर हिया एगो नन्ना मुन्ना सा लड़का होल हवन। तो चला बहुत बहुत बधाई देव अब जा दादी माला बगवा, दादी मुनन पसंद, दादी पूर्णिमा फकीरा संगे हवन पिंकी पूनम प्रावीणी पूजा प्रावेश कृष्मा और सब लड़का फैका। तो चला है बहुत प्यार से आपके बहुत बहुत बधाई और है ये गीत के साथ आज के कार्यक्रम है जहाँ पर समाप्त हो जाए। आप सब कोई हमने के बहुत प्यार से साथ देलन, धन्यवाद बोलब जा सब कोई के। फेरों से भेंट आप सा आवत सामदी के रात के 9 बजे से लेके 11 बजे ले भोजपुरी तड़का कार्यक्रम में। तबले बस अपन ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आवत समय सब कोई खातिर बहुत ऊर्जा लेकर आई ये कामना करब जा। और एक संगे हमने के अनुमति दीजिए चला हमर बाद सुनहरे पल कार्यक्रम तो सुने सकबा और आज के जो कार्यक्रम है बहुत लाजवाब रहल। तो चला हमर बाद नीतू शाह सब कोई के साथ दई पुराना गीत सुनहरे पल कार्यक्रम में। तो इसकर संगे उनकर साथ दिया जा और हमनी के दिया अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि सब कोई के।

जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ। सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ। रेडियो मॉरिशस के सभी श्रोताओं को नीतुषा का खर्जूर प्रणाम। आज है 15 अगस्त और आज हमारे सभी भारतीय भाई बहन मना रहे हैं अपनी स्वतंत्रता दिवस। रेडियो मॉरिशस एमबीसी रेडियो की तरफ से आप सभी को मंगल कामनाएं। तो आइए, जब देशभक्ति की बात करते हैं तो बॉलीवुड और देशभक्ति का रिश्ता बहुत ही गहरा और खूबसूरत रहा है ना? हिंदी सिनेमा ने सिर्फ हमें प्रेम, दोस्ती, परिवार और जिंदगी के रंग ही नहीं दिखाए, बल्कि देशभक्ति के प्रति प्रेम, सम्मान, बलिदान और कर्तव्य की भावना को भी अपने गीतों और कहानियों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया है। जब सिनेमा के पर्दे पर तिरंगा लहराता है, जब किसी सिपाही की आंखों में अपनी वतन के लिए जज्बा दिखाई देता है, या जब कोई गीत हमें अपनी मिट्टी की खुशबू का एहसास कराता है, तब दिल के अंदर एक अलग ही गर्व की लहर उठती है। तो आइए श्रोताओं, आज ये सुनहरा पल कार्यक्रम हमारे सभी भारतीय दोस्तों के नाम।

बॉलीवुड के देशभक्ति गीत हमारे सिनेमा की एक अनमोल परंपरा है। इन गीतों में सिर्फ शब्दों का जोश नहीं होता, बल्कि मिट्टी से जुड़ा हुआ एक एहसास भी होता है। ऐ मेरे वतन के लोगों जैसे गीत ने पूरे देश को भावुक किया। लता जी की आवाज में गाया हुआ ये अमर गीत भारत के वीर जवानों के बलिदान को याद करने का एक प्रतीक बन गया। इस गीत को सुनते ही आंखों में नमी और दिल में देश के प्रति सम्मान जाग उठता है।

मनोज कुमार जैसे कलाकारों ने बॉलीवुड में देशभक्ति को एक अलग पहचान दी। शहीद, उपकार, पूरब और पश्चिम, क्रांति जैसे सिनेमा में उन्होंने देश, मिट्टी, किसान, जवान और भारतीय संस्कृति को कहानी का केंद्र बनाया। मेरे देश की धरती जैसे गीत ने भारत के किसान और उसकी मिट्टी को सलाम किया। ये सिर्फ एक फिल्म गीत नहीं है बल्कि भारत की धरती के प्रति प्रेम का गीत है। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों जैसे गीतों में बलिदान की भावना है। ऐ मेरे प्यारे वतन में वतन से दूर रहने की कसक है। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया में भारत की समृद्ध परंपरा और गौरव का एहसास है। मेरा रंग दे बसंती चोला में आजादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देने का जज्बा है। ऐसे गीत श्रोताओं सिर्फ सुने नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं।

वैसे समय के साथ बॉलीवुड की देशभक्ति का अंदाज भी बदला। पुराने दौर की फिल्मों में देशभक्ति अगर सिपाही, आजादी की लड़ाई, सीमा और बलिदान के आसपास घूमती थी, आज के सिनेमा में देशभक्ति के अर्थ और भी विशाल हो गए हैं। अब देश से प्रेम का मतलब सिर्फ सीमा पर लड़ना नहीं, बल्कि ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाना, समाज को बेहतर बनाना, भ्रष्टाचार से लड़ना, महिलाओं का सम्मान करना, शिक्षा को बढ़ावा देना और देश की विविधता को स्वीकार करना भी है।

0: 90s की बात करें तो बोर्डर का संदेशे आते हैं का एक ऐसा गीत है जो सिपाही के दिल और उसके परिवार के बीच की दूरी को महसूस कराता है। इस गीत में देशभक्ति के साथ साथ माँ, पिता, पत्नी और घर की याद भी है। लक्ष्य के कांधों से मिलते हैं कांधे, हौसला और साथ चलने की भावना देता है। रंग दे बसंती ने युवा पीढ़ी को देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी पर सोचने के लिए प्रेरित किया। चक दे इंडिया ने देशभक्ति को खेल, टीमवर्क और एकता के साथ जोड़ा। और जब हम तेरी मिट्टी जैसे गीत सुनते हैं तो देशभक्ति सिर्फ एक स्लोगन नहीं लगती, वो एक गहरा जज्बा बन जाती है। ये गीत हमें याद दिलाता है कि किसी भी देश की असली ताकत उसके लोगों के त्याग, सेवा और समर्पण में होती है। इसी तरह ए वतन जैसे गीत भारत की मिट्टी से एक इमोशनल कनेक्शन बनाते हैं।
1: नफरत

श्रोताओं, बॉलीवुड ने हमें ये सिखाया है कि भारत सिर्फ एक भौगोलिक सीमा का नाम नहीं है, भारत एक एहसास है। गंगा की धारा में, हिमाचल की ऊंचाइयों में, खेतों की हरियाली में, समंदर की लहरों में, मंदिरों की घंटियों में, मस्जिद की आजान में, गुरुद्वारे के शब्द धुन में, और हर उस इंसान के दिल में जो अपने देश को बेहतर देखना चाहता है।

देशभक्ति का सबसे खूबसूरत रूप शायद वही है जहां हम अपने देश से प्रेम करते हैं, दूसरों के प्रति भी सम्मान और इंसानियत बनाए रखते हैं। भारत की खूबसूरती उसकी डायवर्सिटी में है। अलग अलग भाषाएं, परंपराएं, वेशभूषाएं, धर्म, संगीत और संस्कृतियां मिलकर भारत को भारत बनाती हैं। बॉलीवुड ने इसी यूनिटी इन डायवर्सिटी को कई बार अपने गीतों और कहानियों में दिखाया है। इसीलिए जब भी कोई देशभक्ति गीत रेडियो पर बजता है तो वो सिर्फ एक सॉन्ग रिक्वेस्ट पूरी नहीं करता, वो यादों का एक दरवाजा खोलता है। किसी को स्कूल का इंडिपेंडेंस डे याद आता है, किसी को रिपब्लिक डे की परेड, किसी को बचपन में हाथ में पकड़ा हुआ छोटा सा तिरंगा और किसी को अपने परिवार का कोई वीर जवान याद आ जाता है। और शायद इसी वजह से बॉलीवुड के देशभक्ति गीत कभी पुराने नहीं होते। सुर बदल सकते हैं, जेनरेशन बदल सकती है, टेक्नोलॉजी बदल सकती है,

तो आज जब हम बॉलीवुड की उन मधुर धुनों को सुनेंगे जो देश की मिट्टी, जवानों की बलिदान, किसान की मेहनत, युवाओं के सपनों और भारत की एकता की कहानी कहती हैं, तो एक पल के

लिए आंखें बंद कीजिए और महसूस कीजिए, ये वही मिट्टी है जिसमें हमारी यादें हैं, ये वही हवा है जिसमें हमारे अपनों की सांसें हैं, और यही वो देश है जिसे हम अपने अपने तरीके से बेहतर बनाने की कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि जब दिल में मोहब्बत है तो गीत भी वतन के हो जाते हैं, धड़कन भी वतन की हो जाती है, और जिंदगी का हर अच्छा कर्म अपने देश को एक छोटा सा सलाम बन जाता है। जय हिंद, जय मॉरिशस, प्रणाम।

NBC रेडियो हर पल आपके साथ।

0: सभी सुनने वालों को अरविंद का प्यार भर नमस्कार। स्पोर्ट्स बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत है। यूईएफए यूरोपा लीग के थर्ड क्वालिफाइंग राउंड के रिटर्न लेग के मैच कल खेले गए। स्कॉटलैंड की रेंजर्स टीम क्वालिफाई नहीं हो पाई। फर्स्ट लेग में यागेलोनिया ने रेंजर्स को 2-1 से हराया था। कल अपने होम मैदान में रेंजर्स केवल 1-1 का ड्रॉ कर पाया, मतलब अलविदा यूरोपा लीग। अन्य मैचों में बेसिकतास ने राडेक क्रालोवे को हराया 1-0 से, बेसिकतास क्वालिफाई। फेरेनवारोस ने अपना मैच ड्रॉ किया 1-1, फेरेनवारोस क्वालिफाई। ओमोनिया निकोजिया 1, लिंकन रेड इम्स 0, ओमोनिया निकोजिया क्वालिफाई। आरबी साल्सबर्ग ने एवे जाकर मैच ड्रॉ किया पाफोस के मैदान में 3-3, साल्सबर्ग क्वालिफाई। यूनिवर्सिटादिया क्रायोवा 2, कर्प्स 1, क्रायोवा क्वालिफाई। विकिंगो 3, टून 2, टून की टीम क्वालिफाई है। सीएसके सोफिया 1, मकाबी तेल अवीव 3, सोफिया की टीम क्वालिफाई। अंडरलेक्ट ने 3-2 से पीएओके को हराकर अपना टिकट बुक किया, जबकि बेनफिका क्वालिफाई हुआ हार्ट ऑफ मिडलोथियन टीम के साथ मैच ड्रॉ करके 1-1। इग्नाता ने 5-1 से शामरॉक रोवर्स को हराया, इग्नाता की टीम क्वालिफाई। यूईएफए कॉन्फ्रेंस लीग में पार्टिजान इंटर क्लब डिस्काल्डिस कराबाग याब्लोनेक राको जेस्टोचोआ एमएल विटेक्स मिडजीलैंड नॉर्जीलैंड ट्रोम्सो ड्रिटा सेंगालेन सियों यरूशलेम मदरवेल डिनामो सिटी हैशटैग स्प्लिट को जीत पाए, क्वालिफाई हो गए, 9 मैच ड्रॉ गए। आज से इंग्लैंड की लीग चैंपियनशिप शुरू हो रही है। एक ही मैच है, वुल्व्स का मुकाबला ब्लैकबर्न रोवर्स से। कल बाकी मैच खेले जाएंगे। कल ही क्लब फ्रेंडलीज में चेल्सी खेलेगा रॉयल सोसिएडाड के खिलाफ, बायर्न म्यूनिख आरबी लाइप्ज़िग, टोटनहम हॉटस्पर होफेनहाइम, मैनचेस्टर यूनाइटेड खेलेगा एसी मिलान के खिलाफ, बोरुशिया डॉर्टमुंड एएस रोमा, इंटर मिलान रियल बेटिस, ये कल के फ्रेंडली मैच हैं। लिवरपूल संडे को अपना मैच खेलेगा, वो है कुमो के खिलाफ, और संडे को ही इंग्लिश कम्युनिटी शील्ड आर्सेनल और मैनचेस्टर सिटी के बीच, यानी प्रीमियर लीग सीजन शुरू होने से पहले ट्रेडिशनल कम्युनिटी शील्ड चैंपियन आर्सेनल और एफए कप विजेता मैनचेस्टर सिटी के बीच। मैनचेस्टर सिटी का मिडफील्डर टिजानी रेंजर्स सऊदी प्रो लीग टीम अल खदसिया में जा रहा है। 52 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग का सौदा होगा। पेरिस सेंट जर्मेन बार्सिलोना के स्ट्राइकर फेरान टोरेस को साइन करने जा रहा है। डील इन प्रिंसिपल डन, दाम लगभग 45 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग। मैनचेस्टर सिटी सस्ते में रोड्री को नहीं जाने देगा। बार्सिलोना ने 55 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग का ऑफर भेजा, सिटी चाहता है 60 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग। लेस्टर सिटी ऑन सेल, 200 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग रखा गया है लेस्टर सिटी को खरीदने के लिए। थाईलैंड के ओनर 16 साल किंग पावर स्टेडियम में थे, अब हवा बदलना चाहते हैं। यूरोपियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ब्रिटेन की स्प्रिंटर आर्नी हंट ने अपना दूसरा गोल्ड मेडल जीता 200 मीटर फाइनल जीतकर। उसका टारगेट है 4 गोल्ड मेडल, 100 और 200 के बाद अब विमेन्स और मिक्स्ड रिले बचे हैं। क्रिकेट, भारत और श्रीलंका के बीच पहला टेस्ट मैच कल से शुरू होगा। क्षेत्रीय स्तर पर, रीजनल लेवल पर रोशनॉय स्पोर्ट्स क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट में इस रविवार को मैच है पॉइंट डी लास्का की बार्सिलोना एफसी और वे लायंस के बीच। इधर आदिसी एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इंटर डिस्ट्रिक्ट पेटांग टूर्नामेंट इस संडे को ग्रोकायू में लगेगी। सभी जिला परिषद मतलब डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की चैंपियन टीमें और रनर अप इस इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट में भाग लेंगी 9 बजे से ग्रोकायू में। तो खेल समाचार में फिलहाल इतना ही, आपके ध्यान के लिए शुक्रिया। आज्ञा दीजिए, नमस्कार। आप सभी लोगों का रिंग की ओर से शुभ दिन।
1: एनबीसी रेडियो हर पल आपके साथ।
2: अरे हे ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला

والصلاة والسلام على حبيبه سيدنا محمد رسول الله والآل وصحبه

You wish for this blessing to be taken away from such a person. This is called Al-Hasad. Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam has taught us that how dangerous this virus is. Iyyakum wal-hasad. Beware of al-hasad. Why? فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبُ. Al-hasad, it will remove your righteous deeds, na'udhu billah. Everything is going to be deleted because of this spiritual virus. Just like كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبُ, a fire removes, demolishes, ends up the wood. When it burns it, it will turn it into ashes. The wood is useless once it becomes ashes. Just like that, all your righteous deeds shall be removed, and you will be deprived of thawab of those righteous deeds. So wasted. Everything wasted. A'udhu billah. Farmaya ki hasad, is bimari se bacho. Is liye ke hasad nekiyon ko is tarah kha jata hai jis tarah ke aag lakdi ko kha jati hai. A'udhu billah. Aajkal ye bimari हमारे घरों में इस हद तक आम हो चुकी हैं, हमारी कम्युनिटीज़ एंड फैमिलीज़ में, कि भाई भाई से हसद करता है, बहन भाई से हसद कर रही है, सगा चचा अपने भतीजे भतीजी से हसद में मुब्तला, नऊज़ बिल्लाह, भांजा अपने मामू से, मामा अपने भांजे से. It's getting common day by day, na'udhu billah. But the thing is, we don't even realize that what are we doing with ourselves. Awliya, Sufiya, rahimahumullah ta'ala, they say al-hasadu yuhliku al-hasida wa yadurruhu qabla an yadurra al-mahsud. We have two persons, the envious, the jealous person, jalne wala, and we have the other one, al-mahsud, the envied, the one who you are jealous of. Two persons. The thing is, this virus is going to harm the envious person, al-hasid, before it harms the envied one. Ye bimari itni khatarnak ke jis को आप ये बीमारी लगाना चाहते हैं तो उसको तो बाद में तकलीफ देगी, आपको पहले ही तबाह कर डालेगी. और ये एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा वायरस जिससे बचने की ज़रूरत हर इंसान को. ये सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी का इशू नहीं है, किसी भी स्पेसिफिक रिलीजियस कम्युनिटीज़ का इशू नहीं है, बल्कि इस रुए ज़मीन पर रहने वाला हर इंसान, उसे ज़रूरत है कि अपने आप को इस वायरस से बचा सके.

खातून वलिया थीं, नेक इबादत गुजार। करामत के जाहिर होने पर भी ये नहीं कहा क्या जाहिर में वली हूं। शी डिडंट शो हरसेल्फ एज अ वलिया, एज अ पायस वुमन, पायस सर्वेंट ऑफ अल्लाह सुब्हानहु व तआला। शी डिडंट से एनीथिंग लाइक दैट, ऑब्वियसली आई डिजर्व टू बी ग्रांटेड करामा, नथिंग लाइक दैट। शी सेड हुवा मिन इंदिल्लाह, these fruits are from Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha yarzuqu man yasha'u bighayri hisab, indeed Allah sustains whomsoever he wills without any calculation. Allah subhanahu wa ta'ala can provide whatsoever he wills. Now the thing is, may Allah forgive us, most of us, we are affected by this virus of hasad. If we would have seen something like that with anyone, then we will do our best to take away these blessings from her. But look at the greatness of Prophet Zakariya alayhi salam. No doubt, no one can reach the greatness of Prophet Sayyida Maryam radiyallahu anha. Although she is a great worshipper of Allah, a great pious woman, but she is waliya. And normal wali cannot reach the level of Prophet. Sayyidina Zakariya alayhi salam was Nabi, but still what did he do? Allah says, هُنَالِكَ دَعَى زَكَرِيَّا رَبَّهُ. On the spot, in the same place, دَعَى زَكَرِيَّا رَبَّهُ, he started supplicating, started praying. Zakariya alayhi salam nabi the, uske bawajood ek waliyah ke maqam par wali kabhi nabi tak nahi pahunch sakta, aam wali. Uske bawajood Sayyida Maryam radhiyallahu anha ke is maqam par kya kiya, dua karne lage, अपने रब से दुआ की। قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة, ऐ मेरे रब मुझे अपने पास से पाक और सुथरी औलाद अता फरमा। ये आदत डालने की कोशिश करें, किसी के पास कोई नेमत देखें उसकी कदर करें और उसकी कदर पहचानने की कोशिश करें, जिंदगी में इस चीज़ की आदत डालें, अल्लाह ताला आपको बहुत सी बुराइयों से वैसे ही महफूज फरमा देंगे इंशाअल्लाह। हमारी इस वक्त खानदानों में, हमारे घरानों में लड़ाई झगड़े इख्तिलाफात, उसकी बहुत बड़ी वजह यही है, हसद। सैयदना ज़करिया अलैहिस सलाम ने उस मकाम पर दुआ फरमाई, वजह ये थी कि जब देखा कि पाक बीबी मरियम रज़ियल्लाहु अन्हा अल्लाह ताला की नेक बरगुजीदा खातून हैं, इबादत गुजार, अल्लाह की वलिया हैं, उनके यहाँ दुआ कबूल हुआ करती है, वली के क़ुर्ब में दुआ कबूल हुआ करती है, इबादत गुजार नेक और बरगुजीदा लोगों की सोहबत में उनके करीब जाकर अल्लाह से दुआ की जाए तो ये दुआ अल्लाह ताला ज़रूर कबूल फरमाता है। अब कबल इसके कि मज़ीद आयात की तरफ आगे जाया जाए, लेकिन आप ये देखें कि सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम ने नबी होने के बावजूद एक वलिया के यहाँ दुआ मांगी। इसी तरह इस चीज़ की आदत डालने की कोशिश करें। रुए ज़मीन पर सबसे पहला गुनाह जो किया गया हसद की वजह से, सैयदना आदम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि जो दो बेटे, उनका मशहूर वाक़या काबील और हाबील। काबील ने जब कत्ल किया हाबील को, उसकी क्या वजह थी? हसद। रुए ज़मीन पर सबसे पहला गुनाह यही, नऊज़ बिल्लाह। और ये इतना बड़ा गुनाह जो उसने पहला

0: करते हैं, नऊज़ बिल्लाह, फिर उसमें उन पर फ़ख्र करते हैं। लेकिन आप नहीं जानते जो गुनाह आपने किया हो, आपको देखकर जो जो गुनाह करता जाएगा सब का वबाल आप पर भी आएगा, नऊज़ बिल्लाह। नेकियों की आदत डालें, गुनाहों से बचें। हसद ये इस बात की दलील है कि अल्लाह ताला ने आपको जो कुछ अता फरमाया आप उससे खुश नहीं हैं। हासिद ला यक़्नउ बिमा आताहु अल्लाह, द एनवियस पर्सन इज नेवर सेटिस्फाइड विद व्हाटएवर अल्लाह हैज ग्रांटेड हिम, अदरवाइज व्हाई वुड ही हैव इशू विद अदर्स। You need to say Alhamdulillah. You need to convince yourself whatever was in your favor, Allah has already granted you. And whatsoever shall be in your favor, Allah shall grant you definitely. But whenever you find a blessing, righteous deed, someone has been performing, say, Ya Allah, grant me tawfiq to perform this righteous deed. Ya Allah, grant me the same blessing which you have granted my sister, which you have granted my brother. Those who were not blessed with children, don't try to be jealous of your brothers, your sisters, if they have been granted children. Those who were not blessed with wealth, don't try to be jealous and envious of those, especially your family members, who are granted the wealth, property, money. Never ever. A person who has been granted, who was granted the wealth, remember, he was tested by Allah through this wealth. जिसको माल मिला है ये नहीं समझे उसकी कोई नेमत मिली है, अल्लाह ने उसको माल के जरिए आजमाया है। आपको नहीं मिला, अल्लाह ने आपको इस तरह आजमाया। जो शख्स औलाद वाला है ये वो ना समझे कि वो अल्लाह का कोई ख़ास मुकर्रब बंदा है सिर्फ औलाद की वजह से, नहीं। आप नहीं जानते कि आपकी आजमाइश औलाद के जरिए की गई है। किसी और को अगर अल्लाह ने औलाद नहीं अता फरमाई तो आप ये नहीं समझे कि नऊज़ु बिल्लाह वो शख्स बदबख्त है, बदनसीब है। ये माओं बहनों से भी कोशिश करूँगा इस चीज़ को जहन में डालें, ईमान को पुख्ता और मजबूत करें कि अल्लाह ताला के दिए हुए रिज़्क, उसकी कदर, उसकी तकसीम पर राज़ी रहने की कोशिश करें। जो कुछ अल्लाह ने आपको दिया, अगर आप उस पर राजी रहेंगे, दिल में कभी हसद नहीं पैदा होगा इंशाअल्लाह। आपको औलाद नहीं मिली, आपको अल्लाह ताला ने इस तरह आजमाइश में डाला। कुछ ऐसे भी होते हैं अल्लाह ने उनको औलाद अता फरमाई फिर वापस ले ली, उनकी आजमाइश इस तरह की गई। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
1: NBC रेडियो हर पल आपके साथ।